ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि तदानुसार 15 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 13 सेकंड हुई हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: चलिए श्रोता, अब आपको बताते हैं कि आज कौन से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। तो श्रोता, आपको बता दें, 6 बजे आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम सुप्रभात। 8 बजे का समय रहेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली का। 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 11 बजे का समय रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स का। 12 बजे से आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक। 1 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प है। राष्ट्रपति ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को अपार समर्थन मिल रहा है। पूरे देश में तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली में विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा। आज सेवा सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में जारी अशांति के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों की हत्या की। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल सुप्रभात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 और मैं हूं आशुतोष आपके साथ। और बिल्कुल आज भारत की आन बान और शान हमारे प्यारे तिरंगे को हम नमन कर रहे हैं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, और आज की सुबह बहुत ख़ास है क्योंकि जब हम तिरंगे को आसमान में लहराते देखते हैं तो सिर्फ 3 रंग नहीं देखते, हम देखते हैं

त्याग, साहस, शांति, विकास और अनगिनत सपनों का भारत। 2026 में हम भारत की स्वतंत्रता के 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 80 साल, बिल्कुल एक लंबा सफर। आज़ादी की उस सुबह से लेकर आज के आत्मविश्वास से भरे भारत तक का सफर। लेकिन आज हम सिर्फ इतिहास को याद नहीं करेंगे, आज हम ये भी सोचेंगे कि आज़ाद भारत के नागरिक के रूप में हम अपने आने वाले कल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने में सीमित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल देशभक्ति है ईमानदारी से अपना काम करने में, दूसरों का सम्मान करने में, उनकी मदद करने में, प्रकृति की रक्षा करने में और देश की संपत्ति को अपना समझने में और इसका कोई भी नुकसान ना करने में और हर दिन भारत को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश में। बिल्कुल, तो आइए आज इस सुबह को समर्पित करें हमारे भारत के नाम, हमारी आज़ादी के नाम और उस उज्जवल भविष्य के नाम जिसे हम सब मिलकर बनाना चाहते हैं और बनाएंगे भी। बिल्कुल ये विश्वास हमारे अंदर बिल्कुल लगातार कायम है। फिलहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बिल्कुल, और तिरंगा हमेशा हमें याद दिलाता है कि साहस रखो, सच्चाई अपनाओ और विकास की ओर आगे बढ़ते चले जाओ और कभी रुको मत। और बिल्कुल आज हमारी आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर आइए हम नया संकल्प लें और देश से सिर्फ ये ना पूछें कि देश ने हमें क्या दिया है, बल्कि खुद से ये भी पूछें कि हमने अपने देश को क्या दिया है। और इसी सकारात्मक सोच के साथ अपने तिरंगे को सलाम कीजिए, अपने देश पर गर्व कीजिए और अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, हम सब की साझा कहानी है। और बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ यूं ही बने रहिए, क्योंकि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हमारे बिल्कुल लाल किले से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ध्वजारोहण समारोह का बिल्कुल सजीव प्रसारण और राष्ट्र के नाम संदेश। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के कमेंटेटर रहेंगे श्री कौशिक राय, श्रीमती अनूप कौर और श्री मुनीष चौली, और ये 7 बजे से सजीव प्रसारण आपके लिए हम लेकर आएंगे आकाशवाणी की तरफ से। तो बिल्कुल आपको बने रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो। और बस फिलहाल कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण, और बिल्कुल उसके साथ साथ जो हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं लगातार, और पंकज अमरावती महाराज से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर रहे हैं हमारे साथ। फिलहाल बहुत सारे तमाम श्रोतागण, उन सभी को हम नमस्कार कहते हैं, सुप्रभात कहते हैं, और लगातार आकाशवाणी के साथ अपना साथ ऐसे ही निभाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम लेकर आते हैं। फिलहाल आपसे अनुमति चाहता हूँ कार्यक्रम समर्पण के बाद।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का छठा अध्याय। इस छठे अध्याय में ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष के अध्यात्मादि विभूति का कीर्तन किया है और पुरुष सूक्त द्वारा इन समस्त विषयों को बहुत दृढ़ किया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से बताया है कि विराट पुरुष के कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी इंद्रियां हैं, कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन से देवताओं का उत्पत्ति स्थान कहाँ से है, उनका अधिष्ठान कहाँ पर है। बाद में परमेश्वर की एक पाद और त्रिपाद विभूति के बारे में भी बताया है और ये भी बताया कि विद्या और अविद्या दोनों ही, ये जो माया है ये परमेश्वर के अधीन है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि अद्वैय ज्ञान भगवान के अलावा वस्तु की पृथक सत्ता नहीं है। भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं रह सकती, सब भगवान के कारण है, भगवान से है। भगवान का कोई कारण नहीं है, भगवान से सब कुछ है। तो जिस तरह से पृथ्वी में उत्पन्न, यानी पृथ्वी में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं ना, कई औषधियां, फल फूल, और इन्हीं चीजों से पृथ्वी की पूजा भी की जाती है, इसी तरह से भगवान की पूजा भगवत संबंधी वस्तु के द्वारा हो जाती है, है ना? क्योंकि हम जो भी वस्तु भगवान की पूजा में प्रयोग करते हैं वो सब तो भगवान से ही प्रकटित है। ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं भगवान के नाभि कमल से प्रकटित हूं और उनके नाभि कमल से प्रकटित होकर भी मैं यज्ञेश्वर भगवान श्री नारायण श्री विष्णु को देख नहीं पाया। मैं तो केवल परम पुरुष के अवयव से, यानी उन्होंने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं उन वस्तुओं से नित्य सिद्ध यज्ञ संभार का संग्रह करता ही हूं मात्र। सब चीजें मात्र मैंने इकट्ठी की हैं, बनाई कुछ नहीं है। और मैंने तप किया, यज्ञ किया, मेरे अनुकरण यानी मुझे देखकर ही समस्त जीव भगवान को यज्ञ द्वारा पाने का प्रयास करने लगे, आराधना करने लगे। मैं हूं चाहे महादेव हूं चाहे अन्य देवी देवता हूं, सब हरि के अधीन हैं, हरि के ही आज्ञावाहक हैं। वही त्रिशक्तिधृक हरि परमात्मा रूप में विश्व का पालन करते हैं। तो चूंकि मैं भगवान की सेवा करना चाहता था, मेरा चित्त भगवान की सेवा के प्रति अतिशय उन्मुख था, तो मैं हरि को, भगवान को हृदय में धारण कर पाया और इसीलिए मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी इंद्रियां सार्थक हो पाई। लेकिन जो लोग भगवान की सेवा से विमुख हैं, चाहे वो शास्त्र जानते हों तो भी वो मनोधर्म के वशीभूत ही रहते हैं, मन से प्रकटित समस्त धर्म के वशीभूत रहते हैं। उन्हें चूंकि भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, इसलिए शास्त्रों को जानने के बावजूद वो सिर्फ कल्पनाओं के वशीभूत रहते हैं। मैं भी भगवान को अच्छी तरह से जान पाया ऐसा नहीं कह सकता हूं। जब मैं ही नहीं जान पाया तो फिर भगवान ने जो जीव बनाए हैं वो तो बहुत ही क्षुद्र हैं, बहुत ही छोटे हैं, वो भला भगवान को क्या जान पाएंगे? अरे भगवान को तो भगवान भी नहीं जान पाते हैं, अपनी योग माया के विस्तार का भगवान भी अंत नहीं पाते हैं, तो फिर क्षुद्र जीव भला उन्हें कैसे जान सकता है? ब्रह्मा जी, नारद जी, रुद्र, जितनी भी विभूति हैं भगवान की, वो भगवान को नहीं जान सकती, तब फिर जो दूसरे देवता गण हैं वो ही भला कैसे जान पाएंगे? तो सब लोग भगवान को अपनी अपनी माया विमोहित बुद्धि और तुच्छ क्षुद्र ज्ञान के अनुरूप ही उनका वर्णन करते हैं। भगवान को जान नहीं पाता है कोई, जो वर्णन वो करते हैं वो बस अपनी माया विमोहित बुद्धि द्वारा करते हैं। भगवान प्रतिकल्प के आरंभ में
स्वयं ही सृजन करते हैं, ब्रह्मांड का पालन करते हैं और स्वयं ही संहार कर देते हैं। जो मुनिगण हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है सेवा उन्मुख प्रवृत्ति, यानी वो भगवान की सेवा करने में अतिशय अतिशय प्रलुब्ध रहते हैं और इसीलिए वो भगवान का स्वरूप तत्व जान पाते हैं। परंतु जिस समय वो असत तर्क के वशीभूत हो जाते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि कोई तर्क वितर्क करे और असत तर्क को ही बहुत ज्यादा महिमा युक्त करके उनके सामने रख दे और वो वशीभूत हो जाए, तब नित्य प्रकाश भगवान के रूप का वो भी वर्णन नहीं कर पाते, वो भी उनकी बुद्धि के अगम में हो जाता है। तो जो कारणार्वशायी पुरुष हैं, वो हरि के प्रथम अवतार हैं। जो कुछ भी है वो भगवत संबंधी वस्तु है। उस भूमा पुरुष के लीला अवतार की कथा सुनकर अन्य बेकार का जो प्रजल्प है, इधर उधर की बातें, उनको सुनने की इच्छा दूर हो जाती है। इसलिए हे नारद, मैं धीरे

धीरे क्रमानुसार सारी कथा तुमको सुना रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को विराट पुरुष के बारे में बताया और वो विराट पुरुष स्वयं भगवान ही है। भगवान से ही विराट पुरुष प्रकट है, विराट पुरुष से भगवान प्रकट नहीं है, है ना? ये तो हमेशा ही समझ के रहना होगा। भगवान किसी चीज से प्रकट नहीं होते, सर्व कारण कारणम है ना, इसलिए वो कभी भी किसी से प्रकट नहीं होंगे, उनसे सब कुछ प्रकट होता है। विराट पुरुष भी उन्हीं से ही प्रकट होता है। तो छठे अध्याय में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया है ब्रह्मा जी ने, तो हम इसको एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं ताकि आप जान पाएं कि विराट पुरुष के किस अंग से किस चीज का प्राकट्य हुआ। अब विराट पुरुष के जो कारण हैं, जो प्रकट हुए, वो भी भगवान, स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वाचाम वहनिर्मुखाम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधात्वहा हव्य कव्यामृता नानाम जिह्वा सर्व रसस्य च सर्वासूनाम च वायुश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनाम च घ्राणो मोद प्रमोदयोः रूपाणाम तेजसाम चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रमाकाश शब्दयोः तदगात्रम वस्तुसाराणाम सौभगस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्युद्भिज्ज जातीनाम यैर्वायज्ञस्तु संभृतः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो विराट पुरुष है ना, इनके मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनके सात धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार के रस रसेंद्रिय उनके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण अपान व्यान उदान और समान ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से यानी नासिका से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां और साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनके नेत्रेन्द्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से और आकाश तथा शब्द श्रोत्रेन्द्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश दाढ़ी मूंछ और नखों से मेघ बिजली शिला लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुव स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल वीर्य सृष्टि मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिया मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा निरृति मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय अधर्म अज्ञान नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वत का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद हम तुम धर्म सनकादि शंकर विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाऊं? मैं तुम तुम्हारे बड़े भाई सनकादि शंकर देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी मृग रेंगने वाले जंतु गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस
भूत प्रेत सर्प।

0: शु पितर सिद्ध विद्याधर चारण वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह नक्षत्र पुच्छल तारे बिजली बादल और तारे सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा सबको वो घेरे हुए हैं और उसके अंदर ये विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके आहार बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वो परे हैं। अमृत और मोक्ष पद के वो स्वामी हैं। यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र हैं, अंश मात्र, और उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवर लोक, स्वर लोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों के दो मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या रूपी कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूपी विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से या मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान ही दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपने किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस ब्रह्मांड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कुछ भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुश, यज्ञ भूमि, यज्ञ के योग के उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल, औषधियां, घृत, स्नेह पदार्थ, छेरस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋख, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित, समर्पण, ये सब मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंग से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा पूजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट और अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके बाद समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। तो नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण एकत्र कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की तीनों शक्तियां स्वीकार की हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव, अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो भगवान से अलग हो। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात बताई है ब्रह्मा जी ने नारद जी को कि भगवान ही सर्वे सर्वा है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे भी कुछ कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193272

0: 888-888-9. अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
1: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के छठे अध्याय पर। और आपने जाना कि किस प्रकार से विराट पुरुष के किस अंग से किस चीज की सृष्टि हुई और ये विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं और उन्हीं के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा जी। और आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, ना भारती में अंग मृषोपलक्षते ने वै क्वचिन में मनसो मृषा गति, ना मे ऋषिकाणी पतंत्य सत्पथे यन्मे हृदौत कंठ्यवता धृतो हरि। प्यारे नारद, मैं प्रेमपूर्ण तथा उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ, इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। वाह, कितना सुंदर वक्तव्य है ब्रह्मा जी का। देखिए, इतने इतनी बड़ी विभूति हैं ब्रह्मा जी। भगवान उनकी सहायता से उनमें शक्ति डालकर पूरा ब्रह्मांड का सृजन करवाते हैं, तो भी कहीं से कोई गर्व नहीं है ब्रह्मा जी में कि मैंने किया। अरे भगवान तो पीछे से शक्ति दे रहे हैं, सामने तो मैं ही हूं, मैं नहीं हूं तो कैसे होगा, कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ठीक है, सृष्टि का कार्य हो रहा है, ठीक है, ये तो कार्य है, करना ही होगा, इसी के लिए मुझे मनोनीत किया है भगवान ने, लेकिन मैं स्वयं भगवान के साथ जो संबंध रखता हूं वो बड़ा ही विशेष है। क्या विशेषता है आपकी भक्ति में? क्योंकि ब्रह्मा जी गुरु तत्व हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया है और नारद जी से फिर आगे परंपरा चली है। तो कह रहे हैं कि नारद जी, मैं तो प्रेम पूर्ण और उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूं, यानी मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं और उनको जानने की, उनकी स्तुति करने की उत्कंठा मेरे हृदय में बनी रहती है, उनकी लीलाओं के दर्शन की उत्कंठा मेरे हृदय में बनी रहती है और मेरा आश्रय सिर्फ और सिर्फ भगवान है, तो मुझे तो उनसे बहुत प्रेम है। और हो भी क्यों ना, भगवान की नाभि से ही तो उत्पन्न है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी तो किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं है, ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न है, नाभि कमल पर वो प्रकट हुए भगवान की इच्छा से। तो पहला जो संपर्क हुआ भगवत कृपा से ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी ने तो देखा मैं अकेला हूं, मेरे तो आसपास कोई है नहीं, तो जो उन्होंने तपस्या के बाद देखा तो भगवान के दर्शन किए, तो भगवान का दर्शन करते ही उनकी आंखें सजल हो गईं। और बात भी सही है, अपने आश्रय, जिनके चरणों का आश्रय उन्होंने लिया है, जिनकी वजह से वो हैं, उनका दर्शन प्राप्त करके अवश्य ही रोमांचित हो गए हैं ब्रह्मा जी, अवश्य ही सात्विक विकारों से वो युक्त हो गए हैं, उनके हृदय में उत्कंठा है भगवान को पाने की। तो ब्रह्मा जी भी स्वयं को भगवान का कार्यकर्ता समझते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं को भगवान से अलग कोई शक्ति नहीं समझते हैं, भगवान के अधीन समझते हैं। कह रहे हैं कि चूंकि मैं हमेशा भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूं, स्मरण में मग्न रहता हूं, यानी मेरा मन कहां रहता है, तो मन भगवान में रहता है, यही बता रहे हैं। और कोई उत्कंठा रहित भजन नहीं है उनका, उत्कंठा युक्त भजन है और प्रेम युक्त

हमारे मन में और ब्रह्मा जी के मन में क्या अंतर है? यही कि हम 24 घंटे असत संकल्प करते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ये कर लूं वो कर लूं, ये पा लूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाता हमारे आसपास तो ठीक रहता, वो हो जाता तो ठीक रहता, नहीं होता है तो हम दुखी हैं, होता क्यों नहीं है, होना ही चाहिए, बस इसी में लगे रहते हैं। तो ये सब असत संकल्प है, क्योंकि ये भगवान से संबंधित नहीं है। जो भी चीज भगवान से संबंधित नहीं है वो असत्य है। और हम जो कि भगवान के अंश हैं, अगर हम असत संकल्पों को करते रहेंगे, असत के पीछे भागते रहेंगे, तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं? कभी भी दुख हमें छोड़ेगा नहीं, है ना। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा, चूंकि मैं प्रेम पूर्ण और उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ, तो मेरी वाणी कभी असत्य होती दिखती नहीं, मेरा मन कभी असत्य संकल्प करता नहीं, और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, तो इंद्रियों को विषय भोग ना कराएं क्या? तो उत्तर है कि हाँ, इंद्रियों को विषय भोग कराने ही चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरा मन भगवत रूप भगवत रस में ऐसा डूबा हुआ है, मेरी इंद्रियां सिर्फ भगवत रस का आस्वादन करने में ऐसी मत्त हो गई हैं कि वो सोच भी नहीं सकती हैं कि मैं मर्यादा का उल्लंघन करूं और कुमार्ग में जाऊं। कुमार्ग में है क्या? कोई रस नहीं है भाई। आंखें नहीं चाहती हैं ब्रह्मा जी कि मैं दुनियावी रूप देखूं। ब्रह्मा जी की आंखें हमेशा भगवत रूप का दर्शन करना चाहती हैं। ब्रह्मा जी की नासिका भगवत चरण अर्पित तुलसी और पुष्पों की गंध लेना चाहती है। ब्रह्मा जी के कान भगवत गुणानुवाद को सुनने के लिए छटपटाते हैं, क्योंकि जो प्रेम करता है भगवान से, जो भगवान के स्मरण में मग्न रहता है, वो हमेशा भगवत विषय में ही डूबता है, वो भगवत विषय का ही आस्वादन करना चाहता है। उससे बड़ा आस्वादक ही कोई नहीं है, क्योंकि वो भगवत रस का आस्वादन करता है। और चूंकि वो भगवान के रस का आस्वादन करते हैं, तो उनकी इंद्रियां भी भगवत रस में पूरी तरह निमग्न हैं। इसीलिए वो इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का रस अगर किसी को प्राप्त हो गया, तो फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है, है ना। तब वाणी सत्य ही बोलेगी, यानी भगवान से जुड़ी बात बोलेगी। मन हमेशा सत्य संकल्प करेगा, यानी हर चीज हर संकल्प भगवान से जुड़ा होगा, और इंद्रियां भी भगवत रस में डूबी होंगी तो शांत होंगी। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि मैं वेद मूर्ति हूं, मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मैं उनका स्वामी हूं। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं तो अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को भी नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि वो तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था। तो पहले तपस्या की और योग का भी अनुष्ठान किया, सर्वांग अनुष्ठान किया, लेकिन कह रहे हैं इससे मैं भगवान को नहीं जान सका, ना तपस्या से, ना यज्ञों से, ना योग से, क्योंकि वो तो सिर्फ भक्ति से ही जाने जाते हैं ना। तो आगे 35वें श्लोक में भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान कैसे जाने जाते हैं, भगवत तत्व क्या है, और इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेमधारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

ये थी कृष्ण प्रेमधारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. On the occasion of India's 80th Independence Day, we now take you over to Red Fort for the live broadcast of the flag hoisting ceremony and address to the nation by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. Our commentators are Sri Kaushik Roy, Srimati Anup Kaur, and Sri Munish Jolly.
1: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले में। हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1455।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ओवर टू रेड फोर्ट।
3: Vande Mataram and Namaskar. On the occasion of India's 80th Independence Day, I, Anoop Kaur, with my fellow commentators Kaushik Roy and Munish Jolly, extend a joyous greetings to all Indians who are tuned

अंदर सीधा पुलिस बल।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए, जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। मेरे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मेरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े। पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने
1: आत्म

चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है, और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया, और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी, और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी
पूरी शक्ति लगाना।

बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी
कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वह बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है।
भारत का मजबूत न्याय

तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कंपल्सन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं।
आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहे हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
शहरों को

हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा, मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिफ्ट आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है मेरे प्यारे देशवासियों। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है, योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है, हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों को आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है, विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे, ये बहुत बड़ा अवसर है। हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की

सात शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए

सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है, देखिए नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है, मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है, स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है, करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है।

और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक

आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्मल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना

सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है, और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों,
आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका एक या दो घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये एक दो घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को सामर्थ्य बनाएं और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाएं, लक्ष्य से जुड़े रहें, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाएं। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
1: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
0: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हाँ जी, तो स्वागत आपका दिल के तराने गाने नए पुराने के अंदर। लेकिन अब ये भी जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब आपने देश के नाम संदेश जब सुन लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो फिर अब आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बातें उन्होंने कही हैं उन पर अमल करने की। लेकिन अब फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो ट्रैफिक है वो मैं आपको बता दूँ, इस समय ट्रैफिक भाई साहब बिल्कुल स्मूथ है। छुट्टियाँ हैं, शनिवार इतवार दो दिन की छुट्टी है, जिन लोगों को जाना था वो सब बाहर चले जाएं। लेकिन जो घर पे हैं, कहीं नहीं जाना बहुत ज़रूरी, तो वैसे मेरे हिसाब से घर पे रहें। अच्छा अच्छा है ये सैटरडे वाला दिन, 15 अगस्त आज़ादी वाला दिन है, इसको अच्छे से सेलिब्रेट करें। और दूसरा, प्लीज़ सबसे बड़ी खास बात, अगर आप छत पर पतंग उड़ाने के लिए जा रहे हैं तो धागे वाले मांझे का ही प्रयोग कीजिएगा। सिंथेटिक जो मांझा आता है उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, उससे जान को भी खतरा है, हाथ को भी खतरा है। और जो जब वो पतंग कट जाती है उसके बाद जब वो छोटे छोटे बच्चे हैं जब उसको वो लूटने के लिए जाते हैं उनको भी खतरा है। हर बात का ध्यान रखना है, प्रोग्राम सुनते रहना है, आनंद उठाते रहना है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों है ना इंडिया वाले।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
7: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
11: पता का चाय, गजब का स्वाद।
12: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
13: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
14: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
15: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
16: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
6: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
7: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

तो चलिए जी, मेरा जाने का समय हो चुका है क्योंकि स्टूडियो के अंदर हिमानी आ चुकी हैं लेकर प्रोग्राम आपके लिए। अब मैचलेस म्यूजिक आर आपका प्रोग्राम होगा, उसके बाद राजेश आएंगे प्रोग्राम लेकर बॉलीवुड फेल्स, उसके बाद आपके साथ में होंगी प्रियंका वर्मा लेकर प्रोग्राम आशियाना, उसके बाद संतोष राव आपके साथ में होंगे लेकर प्रोग्राम रेडियो, डॉक्टर दीपिका भटनागर आपके साथ में होंगी मैसेज मसाला मिक्स का होगा प्रोग्राम, हिना मौज आएंगी प्रोग्राम आपका आपकी याद आती रहे, और भाई साहब अब हम यहाँ से उधर को जाते रहें। ठीक है, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं, घर पे रहिए, आराम कीजिए, थोड़ा सा घर में काम में भी हाथ बटाइए। ओके, आप अपना ध्यान रखिएगा, आप सभी को एक बार फिर से बधाई।

0: I hope you like that.
1: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
5: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
5: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
6: Welcome back. You're with Akashwani Rainbow, and this is the Independence Day special, Matchless Musica. And it's 10:15 by the studio clock, and time to put out the first Hindi track of the show.

0: Time now for another break and we'll see you on the other side.
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक एंड वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड द प्राइड ऑफ बीइंग एन इंडियन। देयर आर मेनी अदर थिंग्स वी हैव गिवन द वर्ल्ड व्हिच ट्रूली मेक्स अस प्राउड इंडियंस। व्हेन द वर्ल्ड वाज स्टिल इन डार्कनेस, India created artificial light. While the world was still waking up to knowledge,

है। आज भारत आत्मनिर्भरता में टेक्नोलॉजी और ग्लोबल रेपुटेशन के नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इस मंत्र ने हमें एकजुट किया है। केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली भी इस विकसित भारत की सारथी बन रही है। 1.5 साल पहले आप सभी दिल्ली की जागरूक जनता ने दिल्ली की बागडोर भाजपा सरकार को सौंपी और हमने आपके विश्वास को ठोस कार्यों में बदलने का प्रण लिया। आज दिल्ली में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और महिला और युवा सशक्तिकरण में ऐतिहासिक बदलाव दिख रहा है। हमारी सरकार ने दिल्ली के तेज विकास और लोगों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बार 1,03,000 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसका करीब 22% हिस्सा ग्रीन बजट के रूप में रखा गया। यानी हमारी प्राथमिकता सिर्फ विकास नहीं, स्वच्छ, हरित और सस्टेनेबल दिल्ली का निर्माण भी है। इसी सोच के साथ हरियाली बढ़ाने, प्रदूषण कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने और लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। दिल्ली में ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजधानी में इस साल 70 लाख पेड़ लगाने का कार्य कर रहे हैं। हम दिल्ली में लगातार रिज एरिया को बढ़ा रहे हैं और नए नमो ऑक्सीजन वन की स्थापना कर रहे हैं। दिल्ली में लगातार कूड़े के पहाड़ घट रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के सहयोग से हमने भलसवा और ओखला लैंडफिल साइटों का करीबन 80% हिस्सा साफ कर लिया है। हमारा लक्ष्य है कि यह काम दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाए। इसी तरह गाजीपुर लैंडफिल को भी दिसंबर 2027 तक पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य है। यही नहीं, हम बायोगैस प्लांट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में कचरे को प्रोसेस करके उसे ग्रीन एनर्जी में बदलने का काम भी कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का एक MOU साइन किया गया, जिसमें गोबर को प्रोसेस करके बायोगैस और प्राकृतिक खाद बनाई जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए दिल्ली नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच में भी MOU साइन किया गया। दिल्ली का विकास माँ यमुना की स्वच्छता के बिना अधूरा है। माँ यमुना हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और दिल्ली की जीवन रेखा है। वर्षों से हम सभी की यही इच्छा रही कि माँ यमुना को फिर से निर्मल और अविरल बनाएं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि पहले दिन से हमारी

की सरकार मां यमुना की सफाई के लिए मिशन मोड पे काम कर रही है। दिल्ली में एक्शन प्लान के तहत बड़े नालों का ट्रीटमेंट, सीवेज नेटवर्क का अपग्रेडेशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल सहित हम सभी सोर्सेज को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं जो मां यमुना के प्रदूषण का कारण बनते हैं। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, वायु प्रदूषण हमारी दिल्ली की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है, जिससे निपटने के लिए हमारी सरकार हर सेक्टर में मिशन मोड पे काम कर रही है। हम दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ईवी में बदल रहे हैं। आज दिल्ली में डीटीसी के बड़े बेड़े में 4800 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, जिनमें 1593 देवी इलेक्ट्रिक बसें हैं जो 9 मीटर की हैं। आज दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन चुका है। इतना ही नहीं, हमने दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर लोगों को 30,000 से 1,00,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरे शहर में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम कर रही है, ताकि लोगों को चार्जिंग की सुविधा आसानी से मिल सके। दिल्ली के सरकारी अस्पताल अब टेक्नोलॉजी और सेवा दोनों में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में हमने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान व्यय वंदन योजना लागू कर दी थी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि आज इन योजनाओं के माध्यम से दिल्ली में हमारे ज़रूरतमंद भाई बहनों और वरिष्ठ नागरिकों को 10,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है। अभी तक इन योजनाओं में 8,00,000 से अधिक दिल्ली वासियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब तक हजारों लोग इन योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं। हमारी सरकार ने दिल्ली में 415 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, जिसमें 80 प्रकार की जांच पूरी तरीके से निशुल्क कराई जाती है। हमारी सरकार का लक्ष्य राजधानी में 1100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों की स्थापना करना है, ताकि दिल्ली के हर घर तक प्राइमरी हेल्थ सर्विस पहुंच सके। शिक्षा वह शक्ति है जो सपनों को उड़ान देती है और भविष्य को नई दिशा देती है। एक शिक्षित समाज ही समृद्ध, सशक्त और विकसित राष्ट्र की पहचान होते हैं। जहाँ शिक्षा मजबूत होती है, वहाँ भविष्य उज्जवल होता है। यही वह शक्ति है जो एक बच्चे का नहीं बल्कि पूरे देश का भाग्य बदल देती है। इसलिए हमारी सरकार ने दिल्ली में दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 लागू किया है, जिससे निजी स्कूलों में फीस पे मनमानी पर अंकुश लगा सकें, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली है। दिल्ली में 75 CM श्री स्कूलों का भी विकास किया गया है, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। विद्यावाहिनी योजना के तहत हमारी सरकार दिल्ली के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को साइकिल प्रदान कर रही है। खेल महाकुंभ, दिल्ली स्टूडेंट ओलंपिक्स जैसे आयोजनों से दिल्ली के स्कूलों में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। सहेली पिंक कार्ड में महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा का भी लाभ मिल रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक दिल्ली में 17,43,000 से अधिक बेनिफिशरीज को सहेली पिंक कार्ड दिया जा चुका है। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को भी लागू कर दिया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 3,00,000 से अधिक बहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारी सरकार ने लखपति बिटिया योजना भी शुरू की है, जिसके तहत बिटिया के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक उसके खाते में कुल 61,000 रुपये सरकार जमा कराएगी, जो ब्याज समेत उसे 1,25,000 रुपये के रूप में हर बिटिया को दिए जाएंगे। दिल्ली शहर में जब कोई बच्चा जन्म ले तो उसके लिए एक अनमोल योजना भी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत 56 प्रकार के टेस्ट दिल्ली सरकार निशुल्क रूप में इन बच्चों का कराएगी, ताकि समय रहते बीमारी का पता चले और उसका इलाज भी हो सके। दिल्ली में 70 से अधिक अटल कैंटीन संचालित हो रही है,
जहां लोगों को मात्र 5 रुपए में

0: पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे हमने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, उसी को पूरा करते हुए हमारी सरकार सभी राशन कार्ड धारकों को होली और दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर भी प्रदान कर रही है। हमारी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी, नए राशन कार्ड बनाना, उसे भी बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड के लिए वार्षिक आय सीमा भी बढ़ा दी है, जिसे 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से गौरवशाली बनाने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। मेरे दिल्ली वासियों, ये सब योजनाएं और उपलब्धियां तभी सार्थक होगी जब दिल्ली का हर नागरिक दिल्ली के विकास में भागीदार बने। हम सड़क पर कचरा ना फेंकें, दिल्ली यमुना पर्यावरण को स्वच्छ रखें। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, आज़ादी हमें विरासत के रूप में नहीं मिली है, यह हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान से मिली है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, हम अपने देश, अपने संविधान और अपने तिरंगे का हमेशा सम्मान करें। आइए इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और अपने अपने स्तर पर देश और दिल्ली के विकास में योगदान देंगे। यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।
1: अभी आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का दिल्ली वासियों के लिए संदेश सुन रहे थे।

0: That was Lata Mangeshkar with Chorus from the 1952 film Anand Math. This year, we proudly celebrate 150 years of Vande Mataram. It was originally a poem written by Bunkim Chandra Chattopadhyay in 1875 to give voice to the awakening spirit of the motherland. It became the central slogan and anthem of resistance during the Swadeshi movement in 1905. It was formally adopted as our national song by the Constituent Assembly in 1950.
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
7: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
6: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
7: हैं? इतनी जल्दी?
6: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक, you're with us on Akashwani Rainbow and this is the Independence Day special, Matchless Musica. Bharat, indeed a great nation, undoubtedly. There are many aspects of our day-to-day lives which we take for granted, but actually are luxuries for most people in most countries. Let's see one by one. That daily newspaper without which our mornings are incomplete, we get them delivered at our doorstep, and even in most developed nations, trust me, this is a luxury. Not only is it expensive, but not this easily accessible. Our television and internet connections, nearly around 300 channels and fast speed browsing available for a few hundred rupees a month. Check about these services with your friends abroad and the difference will be loud and clear. How can we overlook our home delivery network? Groceries, household items, clothes, medicines, and so much more. All delivered in the range of a few minutes to, let's say, maximum a week. And we can even return or exchange them in most cases. Is there any other country that can match up to this? And of course, how to not mention medical care and facilities. Instant to almost within a week appointments with the doctors, which could take months in most countries. For all of them and more, all we need to do is probably just a phone call.

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पिछले 12 वर्षों में डिजिटल, विनिर्माण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ तीव्र विकास किया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की

सराहना की है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्ग आइलैंड में एक रैली में कहा कि जल्द ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य को आधिकारिक रूप से अमरीकी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया में आज सुबह 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिससे घरों और सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचा। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं मिली है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। FM रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। आप सभी को आजादी के 80वें वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रोग्राम बॉलीवुड रील्स लेकर मैं राजेश कुमार आप सभी तक पहुंच रहा हूं। दोस्तों, भारत की आजादी की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज तारीखों और घटनाओं की नहीं है, ये उन चेहरों, आवाजों, सपनों, संघर्षों और बलिदानों की कहानी है जिन्हें भारतीय सिनेमा ने समय समय पर पर्दे पर जीवंत किया है। कल यानी कि 14 अगस्त 2026 को बंटवारा 1947 फिल्म रिलीज हुई, जो हमारे सामने उस दौर की कहानी लेकर आई है जब एक तरफ देश आजादी की दहलीज पर था और दूसरी तरफ विभाजन की त्रासदी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही थी। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल जैसे कलाकार हैं। इसके साथ ही अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो स्वतंत्रता संग्राम पर बनी फिल्मों की सिनेमाई यात्रा सन 1946 की फिल्म 1857 से शुरू हुई और 1952 की आनंद मठ से लेकर 2024 की अय वतन मेरे वतन और अब बंटवारा तक अनेक बेमिसाल फिल्मों की एक लंबी परंपरा हमें दिखाई देती है। दोस्तों, इन फिल्मों में आजादी की लड़ाई के अलग अलग चेहरे हैं। 1857 का विद्रोह है, सामाजिक सुधार है, गांधी जी का सत्याग्रह है, क्रांतिकारियों का संघर्ष है, आजाद हिंद फौज है, भारत छोड़ो आंदोलन और विभाजन की पीड़ा भी है। तो आइए सिनेमा के इस अनूठे सफर को समझते हैं बॉलीवुड रेल्स में, जब भारत के करोड़ों दिलों में एक ही सपना था और वो सपना था आजादी का।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ राजेश। दोस्तों, देश की आजादी की कहानी जो है हमारी फिल्मों में, हमारे सिनेमा में सुनाई देती है। कब से? बहुत पहले से। हमने जैसा कि आपको बताया, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। हालांकि भारतीय सिनेमा ने 1857 से पहले के विद्रोही वातावरण को भी पर्दे पर दिखाया। सन 1952 की आनंद मठ ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास के माध्यम से सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि सामने रखी। इसके बाद 1857 की क्रांति के दो प्रमुख चेहरों, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, इन पर भी फिल्में बनी। सन 2019 की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई। वहीं सन 2005 में केतन मेहता की मंगल पांडे द राइजिंग में आमिर खान ने मंगल पांडे का किरदार निभाया। फिल्म में रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल और किरण खेर भी मुख्य भूमिकाओं में थी। इनके बीच एक और फिल्म जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, और वो है सन 1978 की श्याम बेनेगल की जुनून। शशि कपूर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और जेनिफर कैंडल अभिनीत ये फिल्म 1857 को केवल युद्ध और विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि आम इंसान के जीवन में आए उथल पुथल के रूप में देखती है। अलग अलग समय में बनी इन फिल्मों को अगर हम साथ रख कर देखें तो 1857 की एक बड़ी तस्वीर बनती है। एक ऐसा भारत जहां अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ असंतोष अब खुलकर प्रतिरोध में बदल चुका था।

साथियों, आजादी की कहानी केवल अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं थी। उस समय भारत सामाजिक और वैचारिक बदलावों से भी गुजर रहा था। इसलिए उस दौर के महापुरुषों के जीवन पर बनी फिल्में हमें उन परिस्थितियों को समझने का अवसर देती हैं। सन 1993 की सरदार में परेश रावल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई और स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दिखाया। सन 2000 की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में मम्मूटी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका निभाई। फिल्म उनके शिक्षा संघर्ष, सामाजिक भेदभाव और समानता के लिए उनके संघर्ष को सामने लाती है। वीर सावरकर पर सन 2001 में वीर सावरकर बनी और फिर सन 2024 में स्वतंत्र वीर सावरकर आई, जिसमें रणदीप हुड्डा ने सावरकर की भूमिका निभाई। इसी तरह गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं पर बनी फिल्मों ने स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग विचारों को और उन रास्तों को सबके सामने रखा। इन फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके जरिए हमें उस समय का भारत दिखाई देता है जहां राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक बराबरी, आत्मसम्मान और राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर भी गहरे संघर्ष चल रहे थे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
6: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
7: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
6: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के आगमन ने संघर्ष का स्वरूप बदल दिया। सत्याग्रह, असहयोग और अहिंसा ने आंदोलन को आम भारतीयों से जोड़ दिया। सन 1982 की रिचर्ड एटनबरो निर्देशित गांधी में बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सफलता मिली और इसे 8 एकेडमी अवार्ड्स मिले। इसके बाद सन 1996 की द मेकिंग ऑफ द महात्मा में रजित कपूर और सन 2000 की हे राम में नसीरुद्दीन शाह ने गांधी जी की भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक असर को समझने के लिए सन 1963 की बिमल रॉय की बंदनी भी खास महत्व रखती है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म जेल और स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में एक स्त्री के व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी कहती है। बंदनी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का संघर्ष केवल राजनीतिक नेताओं या क्रांतिकारियों का नहीं था, उसका असर समाज के हर वर्ग तक पहुंचा था। शैलेंद्र का लिखा एक गीत है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये उन परिवारों की पीड़ा को आवाज़ देता है जिनके बेटे देश की लड़ाई में चले गए।

दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसी धारा भी थी जिसने अंग्रेजी शासन को सशस्त्र क्रांति और सीधी कार्रवाई के जरिए चुनौती दी। सन 1965 की शहीद में मनोज कुमार ने भगत सिंह की भूमिका निभाई। इसके बाद सन 2002 में द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, 23 मार्च 1931 शहीद और शहीद आजम जैसी फिल्में आई। अजय देवगन, बॉबी देओल और सोनू सूद ने अलग अलग फिल्मों में भगत सिंह की भूमिका निभाई। भगत सिंह की कहानी चंद्रशेखर आजाद के बिना अधूरी है। वो उनके मार्गदर्शक और साथी थे। सन 1963 की चंद्रशेखर आजाद से लेकर बाद की फिल्मों

तक सिनेमा ने अलग अलग समय में आजाद को दर्शकों तक पहुंचाया। क्रांतिकारी आंदोलन की कहानी बहुत लंबी है। बंगाल में सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने चटगांव में अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। सन 2010 की खेले हम जी जान से और सन 2012 की चिटगांव, इसने चटगांव विद्रोह को पर्दे पर उतारा। इस तरह सिनेमा ने हमें ये समझने में मदद की कि स्वतंत्रता आंदोलन में देश के अलग अलग हिस्सों में समानांतर रूप से अनेक क्रांतिकारी धाराएं सक्रिय थीं।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है बॉलीवुड रील्स। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में सिनेमा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल समय है कि आप तक पहुंचा दें कुछ खेल से जुड़ी हुई जानकारियां। और अब समय है हमारी अगली प्रस्तुति का। ये जो प्रोग्राम है हमारा, लगभग 17 मिनट तक आप तक जो खेलों की जानकारी हम पहुंचाएंगे स्टंप्ड के जरिए, और उसके बाद एक बार फिर से हम और आप होंगे साथ बॉलीवुड रील्स में। तो चलिए सुनते हैं स्टंप्ड।
1: From the BBC World Service, in association with ABC and Akashvani, this is Stumped.
2: Hello and welcome to Stumped, your intercontinental hit of news, features and debate from the quirky world of cricket. I'm Alison Mitchell in a hotel room in Birmingham right now. Been on a road trip for the 100, but this is where the test summer for the men will conclude as well, with Pakistan touring. And I tell you what, the weather continues to be scorchio here in the UK.
3: Great to see you, Ali. Brett Sprigg here at the ABC in Sydney, where it feels like our summer is underway in mid-August. And that's why you've got

श्याम बेनेगल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो में सचिन खेड़ेकर ने नेताजी की भूमिका निभाई। फिल्म ने आजाद हिंद फौज और नेताजी के संघर्ष को गंभीरता से सामने रखा। गांधी जी और नेताजी के रास्ते अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। इसी तरह सन 2021 की सरदार उधम ने जलियांवाला बाग की त्रासदी को सरदार उधम सिंह के जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया। विकी कौशल ने उधम सिंह की भूमिका निभाई और उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि उसने उधम सिंह को केवल प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक त्रासदी को अपने भीतर वर्षों तक ढोने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। जलियांवाला बाग ने जिस पीढ़ी को झकझोरा था, उसके भीतर आजादी की मांग अब और अधिक तीखी हो चुकी थी। फिर आता है साल 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक मोड़ दिया। सन 1994 की 1942 अ लव स्टोरी ने इस दौर को एक प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि में दिखाया। अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर इसके मुख्य कलाकार थे। फिल्म की व्यावसायिक सफलता सीमित रही, लेकिन इसका संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। मगर 1942 की कहानी का एक कम चर्चित अध्याय था उषा मेहता और उनका भूमिगत कांग्रेस रेडियो। सन 2024 की आए वतन मेरे वतन ने इसी घटना को केंद्र में रखा, जिसमें सारा अली खान ने उषा मेहता की भूमिका निभाई। ये कहानी बताती है कि जब अंग्रेजी सरकार ने समाचार और विचारों की आवाज दबाने की कोशिश की, तब एक युवा महिला ने रेडियो को प्रतिरोध का माध्यम बनाया। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल बड़ी रैलियों और आंदोलनों में ही नहीं, बल्कि ऐसे छोटे छोटे अनेक साहसिक प्रयासों में लगातार चलता रहा।

साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन पर बनी फिल्मों का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि उन्होंने इतिहास को आने वाली पीढ़ियों से जोड़ने की कोशिश की। ये जो गीत अभी आपने सुना, सन 2001 की फिल्म लगान से था और इस फिल्म ने औपनिवेशिक भारत में किसानों के आत्मसम्मान और सामूहिक प्रतिरोध की कहानी कही। आमिर खान, ग्रेसी सिंह और रघुवीर यादव अभिनीत इस फिल्म ने भारत और विदेशों में शानदार प्रदर्शन किया और अकेडमी अवार्ड्स में देश का प्रतिनिधित्व भी किया। इसके बाद सन आया 2006 जब आई फिल्म रंग दे बसंती और इसने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों की कहानी को आज के युवाओं के जीवन से जोड़ा। इस फिल्म ने युवाओं में इतिहास को देखने का एक नया नजरिया पैदा किया और फिर आता है साल 1947 जब देश आजाद हुआ, वो साल जिसका इंतजार देशवासियों ने वर्षों तक किया। भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन इस आजादी के साथ विभाजन

सत्याग्रह, भगत सिंह और सूर्य सिंह की क्रांति, नेताजी की आजाद हिंद फौज, उधम सिंह का आक्रोश और उषा मेहता का साहस सब देख पाते हैं। ये कहानियां अलग हैं, रास्ते अलग हैं, विचार अलग हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में एक ही आकांक्षा थी, एक स्वतंत्र और सम्मानजनक भारत। आज जब हम आजादी का उत्सव मना रहे हैं तो ये याद रखना भी जरूरी है कि ये स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। संविधान का सम्मान, लोकतंत्र की गरिमा, सामाजिक बराबरी, आपसी सद्भाव और देश की एकता, यही उस संघर्ष के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तो बॉलीवुड ट्रेल्स में आप राजेश को दीजिए अनुमति। आजादी की लड़ाई के तमाम ज्ञात अज्ञात नायकों को नमन करते हुए हम आपसे लेते हैं विदा। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल, जिसमें हिमानी दत्ता होंगी आपके साथ, और 1 बजे फिर से मैं और आप होंगे साथ। प्रोग्राम होगा मेरा वाला सॉन्ग। तो आजादी की लड़ाई के तमाम ज्ञात अज्ञात नायकों को नमन करते हुए जय हिंद, और ये गीत हम सभी के लिए।

0: चाय बड़ी है मार।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: वेलकम बैक, योर विद अस ऑन आकाशवाणी रेनबो। द शो इज कॉल्ड प्ले इट कूल एंड जॉइनिंग यू टुडे, I didn't give out my name. Well, Himani here with you, and of course to be here on air on this special day is truly an honor to get your messages as well. So the next message here has come in once again from our new friend from Goa, and that is Michael Fernandez. Michael, so good to hear from you, and thank you very much for the appreciation. And he says, green color, we go back to nature at the end and give the look back at what God has created. Beautiful message. Thank you so much. And there is Roland. He says, for me, color is situational. Each color represents something. Though since my childhood, blue and green were my favorite. All right, so the colors of the planet are your favorite ones. You both have requested for a track, and I will definitely play both of them, but you will just have to stick around with me for a little while. And then, of course, this is Praveen once again. Oh, that's great. He says, according to astrology, my moon sign is Virgo and color green rules Virgo. People appreciate me when I wear green colors, especially shirts and t-shirts. That's nice. I like the connection that you made. And then M. Rajkumar once again says, my wardrobe is the same. Shades of blue dominate my wardrobe. Awesome. That's really awesome. So let's move on to the next track. And Michael Fernandez, you requested for a track, and here it is.

0: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक। And yes, the show's called Played Cool and we are talking about colors today. And I have two messages here. One is, this is in Hindi, I guess, from District Mandwa Hasanpur from Rampur, UP. And okay, I'll read this message later. This is not for my show, actually. It's for the next show, I guess, or just a random request. Well, thank you for your message. And yes, right, moving ahead, I, Shyam Sundar, I already played the Freedom Number. And in case there's any other track you have in mind, you can let us know. We would love to play that for you. And right now, moving ahead, let's check out this number.

जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पिछले 12 वर्षों में डिजिटल, विनिर्माण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ तीव्र विकास किया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्ग आइलैंड में एक रैली में कहा कि जल्द ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य को आधिकारिक रूप से अमरीकी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया में आज सुबह 7.7 की तीव्रता का भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई है। घरों और सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, राजेश कुमार। जय हिंद दोस्तों। ये वो प्रोग्राम है जिसमें आपका वाला सॉन्ग यानी कि आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचाते हैं, आपकी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और उसके बाद हम उन गानों को ढूंढते हैं, उनसे जुड़ी जो बातें आप हमारे साथ साझा करते हैं उनको भी हम और अपने साथियों तक पहुँचाते हैं, और उस गाने के साथ जुड़ी आपकी कोई याद हो, कोई बात हो, कोई ऐसी चीज़ जो उस गाने को और आपकी यादों को दोनों को बनाती हो एक दूसरे का और खास, तो हम उसको भी जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत में ही बता देते हैं वो नंबर जिस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा वो नंबर है 9868107070 9868107070। और आज स्वतंत्रता दिवस है तो आज के दिन पर आप सभी का स्वागत एक ऐसे गीत से जो हम सभी के दिलो दिमाग में रहता है, और जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को याद करते हैं, अपने क्रांतिकारियों को याद करते हैं, देश के उन महान सपूतों को याद करते हैं तो हमारा सर और फख्र से ऊंचा उठ जाता है। सलाम है उन सभी देश के नायकों को, नायिकाओं को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है।

बराबर हैं। जिधर देखिए उधर तिरंगे की एकदम झांकी निकल रही है, लोग इस आज़ादी को महसूस कर रहे हैं, मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांट रहे हैं। और यही तो हम चाहते हैं जब हम बात करते हैं आज़ादी की। और आज़ादी की बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं बल्कि आप भी कर रहे हैं अपने मैसेजेस के जरिए जो आप व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए आपके मैसेजेस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आपने कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुँचाई हैं। जो मैसेज आया हमारे पास बिल्कुल 1:01 पर आया, ये नाम है इनका असम के हाफलोंग से इन्होंने मैसेज किया है, नाम है जॉय हैगजर। इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है और साथ ही साथ सौरभ अनेजा का मैसेज आया है गाज़ियाबाद से, इन्होंने कहा है कि मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती है, मैं तो बस शो को एंजॉय करता हूँ और आप एंजॉय करते रहिए। हमें अच्छा लगता है जब हमारे ऐसे साथी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और अपनी बातें हम तक पहुँचाते हैं। हितेंद्र दास असम से कहते हैं कि कोई भी देशभक्ति गीत में मेरा नाम शामिल कर दीजिए। तो दोस्त बिल्कुल पहला गीत तो देशभक्ति हमने आप तक पहुँचाया ही और हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनकी ये पसंद है तो इसमें आपका नाम शामिल हो गया है। और होली चौक उत्तम नगर नई दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इनका भी मैसेज आया है। कई फिल्मों के नाम इन्होंने हम तक पहुंचाए और उनका गीत सुनने की इन्होंने फरमाइश की है। प्रदीप सुलुजा साहब जनकपुरी नई दिल्ली से हमारे साथी हैं और अभी भी कुछ लिख रहे हैं और कुछ लगातार इनकी जो बातें हैं आई हैं। अच्छा, इन्होंने भी बोला है वही कि हमारा जो नाम है किसी देशभक्ति गीत में शामिल कर लीजिए। संगीता सलुजा जी भी हैं और आज इनकी बेटी पारुल भी सुन रही हैं। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप इसी तरह से एफएम रेनबो के साथ बने रहिए और आप लोगों का जो नाम है वो तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी रहे और वो गीत भी जो आप लोग चाहते हैं इस प्रोग्राम में सुनना तो हम उनको भी इस प्रोग्राम का लगातार हिस्सा बना रहे हैं। कोमल और पूजा हरिनगर नई दिल्ली से प्रोग्राम में अपना मैसेज भेजा है और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। पंकज जी हैं अमरावती महाराष्ट्र से, इन्होंने भी यही कहा है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और किसी देशभक्ति गीत में हमारा नाम शामिल करें। और लगभग इसी तरह की फरमाइशें हमारे कई और साथियों की है। राहत और गज़ल का भी मैसेज आया है बिजनौर यूपी के नेहटौर से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइश करने वालों में हमारे कई और साथी हैं। गुड्डू धाकड़ उज्जैन ज़िले के बेडावन गांव से लिखा है इन्होंने कि भारत का शायद कोई नागरिक हो जिसके मन में आज उत्साह उमंग जोश न हो, भारतीय स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, मैं तो सारे ही गाने इंजॉय करूंगा। तो चलिए आप जब सारे ही गाने इंजॉय करेंगे तो हम गाने और आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों इस गीत के साथ मैं भी दोहराता हूँ वो नंबर जिस पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं अपनी फरमाइश के गीत सुनने के लिए, और उन गीतों के साथ आप अपनी कुछ यादें हैं तो वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 9868107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9868107070। इस नंबर पर आप अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और बहुत सारी बातें हम तक पहुंच भी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है, कहां से हमारे साथ जुड़े हैं और क्या बातें हम तक पहुंचाई हैं। दीपा का बिजनौर से मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त का पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और हमेशा यूं ही रंगे रहिए, देशभक्ति हमेशा दिल में रहनी चाहिए, हमारी यही कामना है। और आज हमारे सभी परिवार, इन्होंने आगे लिखा है कि देशभक्ति में शामिल कर लें इनके परिवार को देशभक्ति गीत में। तो बिल्कुल जी, आपका नाम और आपने अपने परिवार का भी जिक्र किया है, तो आप सभी लोग शामिल हो चुके हैं, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। सोनू का बिजनौर से मैसेज आया है एक गाने की, इन्होंने भी फरमाइश की है। मैसेज भेजने वाले में कुछ और साथी हैं, इनका नाम है गाज़ियाबाद से जैद और हुडा का, इनका मैसेज आया है, अनूप कुमार ने हमें झारखंड से कहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और एक गाना सुनने की भी इनकी फरमाइश है, वो फरमाइश हम तक पहुंची है। और इसके साथ साथ कई और भी हमारे साथी हैं जो लगातार अपने मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं, कुछ एक ही मैसेज दो अलग अलग नंबरों से भी पहुंचा रहे हैं। सुनीता शर्मा जी शालीमार बाग से, इन्होंने भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा है और एक गाना सुनने की फरमाइश की है, और फरमाइशें जो हैं लगातार हम तक पहुँच रही हैं। अलीगढ़ से सलीम अख्तर रेशमा बेगम का मैसेज आया है और इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की है, और फरमाइशें जो हैं उनका नाम मैं शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ऑडियो फरमाइश भी कर रहे हैं तो ऑडियो तो अभी नहीं सुन पाएंगे, लेकिन हाँ आप अगर लिख कर पहुँचाएंगे हमें तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। मुरादाबाद से, ग्राम दुलापुर से, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिन, ऋतिक और बलवीर सिंह, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। नीलम जी का दिल्ली बरवाला से मैसेज आया है, इन्होंने पूछा है कि कैसे हैं आप, मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छी होंगी, और इन्होंने साथ में कहा है कि आज इनकी बेटी भावना का बर्थडे है तो विश कर दीजिए। तो बिल्कुल जी, हमारी तरफ से भावना को ढेर सारी शुभकामनाएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करें और अपनी प्रगति के साथ ही देश की प्रगति में भी वो योगदान दें, हम उनके लिए यही कामना करते हैं। और अगला जो मैसेज है, इनका नाम कहाँ है, नाम ढूंढ रहा हूँ मैं आपका। अच्छा, नाम तो आपने बीच में लिखा है, इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून राजेश जी, आपको भी गुड आफ्टरनून, रेनबो की पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, मैं रमेश कुमार विश्वकर्मा ग्राम मेहंदीगंज मड़ई पोस्ट राजा तालाब जिला वाराणसी से हूँ, आज के मेरा वाला सॉन्ग कार्यक्रम में मुझे अपनी पत्नी के लिए एक गीत सुनना है। अच्छा, यहाँ सब लोग देशभक्ति बातें कर रहे हैं और आप अभी भी पत्नी को मनाने में लगे हुए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा है तो हमने आपकी इस पसंद को ध्यान में रखा है और ये गीत तो सुनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस देशभक्ति गीतों के जो पूरे सिलसिले में एक इनकी पसंद को भी हम शामिल कर लेते हैं, और अब इन्होंने मैसेज में अपनी बात लिखकर पहुंचाई तो हो सकता है कि उसके पीछे और भी कहानी हो। फिलहाल सुनते हैं ये गीत और उसके बाद वापस आते हैं आपके मैसेजेस पर।

0: आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और दोस्तों आपकी फरमाइशें लगातार हम तक पहुंच रही है और हम उन फरमाइशों को आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच समय एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता देते हैं वो नंबर जिस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं और उस गाने के साथ जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई याद है, तो वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आज हमारे ज़्यादातर जो श्रोता हैं उनकी फरमाइशें देशभक्ति गीतों की हम तक पहुँच रही हैं और हम लगातार पहुँचा रहे हैं वो गीत भी आपको। हालांकि बीच बीच में कुछ अलग तरह की भी फरमाइशें हम तक पहुँच रही हैं तो उनको भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070 9868107070। आप तब तक हमें अपनी बातें पहुँचाएँ और हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं और आपकी बातें और सभी तक पहुँचाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें

0: और योजना का लाभ पाएं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
5: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
4: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
7: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: जी हाँ, FM रेनबो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ राजेश और आपके बहुत सारे सॉन्ग्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और आपके जो मैसेजेस लगातार आ रहे हैं उसकी जो बातें हैं वो हम आप तक अब पहुंचाते हैं। मैसेज हम तक आया है किसका? सिद्धार्थ ताटके का, वाशिम महाराष्ट्र से, और इन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दिया है इस शुभकामना संदेश अपना सभी देशवासियों के लिए। और अगला जो मैसेज है इनका नाम कहाँ है? नाम इन्होंने तो नहीं बताया है शायद इनका। अच्छा, नाम विवेक है इनका, बाद में एकदम लिखा आपने जाके, पहले सारी बातें लिख दी उसके बाद अपना नाम लिखा। एक गाना सुनना चाहते हैं, तो दोस्त आपका गाना थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आप तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोहित सिंह चौहान और इनकी सिस्टर हैं नीतू सिंह, इन्होंने ओल्ड कोंडली मयूर विहार 3 ईस्ट दिल्ली से मैसेज लिखा है और इन्होंने लिखा है कि आज 80वां इंडिपेंडेंस डे है तो इनकी बहुत सारी विशेष हम तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी FM रेनबो को भी लिखा है इन्होंने और साथ ही साथ जो है एक फरमाइश भी अपनी हम तक पहुंचाई है। विवेक का मैसेज है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और हम तक अपनी बात पहुंचाई है। और बात किसकी हम तक पहुंची है? इनका नाम है डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार और मैसेज किया है हमारे एक और साथी ने, इनका नाम है रंजीत, मुकुंदपुर दिल्ली से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है इनका नाम ढूंढ रहा हूँ मैं, इनका नाम है शुरू में ही कृष्ण कुमार मिश्र और दिल्ली में रहते हैं। इन्होंने पूरी हमारी आकाशवाणी की फैमिली को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। तो आपको भी बहुत बहुत आज़ादी के इस दिन की मुबारकबाद हम देते हैं। और मैसेज किया है हमें डॉली ने दिल्ली से, इन्होंने भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा है। और लिखा है किसने? मोनिका ने उत्तराखंड से, इन्होंने लिखा है कि हो सके तो इनकी पसंद का एक गीत हम सुनवा दें। तो बिल्कुल जी, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपकी पसंद के अधिक से अधिक गीत हम आप तक पहुंचाएं। और ये जो गीत है ये हम सभी लोगों को पसंद है, खासकर बच्चों को, जो इस गाने पर अक्सर छोटे मोटे जो आयोजन होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, उनमें डांस करते हैं।

जी हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं उससे भी हमें अंदाज़ा लग रहा है कि कितना आज के इस खास दिन को आप लोग अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं और अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। भगवती का नई दिल्ली से मैसेज आया है, इन्होंने कई फरमाइशें अपनी लिखकर पहुंचाई और ख़ास तौर पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दी हैं। और साथ ही साथ ये बात हमें बताई है कि आज हरियाली तीज भी है तो उस पर भी एक गीत होना चाहिए। तो बिल्कुल जी, आपने कहा और हमने कोशिश की है कि आपकी पसंद को हम इस गीत, आपकी जो पसंद का गीत है, हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और अपने सभी श्रोताओं को हम आज के इस दिन पर हरियाली तीज की भी शुभकामनाएं देते हैं। सागर का मैसेज है गुरुग्राम से, इन्होंने लिखा है कि कोई भी देशभक्ति गीत नाम के साथ। वाह वाह, क्या बात है। तो दोस्त, देशभक्ति गीत लगातार हम तक, आप तक पहुंच रहे हैं और हम कुछ और भी गीत आप तक पहुंचाएंगे और हम तक आपकी फरमाइशें जो लगातार पहुंच रही हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अभिषेक का मैसेज है दिल्ली से, इन्होंने लिखा है इनकी अलग ही कहानी चल रही है, कोई इनसे नाराज़ है और इन्होंने उस पर उसको मनाने के लिए एक गाना सुनवाने की फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है ये अब्बासी परिवार का है, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार है इनका। इसके साथ साथ इनके शायद दोस्त हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा का बुलंदशहर से, इन्होंने भी मैसेज लिखकर अपनी बात हम तक पहुंचाई है। अगला जो मैसेज है इन्होंने लिखा है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि जय हिंद, तो जय हिंद दोस्त। इनका नाम है सुशेन नेहरकर और ये फैमिली है अश्विनी नेहरकर, कहाँ से है, वेस्ट केमेंग, अरुणाचल प्रदेश से। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि सुन रहे हैं हमें न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर और एफएम रेनबो से जुड़े हुए हैं और एक गाना सुनने की इन्होंने भी फरमाइश की है। और अब उन लोगों के भी मैसेज हम तक आ रहे हैं जिनकी फरमाइशें पूरी हो गई हैं और अपनी फरमाइशें पूरे होने पर उनकी खुशी को जाहिर कर रहे हैं अपने मैसेज के ज़रिए। अनूप कुमार का मैसेज आया है, इन्होंने भी हमें आज के इस खास दिन पर अपना ख़ास संदेश दिया है और कहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसी तरह के और भी कई मैसेज आ रहे हैं। जगदम्बा इलेक्ट्रिक मेन रोड फजलपुर मेरठ से रवि प्रकाश शर्मा जी का भी मैसेज आया है और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशें और भी हैं जिनको हम इस प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाएंगे, लेकिन बात चली है जब कुछ गीतों की और ख़ासकर आज हरियाली तीज है तो उससे जुड़ा एक गीत हमारे एक श्रोता ने सजेस्ट किया है, चलिए सुनते हैं उसको और हरियाली तीज को भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया है और कोई अपनी फरमाइश का गीत हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो दोस्त, होता क्या है कि कई बार हम आपकी फरमाइश के गीत समय की वजह से नहीं भी पहुँचा पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा सा समय की पाबंदी को आप लोग भी समझते हैं कि एक घंटे में हम ज़्यादातर आप तक लगभग 7-8 गाने पहुँचा पाते हैं, और उस बीच जो है आपकी फरमाइशें कई बार हमारे पास ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश ये ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम, आपकी भागीदारी इस प्रोग्राम में हो। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। 9868107070 ये हमारा नंबर है जिस पर आप अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। कोई भी बात साझा करना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो बिल्कुल इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं आप। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी बातों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
4: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
3: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
5: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
6: इग्नोर नहीं, याद करो।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें।

0: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
5: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
4: इम्पॉसिबल
5: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। क्रांति फिल्म का ये बहुत ही शानदार गाना, और क्या सिचुएशनल गाना था ये उस फिल्म में, जो हमारे देश के उन क्रांतिकारियों की आवाज बना। जब हम बात करते हैं अपने देश की आजादी के उन मतवालों की, तो फिलहाल वापस आते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। इनका नाम है मोहम्मद सलीम, जसपुर उत्तराखंड से इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की ढेरों शुभकामनाएं, और इनका नाम जरूर बोल देना। तो नाम तो दोस्त आपके नाम से ही शुरुआत की हमने। अगला जो मैसेज आया है ये है बसंत सैनी का। इन्होंने हमें पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से मैसेज किया है, गाना सुनने की फरमाइश की है, और फरमाइशें हम तक आई हैं मनमोहन सिंह, सोनम, काव्या और दक्ष की, यूपी के रामपुर ज़िले के मंडवा हसनपुर गांव से। इन्होंने लिखा है कि आज मेरे बेटे दक्ष का जन्मदिन है। अच्छा, आज तीज का त्यौहार, तो ये इनकी पसंद है और इन्होंने अपनी पसंद के कुछ गाने लिखकर हम तक पहुँचाए। तो दक्ष को हमारी तरफ से ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं, जीवन में वो बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ें और आपका और देश का नाम रोशन करें। अगला जो मैसेज है वो आनंद विहार से है। इनका नाम है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशोर का, रेलवे कॉलोनी से। इन्होंने भी कहा है कि किसी गीत में हमारा नाम शामिल कर लीजिए, देशभक्ति गीत में। तो बिल्कुल दोस्त, आपका नाम हमने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया है। अगला जो मैसेज है वो ये है कि अच्छा, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सबको पसंद आते हैं, उनमें से एक गाने के बारे में हमारे पास फीडबैक आया है जो हमने आप तक पहुंचाया। और अगला जो मैसेज है, आपका नाम ढूंढ रहा हूं दोस्त, नाम आपने ना तो अच्छा, सागर का मैसेज है गुरुग्राम से, इन्होंने एक बार फिर से मैसेज किया है। और मैसेज करने वालों में हैं कुछ और हमारे साथी जिनका मैसेज दोबारा से भी हम तक पहुँच रहा है। नीतू सिंह का मैसेज एक बार फिर से आया है और मैसेज भेजा है इला और सौरभ ने जर्मनी से भी। इन्होंने भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा है और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि सभी हमारे सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को नमन किया है और एक गाना सुनने की इन्होंने भी फरमाइश की है। तो आपकी फरमाइशें लगातार आप तक पहुँच रही, एक और फरमाइश आप तक पहुँचाते हैं फिल्म जुड़वा से।

यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज

0: वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भारतनाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
10: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
11: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
12: स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और दोस्तों आपके मैसेजेस जो लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, चलिए एक बार फिर से उन तक पहुंचते हैं कि क्या क्या बातें और हम तक आई हैं उसको जानने के लिए। मैसेज आया है हमारे पास मध्य प्रदेश के राजगढ़ से मनीष का, और इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है, फरमाइशें हम तक और भी आई हैं। ईशा पवार ने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा है और इन्होंने एक गाना सुनने की भी फरमाइश की है। फरमाइशों में कुछ और भी फरमाइशें आ रही हैं और लगातार आ रही हैं क्योंकि एक से ज़्यादा बार आ रही हैं। और युवीन का मैसेज आया है, 10 साल शायद इनकी उम्र है, इन्होंने ऐसा लिखकर पहुंचाया है हम तक। बागेश्वर निषाद गोरखपुर UP से इन्होंने अपनी बात लिखकर हम तक पहुँचाई है। और

नाम शामिल हो गया उसके लिए भी कुछ हमारे साथी हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी जी का भी मैसेज आया है और इन्होंने भी अपनी बात लिखकर हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आप लगातार हम तक अपनी बातें पहुंचाते रहें। नितिन शर्मा है मेरठ से, लिखा है कि आज आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। लिखा है आगे कि मेरी और मेरे परिवार की ओर से आज इस आज़ादी के महोत्सव का सबसे ज़्यादा फायदा लिखा है इनको, इन्होंने कि इनकी बीवी को, अच्छा वो कैसे, इन्होंने लिखा है कि जो आज मेरी छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए अपने हाथ में मेहंदी लगा के घर के सारे पर्दे जो कि उसने धोए थे वो आज मेरे से प्रेस करवा रहे। वाह वाह क्या बात है, ये काम तो आपका बनता ही है करना। और आगे लिखा है कि मैं प्रोग्राम का मज़ा लेते हुए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं, एक तो तीज है, दूसरा बीवी से प्यार भी करते हैं, उसके साथ मीठी नुकझुक भी जो है एक अलग ही उसकी बात है। तो इन्होंने नाम बताया है बीवी का अपने गुड्डन और बेटी का नाम है नीति। तो बहुत प्यार से आपने ये मैसेज किया, हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अच्छा लगा जानकर इतने प्यार से अपनी बातें लिखकर आप पहुंचाते हैं। रवीना का मैसेज है पंजाब से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइश हम तक आई है जनकपुरी दिल्ली से। मनीष अपने परिवार के साथ सुन रहे हैं हमें और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ इन्होंने याद किया है भारतीय सेना के अपने वीर जवानों को भी। सीएस चौधरी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि मैं फिलहाल अक्षरधाम के पास हूं, मुझे यहां पर जो फीलिंग्स आ रही हैं चारों तरफ देख पा रहा हूं कि स्वतंत्रता दिवस का जो उल्लास है वह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ी के ऊपर भी तिरंगा लहराया हुआ है, लगाया हुआ है और जो FM के सहयोग से देशभक्ति के गाने सुन रहे हैं हम वो भी इस माहौल को और बेहतर कर रहे हैं। तो इन्होंने आज के इस दिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। अनीता वर्मा का मैसेज आया है एक बार फिर से और प्रमोद चिंचोलकर उमरी अकोला से मैसेज इन्होंने कहा है, एक गाना सुनने की फरमाइश इनकी पहुंची है और मैसेज पहुंचाने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं, विजेंद्र का अकोला महाराष्ट्र से। तो दोस्तों समय कम है इसलिए एक गाना और आप तक पहुँचाते हैं और उसके बाद जो है कुछ और बातें जो आपसे रह गई हैं उसको करेंगे।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही अब समय है कि मैं राजेश आपसे इस प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, इससे आपसे अनुमति लूं। लेकिन चलते चलते आपको बता देते हैं कि अगले कुछ घंटों में आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद आप हमारा अगला प्रोग्राम सुनेंगे आशियाना, जिसमें प्रियंका वर्मा होंगी आपके साथ। और ये प्रोग्राम आप 2 बजे से सुन पाएंगे। 3 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर, और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। और उसके बाद 4 बजे से सुन पाएंगे आप प्रोग्राम हमारा अल्फा जेन लेट्स डिटॉक्स। तो चलते चलते ये गीत आप सभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।

नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सब धारा की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में डिजिटल विनिर्माण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ तीव्र विकास किया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक है। विश्व के नेताओं और विदेशी दूतावासों ने आज भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इसकी लोकतांत्रिक यात्रा, सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्ग आइलैंड में एक रैली में कहा कि जल्द ही होमरूस जल डमरू मध्य को आधिकारिक रूप से अमरीकी क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया में आज सुबह 7.7 की तीव्रता का भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई, घरों और सार्वजनिक भवनों को नुकसान पहुंचा। लेबनान के दक्षिण में आज सुबह इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 घायल। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है और भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में, इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में है एक छोटा सा जहां मेरा। मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना किया इकट्ठा, इसे चुन चुन कर तिनके है तमन्ना की हर शाख पे इसके फूल महके और आए ना कभी इस पे खिजा। मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना शुरू हो चुका है, जहाँ मैं हूँ आज प्रियंका वर्मा आपके साथ, और मैं आप सभी दोस्तों को साहस और शौर्य के प्रतीक

राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बंधुओं, जिस मिट्टी की खुशबू से हमारा आशियाना महका है, जिस मिट्टी की खुशबू से हमारा आशियाना महका है, वही मिट्टी हमारी पहचान, हमारा गौरव, हमारा भारत है। आइए इस भारत को प्यार के साथ अपनी जिम्मेदारियों से भी संवारें। जय हिंद।

कितना सोलफुल ट्रैक है ना, दिल को छू जाता है सीरियसली। आशियाना सिर्फ एक एड्रेस नहीं होता, जी हाँ, घर की सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं है, एक फीलिंग है, और अक्सर वो फीलिंग हमारे देश में बसी होती है। कहीं ना कहीं हम जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे इस गाने में एक नॉस्टैल्जिया है, एक लगता है कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, है ना, लगता है ना। आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, जहाँ मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं आशियाने के आंगन से देश की तस्वीर तक। आशियाने के आंगन से देश की तस्वीर तक छोटी छोटी आदतें बुन देती हैं बदलाव की एक नई दस्तक। दोस्तों, देश सिर्फ सरहदों से नहीं, घरों से भी बनता है। हर जिम्मेदार आंगन में भारत थोड़ा और सवरता है। सिविक सेंस की शुरुआत अक्सर हमारे अपने आशियाने से ही तो होती है, है ना। हम घर में जो हैबिट्स डेवलप करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे पब्लिक बिहेवियर का हिस्सा बनते हैं। जब हम पानी की एक एक बूंद की कदर करते हैं, ज़रूरत ना हो तो लाइट्स और फैन स्विच ऑफ कर देते हैं, कचरा सही जगह डिस्पोज करते हैं, वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझ कर रिस्पेक्ट करते हैं। जी हाँ, तभी तो होता है, तभी तो हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, देश के लिए अपना फर्ज निभा रहे होते हैं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमें याद दिलाती हैं कि सिटीजनशिप सिर्फ राइट्स एंजॉय करने का नाम नहीं, बल्कि देश और सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का नाम है। जब हर घर अपनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, तब वही कलेक्टिव एफर्ट एक बेहतर भारत की तस्वीर बनाएगा। बिहेवियरल साइंस के अकॉर्डिंग रिपीटेड एक्शंस हैबिट्स बन सकते हैं, और हमारे आसपास के लोग, स्पेशली बच्चे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही तो बिहेवियर सीखते हैं। इसलिए एक घर के रिस्पॉन्सिबल हैबिट सिर्फ उस घर तक लिमिटेड नहीं रहती है, वो फैमिली के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, पड़ोसियों यानी नेबरहुड में एग्जाम्पल क्रिएट कर सकती है, और ग्रेजुअली कम्युनिटी कल्चर का पार्ट भी बन सकती है। यानी एक घर की अच्छी आदत सिर्फ उस घर तक नहीं रहती, वो बच्चों के बिहेवियर, नेबरहुड के कल्चर और धीरे धीरे सोसाइटी की सोच को इन्फ्लुएंस करती है। सोचिए, अगर हर घर पानी बचाएगा, हर घर वेस्ट रिस्पॉन्सिबली मैनेज करे, हर सिटीजन पब्लिक स्पेसेस का रिस्पेक्ट करे, और हर फैमिली दूसरों के कंफर्ट का भी ख्याल रखे, तो इन इंडिविजुअल एक्शंस को कलेक्टिव रिजल्ट इतना मीनिंगफुल हो सकता है। इस इंडिपेंडेंस डे, जी हाँ इंडिपेंडेंस डे, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्यों ना हम अपने आशियाने से एक छोटी सी जिम्मेदारी की शुरुआत करें। इन फैक्ट हमारे कुछ दोस्त इतनी सिंसियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए निभा रहे हैं कि क्या कहें, उनकी तारीफ करते बनते हैं हम। जी हाँ, क्योंकि जब हर घर अपना फर्ज समझता है ना दोस्तों, तब हर गली, हर शहर और पूरा भारत अपना बेहतर होता है। आखिर देश की सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे अपने आशियाने से ही तो शुरू होती है ना।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक, आ गई हूँ मैं प्रियंका आपसे बात करने के लिए। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, और चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। आशियाना सिर्फ दोस्तों चार दीवारों से नहीं, अपने पन से बनता है। आशियाना सिर्फ चार दीवारों से नहीं, अपने पन से बनता है। अपने घर के साथ पड़ोस का भी ख्याल रखना होता है। जब आंगन से अपना पन पड़ोस तक पहुँचता है ना, तभी तो एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश यानी अपना भारत बनता है। साइकोलॉजी और सोशल साइंस के अकॉर्डिंग इंसान का वेलबींग सिर्फ उसके पर्सनल स्पेस से नहीं, बल्कि उसके सोशल कनेक्शंस और सराउंडिंग एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। जब हम अपने नेबर्स के साथ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन डेवलप करते हैं ना दोस्तों, तो नेबरहुड में सेंस ऑफ कम्युनिटी और बिलोंगिंग की फीलिंग स्ट्रॉन्गर हो सकती है। दोस्तों हमारे बिल्कुल पास रहने वाले लोग भी हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। कभी लिफ्ट में मिलने वाले अंकल, जी हाँ बुजुर्ग अंकल, कभी पड़ोस में खेलता बच्चा, कभी अकेले रहने वाला कोई पड़ोसी, शायद हमें

पूरी कहानी नहीं पता होती, लेकिन एक सिंपल सा सवाल कि आप ठीक हैं, एक छोटी सी हेल्प या जरूरत के वक्त साथ खड़े रहना किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इनफैक्ट बहुत मीनिंगफुल हो सकता है, क्योंकि एक हेल्दी नेबरहुड सिर्फ आस पास बने घरों से नहीं, एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले लोगों से बनता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस अकेलेपन को रिड्यूस करने और इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए सिविक सेंस का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, कंसिडरेशन, कोऑपरेशन और दूसरों के कंफर्ट को रिस्पेक्ट करना भी सिविक बिहेवियर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी सिविक सेंस का मतलब सिर्फ रोड्स को क्लीन रखना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना तक लिमिटेड नहीं है। सिविक सेंस में कंसिडरेशन भी है, ये समझना कि हम अकेले नहीं, एक कम्युनिटी का हिस्सा है। क्या हमारी कन्वीनियंस कहीं किसी और को डिस्कम्फर्ट तो नहीं कर रही है? क्या हमारी आवाज़ किसी और के सुकून को तो डिस्टर्ब नहीं कर रही है? क्या हमारा बिहेवियर किसी और को तो अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा है? ये छोटे छोटे कंसिडरेशंस ही एक सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी की फाउंडेशन बनती है। और यहीं से आशियाना का मतलब थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जब आंगन से अपनापन पड़ोस तक पहुँचता है ना दोस्तों, तो नेबरहुड सिर्फ घरों का कलेक्शन नहीं रहता, वो एक कम्युनिटी बन जाता है। क्योंकि एक बेहतर सोसाइटी की शुरुआत किसी दूर की जगह से नहीं, हमारे अपने घर और पड़ोस से होती है। जब आंगन से अपनापन पड़ोस तक पहुंचता है ना, तभी तो दोस्तों एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश यानी अपना भारत बनता है। और फिलहाल ये बहुत ही दिल को छू लेने वाला गाना है, और ये हर सैनिक के घर, मैं कहती हूँ कि जो गाना है ना, मतलब आप जब सुनेंगे ना तो आप सल्यूट के बिना नहीं रह पाएंगे।

0: आपके मैसेजेस देख के लग रहा है कि आपको ये गाना बहुत बहुत पसंद आ रहा है। आई एम श्योर ये गाना सिर्फ सुना नहीं गया होगा, महसूस भी किया गया होगा। और ये गाना हमें याद दिलाता है कि जो हमारी ज़मीन है, हमारे जो देश की ज़मीन है, वो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, वो मिट्टी है जिसमें हमारे सैनिक कहानी लिख जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं कि आप अपने देश में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जी हाँ, 9868107070, 9868107070, तो आप हमें बता सकते हैं। या कुछ कोई गलत हो रहा हो तो आपने उसके लिए उन्हें मना किया हो, उस व्यक्ति को, अपने दोस्त को, कि दोस्त ऐसे मत करो अपने देश के साथ, आपने कुछ सुधार किए हो, क्योंकि आप सभी से, हम सभी से देश बनता है दोस्तों, हमारे छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से। जी हाँ, जब एक कलेक्टिव एफर्ट बनता है तो वाकई देश की एक बेहतर तस्वीर बनती है। तो जल्दी से मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप जो है प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अपने विचार भी हमसे शेयर कर रहे हैं।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने

0: लाडली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, वेलकम बैक। चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में, अपनी सिविक ड्यूटीज़ के बारे में, अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ के बारे में। जी हाँ, आशियाने के आंगन से देश की तस्वीर तक, घर की दीवारों से निकले जिम्मेदारी का एहसास। ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, घर की दीवारों से निकले जिम्मेदारी का एहसास, पब्लिक स्पेस को भी समझे जैसे अपना आशियाना खास। पार्क हो या बस, मार्केट हो या लिफ्ट, या हो सड़क की बात, हर पब्लिक स्पेस का रखे हम दिल से ख्याल। जो अपने घर में बंधुओं डिसिप्लिन का मान रखते हैं, वही अपनी आदतों से देश का मान बढ़ाते हैं। हम अपने घर में क्लीनिनेस, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि घर हमारा अपना स्पेस है। लेकिन जब पब्लिक स्पेसेस की बात आती है तो ये किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सबका शेयर्ड स्पेसेस हैं, है ना। इसलिए उनके साथ भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो हम अपने आशियाने के साथ रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि घर से बाहर निकलती हूँ, हमारे कुछ दोस्त ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। घर में जो कचरा डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन बाहर रैपर सड़क पर ही फेंक देते हैं। घर की चीजों को केयरफुली यूज करते हैं लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। घर में अपनी टर्न का वेट करते हैं लेकिन पब्लिक स्पेस पर क्यों तोड़ देते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के अकॉर्डिंग हमारी डेली हैबिट्स सिर्फ पर्सनल लाइफ को नहीं बल्कि हमारे सोशल बिहेवियर को भी शेप करती है। जो डिसिप्लिन, क्लीननेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम घर में प्रैक्टिस करते हैं, वही बिहेवियर ग्रेजुअली पब्लिक स्पेसेस और लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। इस कंसेप्ट को सोशल लर्निंग से समझा जा सकता है। बच्चे और एडल्ट दोनों अपने आसपास के लोगों को के जो बिहेवियर है उससे ऑब्जर्व करते हैं, उससे सीखते हैं। अगर घर में कचरा सेग्रीगेट करना, चीज़ों को केयरफुली यूज़ करना, क्यू फॉलो करना, दूसरों के कंफर्ट को रिस्पेक्ट करना नॉर्मल बिहेवियर है, तो इन हैबिट्स के पब्लिक लाइफ में कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है। पब्लिक स्पेसेस एक्चुअली शेयर एनवायरनमेंट्स है। पार्क की बेंच, बस, लिफ्ट, रोड, मार्केट या पब्लिक मॉन्यूमेंट किसी एक इंडिविजुअल के नहीं होते। जब हम इन्हें डैमेज नहीं करते, लिटरिंग अवॉइड करते हैं, बेसिकली कूड़ा डस्टबिन में ही डालते हैं, या किसी पब्लिक वॉल को डैमेज नहीं करते हैं, क्यों में अपनी टर्न का वेट करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, तो हम सिर्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते, हम दूसरों के एक्सपीरियंस और कंफर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। और ये सोच में मन में रखना कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं सोसाइटी का हिस्सा हूं, सिविक सेंस दोस्तों असल में इसी अवेयरनेस का नाम है। इसलिए आशियाना सिर्फ वो जगह नहीं जहाँ हम रहते हैं, आशियाना वो वैल्यूज भी हैं जो हम अपने साथ घर से बाहर लेकर जाते हैं। और जब हर घर की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स पब्लिक लाइफ का हिस्सा बनती हैं, तो वही कलेक्टिव एफर्ट एक क्लीनर, रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल भारत की फाउंडेशन बन सकता है। यानी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबल आदतें मिलकर बनाती हैं एक बेहतर समाज और एक बेहतर भारत की तस्वीर।

सुई सीधी खड़ी नाचे धागा, ये लाइन सिर्फ एक लिरिक नहीं बल्कि एक विजुअल फील क्रिएट करती है, जिसे जैसे एक सिंपल जिंदगी में अपने रिदम को कितनी खूबसूरती से वो पेश कर रही है। वैसे दोस्तों, आज आशियाने में बात सिर्फ एक घर की नहीं, उस बड़े आशियाने की हो रही है जिसे हम भारत कहते हैं, जहाँ हर हाथ का हुनर, हर मेहनत और हर छोटी सी कोशिश इंडिया के ऐसी, भारत के ऐसी खूबसूरत आशियाने में एक नया धागा जोड़ती है। जी हाँ, जहाँ हम अपने देश के हुनर, मेहनत, क्राफ्ट्समैनशिप और मेड इन इंडिया स्पिरिट को रिस्पेक्ट भी करते हैं। चलिए आपके जल्दी से हम मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मैं उन्हें ले लूँ। जी हाँ, राम राम जी, हेलो एंड नमस्ते इंडिया। प्रियंका जी नमस्कार, स्वागतम स्वागतम। ओके, भारत माता की सदा ही जय हो। भारत के लाल हैं हम, भारत के बाल हैं हम, जो कभी झुके नहीं वो शान है हम। क्या बात है, जो कभी रुके नहीं सबके दिल और जान है हम।

0: कुछ हम करें या ना या नहीं, ईमानदारी के नामो निशान हैं हम। वाह, सदा इसी को रखें कायम सदा, इसलिए तो एक दूसरे के लिए सदा कुर्बान हो हम। प्रियंका जी, घर बैठे ही पूरा दिन सीखने को इतने वर्षों से मिल रहा है, इसका श्रेय जाता है आप जैसे काबिल आर्जे और आपकी पूरी टीम को जिनके कायल हैं हम। जय हिंद जय भारत, रोहित खेरा, दिल्ली 9। रोहित जी, आपके इतने प्यार और हौसले बढ़ाने वाले शब्दों के लिए दिल से धन्यवाद। जी हाँ, आभार है आपका। आपका ये अपनापन और विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी टीम के लिए बहुत मायने रखता है। सच कहें तो रेडियो पर हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, और इतने सालों की हमारी इस जर्नी में जो लिसनर्स का प्यार, साथ ही आप सबका सबसे बड़ी हमारी प्रेरणा रही है। आपने जो हमारी टीम हमारी कोशिश को जिस तरह से अप्रिशिएट किया है सपोर्ट के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, आभारी हैं। और ये सफर आप जैसे लिसनर्स के प्यार और ब्लेसिंग से ही तो खूबसूरत बना है। जय हिंद। इसी के साथ डॉली का मैसेज आया है हमें दिल्ली से। गुड आफ्टरनून प्रियंका, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे डॉली, बहुत लिखा अच्छा लिखा है, आज़ादी पर गीत पसंद आ रहे हैं। देश के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा कर, और मैं कहती हूँ नहीं करती तो तब भी ज्ञान देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होता है, जब आप किसी को बता रहे होते तब भी अपनी जिम्मेदारी ही बता रहे होते, आप उन्हें समझा रहे होते हैं कि नहीं, आपको कुछ गलत लग रहा होता है तो आप कोशिश करते हैं कि वो गलत चीज़ ना हो। अगर सड़क पर कोई रैपर फेंक रहा है तो फिर ना ही फेंके, ना हम फेंके, ना उसे फेंकने दें, है ना, हम उसे थोड़ा सा समझा सकते हैं। बाकी देश तो सभी का है दोस्तों। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति, गीत पसंद आ रहा है। आशा ने सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, वो अपने पन से बनता है। हेल्दी नेबरहुड की जानकारी बहुत अच्छी लगी। और आरजे मैडम जी, मैं समय समय पर सरकार को टैक्स पे करता हूँ, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और कूड़ा कचरा नहीं करता हूँ, और बहुत ही अच्छा, पब्लिक स्पेस को भी मैं ख़राब नहीं करता हूँ, सभी से ईमानदारी से व्यवहार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी को ऐसा ही करना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं। इसी के साथ प्रदीप सलूजा जी का भी मैसेज आया है जनकपुरी से, ये भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और ये कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो खा पी कर रोड पर चीज़ें फेंक देते हैं, ऐसा करने से मैं मना करता हूँ और वो मुझे गुस्सा करते हैं, तब भी मैं उन्हें समझाता हूँ। आप क्या अपने घर पर भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल, हम समझा सकते हैं, एक एक जो हमारे जो दोस्त हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देश में देश के लिए वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं ना। इसी के साथ चलिए अभी हम लेते हैं एक छोटा सा एड ब्रेक और जल्दी आते हैं आपसे बात करने के लिए।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।
4: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं प्रियंका आपसे बातें करने के लिए। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आशियाना में हम अपनों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, है ना? आशियाने में हम अपने अपनों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। वही रिस्पेक्ट ऑनलाइन दुनिया में भी साथ रखते हैं। हर क्लिक में हो समझ, हर शेयर में जिम्मेदारी, डिजिटल दुनिया में भी ज़रूरी है इंसानियत और समझदारी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिजिटल दौर में जी रहे हैं जहाँ हमारी उंगलियों पर एक पूरी दुनिया है। एक क्लिक से इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, एक पोस्ट से ओपिनियन बनता है और एक मैसेज सेकंड्स में हजारों लोगों तक पहुंचता है। जब हम सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं, नोटिफिकेशन रिसीव करते हैं या लाइक्स और कमेंट्स पढ़ते हैं तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स मोटिवेशन और रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर में रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से कभी कभी हम बिना सोचे समझे रिपीटेडली नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं या किसी पोस्ट को तुरंत शेयर कर देते हैं बिना वेरीफाई किए। यहीं पर पॉज करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक सिंपल पॉज हमें रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। और दोस्तों, तब ये सवाल आता है, इस डिजिटल फ्रीडम की क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसे यूज़ कर रहे हैं? जैसे अपने आशियाने में हम अपनों की इज्जत करते हैं, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, बिना सोचे किसी की बात दूसरे तक

पहुंचाते वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए। किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना, साइबर बुलिंग या हेट स्पीच का हिस्सा ना बनना और सोशल मीडिया पर डिसएग्रीमेंट को भी रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस करना, ये सब छोटे छोटे एक्शन लग सकते हैं आपको, लेकिन कलेक्टिवली एक हेल्थियर डिजिटल सोसाइटी क्रिएट करते हैं। सोचिए एक क्लिक कितना पावरफुल है, एक क्लिक मिस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकता है, एक इनसेंसिटिव कमेंट किसी को इमोशनली हर्ट कर सकता है और एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स किसी हार्मफुल कॉन्वर्जेशन को भी रोक सकता है। इसलिए डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझना नहीं है, अपने बिहेवियर को भी समझना है। दोस्तों आज हमारे हाथ में एक नई तरह की पावर है, डिजिटल पावर, और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कभी कभी दोस्तों देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी एक सिंपल फॉरवर्ड बटन को रोकने में भी होती है, एक फेक मैसेज को रोकना, एक हेट फिल्ड कमेंट का हिस्सा ना बनना, किसी की डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना और ऑनलाइन स्पेस को थोड़ा और पॉजिटिव बनाना, ये भी तो अपने देश भारत के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की निशानी है। क्योंकि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, देश हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब हमारे आशानी के संस्कार डिजिटल दुनिया तक पहुँचते हैं तब टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्ट नहीं सेंसिटिव भी बनती है। जी हाँ, तो आज जो इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं तो एक प्रॉमिस अपने डिजिटल आशाने के नाम भी करते हैं, क्लिक करेंगे तो सोच कर, शेयर करेंगे तो जांच कर और बोलेंगे तो इंसानियत के साथ, यही तो डिजिटल सिविक सेंस है। ऑनलाइन दुनिया में भी वही रिस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी रखते हैं जो हम अपने आशाने में अपनों के लिए रखते हैं। जय हिंद।

0: टी मासे है माथा, माथे पे माटी सजा के चलो। दोस्तों ये सिर्फ एक पेट्रियोटिक गाना नहीं है बल्कि एक सोल्जर के जज्बात का गहरा एहसास है। उन्हें अपने माथे पर सिर्फ माटी नहीं अपनी देश की इज्जत, अपनी भारत माता का गुरूर भी सजाया है। और जब मैंने पंक्तियां लिखी हैं अपने तिरंगे के बारे में, जी हाँ, वो आपसे शेयर ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस देश की धड़कन में तिरंगा बसा है इस तरह, इस देश की धड़कन में तिरंगा बसा है इस तरह कि हर आन बान और शान इसी के दम से है। रौनक है धरती इसके तीन रंगों के कारण, इसमें बसे धर्म चक्र से भारत का नाम इस विश्व में बुलंद है।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।

वेलकम बैक। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। आशियाने की दीवारों से छनकर आवाज़ ना चुराए पड़ोसियों का सुकून। हर आवाज़ में हो तहजीब, हर आदत में हो नेचर का ख्याल। ना शोर से किसी की नींद टूटे, ना कचरे से धरती का दमन। आशियाने से शुरू हो जिम्मेदारी तो सवरे हर आंगन। दोस्तों, हम सब अपने आशियाने में सुकून और प्रिवेसी, कंफर्ट सब चाहते हैं, लेकिन एक सिंपल सवाल है, अगर हमें अपने घर में पीस चाहिए तो वही क्या पीस हमारे पड़ोसियों का भी हक नहीं? लाउड म्यूजिक, अननेसेसरी हॉन्किंग, लेट नाइट नॉइज, हाई वॉल्यूम पे खूब तेज आवाज़ में बातें करने का असर कभी कभी सिर्फ हमारी चार दीवारों तक नहीं रहता। आवाज़ दीवारों से बाहर जाती है और किसी और की नींद या सुकून को डिस्टर्ब करती है। यहीं से सिविक सेंस का एक सिंपल डेफिनेशन सामने आता है। मेरी फ्रीडम वहाँ तक है जहाँ किसी दूसरे के कंफर्ट और डिग्निटी इफेक्ट ना हो। अपनी खुशी जरूर सेलिब्रेट करें, म्यूजिक भी सुने, लेकिन दूसरों के स्पेस और रूटीन का रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है। और आशियाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आवाज तक लिमिटेड नहीं है दोस्तों, हमारी बालकनी, टेरेस, विंडोज भी नेचर से कनेक्ट होने की छोटी सी अपॉर्चुनिटी है। एक पौधा लगाना, गर्मी में बर्ड्स के लिए पानी रखना, किचन वेस्ट से कॉम्पोस्ट बनाना, यानी और साथ में अननेसेसरी प्लास्टिक को रिड्यूस करना, ये सब स्मॉल एक्शंस लग सकते हैं, लेकिन मिलकर इन्वायरमेंट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। बंधुओं, प्लांट सिर्फ बालकनी की ब्यूटी नहीं बढ़ाते, वो अर्बन ग्रीनरी का भी हिस्सा बनकर बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स जैसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड, शेल्टर और रेस्टिंग स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। अर्बन एरियाज में कंक्रीट और कंस्ट्रक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी के साथ नेचुरल हैबिटेट्स लिमिटेड होते ही जा रहे हैं ना। ऐसे में बालकनीज और टेरेसेस पर प्लांट्स लगाना नेचर के लिए एक छोटी सपोर्टिव स्पेस क्रिएट कर सकता है। बर्ड्स के लिए पानी रखना, लोकली सुटेबल प्लांट्स ग्रो करना भी अर्बन बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करने का एक सिंपल घर बेस्ड इनिशिएटिव हो सकता है। कंपोस्टिंग भी इसी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है दोस्तों। किचन का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करके हम वेस्ट को रिसोर्स में बदल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंपली सेंडिंग इट टू लैंडफिल। इस तरह हमारा आशियाना सिर्फ नेचर को देखने की जगह नहीं, बल्कि अर्बन इकोसिस्टम

छोटा सा सपोर्टिव स्पेस बन सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सिविक सेंस रूल्स की लिस्ट में नहीं, ये एक सेंसिटिविटी की आदत है। कभी आवाज कम करना, कब कब आवाज कम करना है, कहाँ कचरा नहीं फेंकना है, कहाँ पड़ोसियों की रिस्पेक्ट हमें करनी है, और कब किसी पड़ोसी की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना है, कैसे अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखना, ये अवेयरनेस हमारे डेली बिहेवियर का हिस्सा बनते हैं। इसलिए आशाना सिर्फ वो जगह नहीं जहाँ हम रहते हैं, आशाना वो पहली जगह है जहाँ हम सीखते हैं कि अपनी लाइफ को दूसरे और नेचर के साथ बैलेंस कैसे रखते हैं। जब घर का सुकून पड़ोस तक पहुँचता है ना, और आंगन की हरियाली शहर की सांसों को छूती है, तब दोस्तों आशाना सिर्फ एक घर नहीं रहता, वो बेहतर समाज और बेहतर भारत की खूबसूरत तस्वीर बन जाता है।

बिल्कुल जागे दोस्तों, बस ये कहेंगे कि अपने आशयने के आंगन से जिम्मेदारी की एक नई शुरुआत करते हैं, जहां आदतों में समझ हो, बिहेवियर में सेंसिटिविटी हो और हर छोटी कोशिश में देश के लिए अपनापन हो। तो जल्दी से अपने आशयने की फ्रिक्वेंसी को देश की फ्रिक्वेंसी से ट्यून कीजिए, ताकि हर घर से निकले जिम्मेदारी का एहसास और उसे बने एक बेहतर समाज और एक बेहतर भारत की तस्वीर। जय हिंद। प्रियंका वर्मा को दीजिए इजाजत।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन क्या इन बदलावों के साथ जिंदगी की रफ्तार भी बदल जानी चाहिए? नमस्कार, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब यही बदलाव हमारे शरीर और मन में एक साथ होने लगे तो कई सवाल भी साथ लेकर आते हैं। महिलाओं के जीवन में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव है मीनोपॉज, यानी मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना, अचानक गर्मी लगना, नींद न आना, मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन या फिर हड्डियों से जुड़ी परेशानियाँ, ये संकेत हो सकते हैं मीनोपॉज के। तो इन बदलावों को परेशानी नहीं, समझदारी से संभालने का समय है। यही विषय है हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो महिला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रोफेसर रेणुका मलिक जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: शुक्रिया शिल्पा।
2: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा प्रकाश जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गायनोकोलॉजिस्ट GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच शिल्पा।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि अक्सर महिलाएं कहती हैं हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये मीनोपॉज है क्या और क्यों होता है ये और किस एज में होता है।
3: शिल्पा, बहुत बढ़िया शुरुआत का क्वेश्चन है आपका। मीनोपॉज, जिसको हिंदी में रजोनृत्ति कहते हैं, वुमेन की लाइफ में, औरत की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पड़ा हुआ, ये अराउंड 46 और 47 ईयर्स के बीच में इंडिया में औरतों को होता है। महीने का माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना एक साल के लिए को रजोनृत्ति कहा जाता है। और एक औरत का बेसिकली सारे शरीर पे एक ओवरीज जो होती हैं काम करना वो बंद कर देती हैं। ओवरीज वो दो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स बनाती हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और बॉडी में इन डिफिशियंसी की वजह से काफी चेंजेस आते हैं। तो एक औरत को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इस पड़ाव के लिए और उसमें कुछ अपनी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि ये पार्ट स्मूथली चलता रहे।
2: तो डॉक्टर सीमा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जो हमें इसमें देखने को मिलते हैं, जिसे हमें पता नहीं लगता लेकिन बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं।
4: हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या है कि ये जो है एक ट्रांजिशन फेज तरह से होता है, जैसे कि सडनली नहीं होगा, आपको धीरे धीरे चेंजेस महसूस होने शुरू होंगे, खास करके जो मीनोपॉज का जो टाइम है, जिसे हम पेरीमीनोपॉज कहते हैं या प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स जिन्हें कहते हैं, उसमें धीरे धीरे महिलाएं महसूस करना शुरू करती हैं, जैसे कि जिनको हम कहते हैं कि वेजो मोटर सिम्टम्स, एकदम से सडनली गर्मी लगना, हॉट फ्लैशेस जिसे कहते हैं, या चिड़चिड़ाहट हो जाना, मूड चेंजेस हो जाना, स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ड्राइनेस हो जाती है। इसके अलावा जो है बोन्स की कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, हल्की पड़ने लग जाती है बोन्स, जिसे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया से शुरू होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स हैं जिन्हें कि हम जेनिटो यूरिनरी या जनांग से संबंधित जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें ड्राइनेस हो सकती है महिला को, हस्बैंड से संबंध बनाते समय पेन हो सकता है और इचिंग हो सकती है, यूरिन करते समय पेन हो सकता है, या कई बार मल्टीपल टाइम्स उनको ये ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया हो, जबकि एक्चुअली ये रिलेटेड टू मीनोपॉज होती हैं चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को एक बार अपनी जो 45

0: से 55 साल के बीच की जो उम्र है जिसमें कि उनको मीनोपॉज किसी भी एज पे हो सकता है, तो उस समय पे उन्हें ये ध्यान देना है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फौरन इस बारे में सोचें और अपने डॉक्टर से सलाह लें।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मीनोपॉज समस्याएं और समाधान पर, इस पे बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस पे। तो डॉक्टर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स किस एज में स्टार्ट हो जाती हैं?
1: ये जो मीनोपॉज से पहले एक फेज आता है जिसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, ये 40 साल की उम्र में आता है। मीनोपॉज से तकरीबन बिटवीन 5 to 10 years पहले आता है। तो इसमें कैसे पता चलता है? आपकी जो माहवारी जो रेगुलर आ रही होती है, अब तक इरेगुलर होनी शुरू हो जाती है, 7 दिन पहले आ जाएगी या लेट आएगी, और आखिर में जब पीरियड बंद होने का टाइम और पास में आएगा तो महीना रुकना शुरू हो जाता है। 2 महीने माहवारी नहीं आई, और फिर आई तो कभी कभी ज्यादा भी आ सकती है। ऐसे ऐसे करके एक फेज आता है कि महीना माहवारी आई, फाइनल मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको कहते हैं, उसके बाद पीरियड आया ही नहीं, फिर 1 साल तक रुकने को, उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, रजनोवृत्ति या मीनोपॉज बोलते हैं।
0: तो मीनोपॉज से पहले का दौर यानी पेरी मीनोपॉज की दस्तक को एक महिला कैसे पहचाने? शरीर में सबसे पहले कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे या शरीर कौन कौन से संकेत देता है?
2: देखिए, उसमें ऐसा हो सकता है कि कई बार महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, या फिर उनको जो माइल्ड सिम्टम्स हैं कि कहीं जोड़ों में दर्द या गर्मी लगना, अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए बहुत तेज़ गर्मी लग सकती है, या उनके अंदर कुछ मूड चेंजेस आ सकते हैं जैसे कि चिड़चिड़ाहट हो सकती है, या मतलब उन्हें मन नहीं करेगा किसी काम को करने के लिए, या घर में भी जैसे एंग्जाइटी के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इस तरीके के माइल्ड सिम्टम्स जो

0: होते हैं उनको एक पहचान की तरह से उन्हें दिखाई देना शुरू होते हैं. एग्जैक्ट जो मतलब सीवियर सिम्टम्स जो हैं वो मेनोपॉज के बाद ही ज्यादा दिखाई देते हैं.
1: तो ये जो आपने कहा ये जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये जो मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो इनको सबको कैसे मैनेज करें?
2: देखो इसमें ये होता है कि हर किसी को परेशान नहीं करते और 100% सबको नहीं हो रहे होते, तकरीबन 10-20% को होते हैं. उनमें से अराउंड 5% को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. अगर आपको लग रहा है आपको इतने ज्यादा हॉट फ्लशेस आ रहे हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप रात को सो नहीं पा रहे, कि आपकी लाइफस्टाइल खराब हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, तो उन कंडीशंस में हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं.
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखती है, नमस्कार मैम, मैं दिल्ली नरेला से बात कर रही हूँ. मेरा यूट्रियस 2016 में और राइट ओवरी 2014 में निकाल दी गई थी. मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी. अब मेरी आयु 46 वर्ष है. मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी, थकान और हाथ पैरों में दर्द भी महसूस होता है. यदि मेरा यूट्रस निकाल दिया गया था तो फिर मेरी तो मीनोपॉज की कोई कंडीशन ही नहीं होनी चाहिए थी, परंतु फिर भी मेरे साथ इस तरह से हो रहा है. मैं थायराइड की टेबलेट भी लेती हूँ 50 mg में. नाखून में भी लाइन लाइन सी नजर आती है और आगे से फट जाती है. क्या ये भी उसी का कोई लक्षण हो सकता है? हाथों पर बहुत ज्यादा तिल भी हो गए हैं आगे के हिस्से पर, कोहनी से पहले, और बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते हैं. सुझाव दें, धन्यवाद.
0: एक्चुअली इन्होंने जो बताया इनकी उम्र 46 साल है, पर इनका जो यूट्रस का जो सर्जरी है, जो यूट्रस निकाला गया, वो आज से 10 साल पहले मतलब कि 36 साल की उम्र पे निकाला गया. उसके 2 साल बाद शायद इनकी ओवरीज जो थी
1: जी,
0: वो उससे पहले निकाले गए, है ना, एक ओवरी निकाली गई.
1: हाँ,
0: तो बेसिकली ये समझने की बात है कि जो मेन फंक्शन था ओवरी का वो एक ओवरी से काम चल रहा था. और जहां तक इनका ये क्वेश्चन है कि यूट्रस निकाल दिया तो ये मेनोपॉज के सिम्टम नहीं होने चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि अगर यूट्रस एंड ओवरीज निकल गई है तो डेफिनेटली ये सर्जिकल मेनोपॉज कहलाता है, खास करके जब ओवरी अपना काम करना बंद करती है, जो हमने बात की, जो मैडम ने अभी डॉक्टर रेणुका ने बताया.
2: पूछना चाहूंगी, जब सर्जरी एंडोमेट्रोसिस की करते हैं तो दोनों ओवरीज निकालते हैं, आपकी एक ओवरी या वो निकाल नहीं पाए होंगे, नहीं तो एक सर्जरी एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी में ओवरीज निकालनी चाहिए. ओवरीज के बहुत फायदे हैं, लेकिन एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें ओवरी निकालनी पड़ती है.
0: हाँ, तो उसमें जैसे मैडम ने शुरू में ही बताया था कि जो ओवरी के जो फंक्शन है, जो हॉर्मोन्स बनाती है, वो इनकी सपोज इन्होंने एक ओवरी इनकी बच भी गई थी तो थोड़ा बहुत फंक्शन बचा होगा, पर उसके बाद जो इनके मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं वो आने शुरू हुए होंगे. तो उस वजह से जो अभी ये जो बता रही हैं कि इनको इस तरीके की जो परेशानियां होनी शुरू हो रही हैं, जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं होना चाहिए था. इन्हें डेफिनेटली, जब एक तो इनका एज भी वो आ गया और दूसरा इनके केस में तो सर्जिकल मेनोपॉज हुआ है, मतलब कि सर्जरी के थ्रू वो निकाली गई हैं, तो उसमें डेफिनेटली मेनोपॉज तो अटेन कर ही लिया इन्होंने.
2: ऐसे केस में हम कैसे पता लगाते हैं कि अगर आपकी एक ओवरी छोड़ी गई है, जो आप इतनी हिस्ट्री दे रहे हो कि हिस्ट्री वो काम कर रही है या नहीं, एक किस्म का टेस्ट कराते हैं जिससे पता चलता है कि वो जो छोड़ी गई ओवरी है वो अब काम कर रही है या नहीं. वो भी काम नहीं कर रही तो फिर आपके सिम्टम्स मेनोपॉज से एट्रीब्यूट कर सकते हैं. बाकी चीजें रूल आउट करने के लिए, आपका थायराइड, अब आपने बताया आप दवाई खाते हो, बट क्या उसे अब TSH आपका नॉर्मल लेवल में है या नहीं, और जो आप हाथों पे नाखूनों में उंगली बता रहे हो, आपको एनीमिया है, बहुत सारी चीजें होती है. तो मैं आपको सलाह दूंगी, और जो भी आपके डॉक्टर हैं वहां जाके एक बार आप दिखा के अपनी पूरी एक टेस्ट करवाए कि पता रहे कि आपका कौन सा सिम्टम किस वजह से हो रहा है. और अगर बहुत सारी परेशानियां हैं तो उसमें there is an alternative, आपको ट्रीटमेंट देके आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर कर सकते हैं.
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर. हेलो,
3: नमस्कारम.
1: नमस्कारम जी, आपका नाम?
3: आप कहाँ से? मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी. बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ, हमारी महिलाओं को एक बीमारी होती है ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज. तो मेरा पूछना है कि ल्यूकोरिया क्या है और मेनोपॉज स्टेज के बाद भी ये होता है, और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है और क्या ट्रीटमेंट है, कृपया विस्तार से बताएं.
2: लिकोरिया बेसिकली वजाइनल डिस्चार्ज है. डिस्चार्ज इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है. हर एक डिस्चार्ज एबनॉर्मल या इन्फेक्शन वाला नहीं है. हाँ, कैंसर में भी डिस्चार्ज हो सकता है. बदबू वाला पानी आना कैंसर की निशानी भी है. मेनोपॉज में अलग किस्म का डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन और सूखापन होने की वजह से होता है, वो अलग चीज है. लिकोरिया तो एक सिम्टम है, आमतौर पर क्यों बोला जाता है लिकोरिया है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो किस वजह से है? हेल्दी डिस्चार्ज भी होता है और इन्फेक्शन वाला भी होता है, इरिटेशन की वजह से भी होता है, एलर्जिक भी होता है. तो उसका जो वजह है उसको ट्रीट भी किया जा सकता है. हर डिस्चार्ज गंदा नहीं होता, हर एक डिस्चार्ज इन्फेक्शन का नहीं होता.
1: और वो साथ में पूछे थे कि या इसके मेनोपॉज के बाद भी होता है?
2: मेनोपॉज के बाद ये बताया, जिसको GSM बोलते हैं, वो सूखने नीचे वजाइना, सूखने की वजह से, इरिटेशन की वजह से,
0: जो हम बात करते हैं जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज,
2: GSM होता है. बाय एंड लार्ज इन्फेक्शन और सब

0: हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज, बट नीचे का सूखापन होना बढ़ जाता है।
1: डॉक्टर सीमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
2: हाँ, बेसिकली जो हम बात कर रहे थे जेनिटो यूरिनरी जो सिंड्रोम होता है मेनोपॉज का, उसमें यही होता है कि जैसे ड्राइनेस हो गई, नीचे जो लाइनिंग है वेजाइना की वो पतली हो जाती है, उसमें जिस तरह का डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया की बात जो हो रही है, ल्यूकोरिया आम भाषा में जो है महिलाएं ये सोचती हैं कि जो गंदा पानी आने की जो बीमारी है उसको ल्यूकोरिया कहते हैं, पर हम जब एग्जामिन करते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि वो एक फिजियोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मल डिस्चार्ज है या पैथोलॉजिकल है, बीमारी की वजह से है। जैसा कि मैडम डॉक्टर इनको ने बोला कि किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है, इवन कैंसर में जैसे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, गंदा बदबूदार पानी, खून में मिला हुआ पानी जो आता है, उसको भी हमें देखना होता है कि वो भी रिलेटेड टू ल्यूकोरिया ही है।
0: मेनोपॉज में अगर बदबूदार पानी जा रहा है तो ये कैंसर का साइन होता है और जरूर जाके डॉक्टर को दिखाना है। ये चीज नॉर्मल ना माने, एंटीबायोटिक्स नीचे लगाने से ये ठीक नहीं होता, डॉक्टर को दिखा के आपको टेस्ट करवाना चाहिए।
1: डॉक्टर, जैसे कि पहले आपने बात करी थी हॉट फ्लैशेस की, तो ये हॉट फ्लैशेस क्यों होते हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
2: ये हॉट फ्लैशेस जो मैं बता रही थी कि बेसिकली कुछ सेकंड्स के लिए होता है, जैसे कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं और आपको सडनली एकदम ऐसे लगेगा कि बहुत ज्यादा शरीर से गर्मी का महसूस होना और बहुत तेज आपके जैसे चेहरे पे लाल हो जाता है, एकदम से आपको ऐसा फील होगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है। तो उसको जो ठीक करने का जो है, एक तो नेचुरल तरीके हैं कि हम उन्हें बताते हैं कि आप थोड़ी ठंडी जगह पे रहिए, गर्म एटमॉस्फेयर को अवॉइड करना है आपको उस पर्टिकुलर एज में। दूसरा जो पेय पदार्थ जैसे हैं कि आप ठंडे पेय पदार्थ लें, आपके अंदर अगर जैसे कुछ और उससे रिलेटेड जैसे कि थायरॉयड, अभी बात की थी कि थायरॉयड है, अगर आपको हाइपर थायरॉयडिज्म है तो भी आपको गर्मी लग सकती है, तो उसका इलाज कराएं। अगर आपको अनीमिया है या कुछ भी रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका साथ के साथ इलाज कराएं, डाइट अच्छी लें, मल्टी विटामिन्स लें और न्यूट्रिशनल डाइट लें, मतलब कि बैलेंस डाइट खाएं और पानी खूब पिए, मतलब दिन में कम से कम 8 गिलास के करीब पानी उन्हें पीना चाहिए।
1: तो ये जो मूड स्विंग्स होते हैं या चेंजेस हम फील करते हैं, तो क्या ये हार्मोन्स चेंज होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या वजह है इसकी?
0: हाँ, ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में धीरे धीरे कम होकर फिर बंद हो जाते हैं, इस वजह से ये बॉडी में ये चेंजेस आते हैं।
1: और अक्सर देखा जाता है कि नींद की प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, कि महिलाएं कहती हैं मुझे रात को नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या किया जाए?
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनफैक्ट जब 40 साल की उम्र में देखा गया कि आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है, सबसे ज्यादा सिम्टम्स अगर ट्रांजिशन फेज में देखा जाए तो ये स्लीप डिस्टर्बेंस का है। तो इसको टैकल करने के लिए स्लीप हाइजीन होता है कि आप सोने से पहले चाय कॉफी ये सब ना पिए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, टीवी ज्यादा नहीं यूज करें और अपना जो बेडरूम है, जो बेड है, सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल की जाए। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पे सब काम कर रहे हैं दिन में बैठे, तो जो बेड का यूज है वो सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके अलावा है, यू शुड हैव अ बेडशीट चेंज करें, डार्क रूम हो, एग्रीवेटिंग चीजें अवॉइड करें, झगड़ा एक्सरसाइज उस टाइम पे ना करें, तो उस तरह आपको अच्छे से नींद आएगी। और अगर ये चीजें ना वर्क करें तो फिर ऑब्वियसली मेडिसिन है, उसको नींद देने की दवाइयां हैं।
2: और स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि अगर उससे रिलेटेड कुछ है तो वो भी आपको छोड़ देना चाहिए, किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए।
0: जो स्लीप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको रिजुविनेट करती है। जो आप दिन भर काम करते हो, आप रात को सोते हो तो रिफ्रेश होते हो, तो अगले दिन आप जब सो के उठ रहे हो तो आपको रिफ्रेश होना चाहिए एक नए दिन के लिए। अगर अच्छी नींद नहीं आई अगले दिन आप फिर थके हुए हो रहे हो, तो क्रॉनिक फटीग बन जाता है, जिससे आपकी इरिटेशन, आपकी वर्क परफॉर्मेंस सब कुछ डिटेरियरेट होती है। अच्छी तरह सोना, एवरेज अराउंड 8 आवर्स, वेरी करता है फ्रॉम 6 to 9 आवर्स, बट अच्छे से नींद आनी चाहिए, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिफ्रेश होने के लिए।
1: और अक्सर कहते हैं कि मेनोपॉज के बाद वेट गेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उसके लिए कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करें?
0: बिल्कुल सही, वेट गेन बहुत सीरियस इशू है, स्पेशली हमारी कंट्री में, जिसको वैसे भी दिल्ली को ओबीस कैपिटल माना जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब मेनोपॉज हो जाए, नॉर्मली 40 साल के बाद बॉडी का कोई अंग नहीं बढ़ता, अगर आप उतना ही खाते रहोगे तो कहाँ वेट बढ़ेगा, आपका मिड सेगमेंट ओबेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी जो वेस्ट है वो बढ़ जाएगी, वो सबसे खराब साइन है फॉर फ्यूचर कार्डियक प्रॉब्लम्स, फॉर योर नी प्रॉब्लम्स। हर एक जितना 1 किलो वेट आपके नी पे बहुत चार या पांच गुना वेट डालता है, नी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो वेट आपको बढ़ाना नहीं है, और अगर आपको डाइट अपनी खानी है तो कार्ब्स कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, प्रोटीन्स बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी को ट्रिम एंड फिट रखिए, ताकि जो भगवान ने एक्स्ट्रा लॉन्गविटी बढ़ाई है आपकी, 20 साल एक्स्ट्रा हम सब जी रहे हैं, तकरीबन 90-100 एक्सपेक्टेड है अर्बन एरियाज में लाइफ, तो वो आखिरी टाइम आपका फिट और हैप्पी निकले, ना कि किसी पे डिपेंडेंट या बेड रिडन।
1: जी साथ में जैसे कि अभी आपने कहा कि जोड़ों का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, तो बोन्स भी वीक हो जाती हैं, तो डॉक्टर हासिमा आप क्या कहेंगे इस पर?
2: बोन्स वीक होने का, जैसा कि अभी डॉक्टर रेणुका बात कर रही थी कि वेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन अपने एक पर्टिकुलर एज के बाद, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली स्लो डाउन होता है, आप एज के साथ थोड़े स्लो होते ही हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि यंग एज में जो आपके अंदर फुर्ती और जो आपकी तेजी होती है वो डेफिनेटली एज के साथ थोड़ी कम होनी शुरू होती है। तो आपको वीक में 5 घंटे एक्सरसाइज जरूर करनी है। 5 घंटे से मेरा मतलब है कि आप पर डे या तो हाफ एन आवर कर लें या 45 मिनट्स कर लें, वीक में 5 दिन कर लें, तो उससे, और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है मेनोपॉज में, कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें वेट बियरिंग का ध्यान रखें, कि जो एक्सरसाइज है वो वेट बियरिंग हो, वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होती है और आपका मसल मास भी अच्छा रखती है वो। तीसरी चीज जो बोली गई कि वेस्ट सरकमफ्रेंस, वेस्ट सरकमफ्रेंस का बहुत बड़ा रिलेशन पाया गया है हार्ट डिजीज से रिलेटेड एंड ओवरऑल हेल्थ से, मतलब लिपिड प्रोफाइल एंड वो सब भी उससे रिलेटेड होता है। लड़कियों में जो PCOS की प्रॉब्लम है उसमें भी हम बोलते हैं कि वेस्ट सरकमफ्रेंस ठीक करें। तो वेस्ट के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो हमने बात की कि न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशन में मेन आपको फोकस रखना है कि आप प्रोटीन्स ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आलू है और चावल है, चीनी है, इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा रिड्यूस करें अपनी डाइट में, और अगर आप एग खाते हैं, फिश खाते हैं, तो उनका इंटेक थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, और सोया बीन्स हैं, इस तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्ड करेगी। एंड जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बोली कि आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, एंड तीसरी चीज़ जो कि कहा कि अगर आपको इनसे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा तो थोड़े से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोन हेल्थ के लिए, दूसरा मल्टीविटामिन्स दे दिए जाते हैं, और एक विटामिन डी। हाँ, वॉक की जो बात है वो मैं बताना चाहूँगी कि आप सुबह और शाम में किसी भी टाइम वॉक कर सकते हैं, तेज सन की रेज जो है बॉडी पे ना डालें, क्योंकि यूवी इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है बॉडी पे, तो आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में वॉक करें, हाफ एन आवर टू 1 आवर वॉक कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर यू।
0: इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, वॉकिंग को एक्सरसाइज ना समझें, सबसे लोएस्ट लेवल की एक्सरसाइज वॉकिंग है, आप उसके ऊपर आप बैलेंस एक्सरसाइजेस कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज करो, क्योंकि ओल्ड एज में देखा गया हम बैलेंस करना धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है, लोग स्लिप कर जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते। तो नहाना की भी प्रक्रिया है कि जब आप कपड़े बदलते हैं तो बाथरूम में ना करें, बाहर आके अपने रूम में आके बैठ के चेंज करें, तो बाथरूम स्लिप करने के चांसेस होते हैं, वहां पे रेलिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव रेलिंग, ये ओल्ड एज पे फ्रैक्चर अवॉइड करने की बहुत सारी चीजें हैं जो जान बचा सकती है लिटरली।
1: एक मैसेज है हमारे पास टीना फ्रॉम भोपाल, ये लिखते हैं, डॉक्टर, इफ द लेडी हैड अ हाइस्टेरेक्टमी एट द एज ऑफ 44-46 विल शी हैज अ मेनोपॉज सिम्टम्स, इफ यस हाउ डिफरेंट वुड दे बी, इफ नो हाउ डिफरेंट वुड दे बी।
0: नो, द क्वेश्चन इज हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी मीन्स, देखो, यूट्रस निकालना और मेनोपॉज में फर्क है। मेनोपॉज कहते हैं ओवरीज नहीं काम कर रही हैं। यूट्रस अगर आप निकाल दो कि पीरियड तो बंद हो जाएंगे, लेकिन ओवरीज अगर काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट मेनोपॉज, इट्स नॉट सर्जिकल मेनोपॉज। ओवरीज निकाल दो उसको सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। तो आपकी यूट्रस निकल गया, पीरियड बंद हो गया, ओवरीज फिर भी काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
2: एक चीज क्लियर करना चाहूंगी दर्शकों के लिए कि जो मेनोपॉज है, सभी महिलाओं को ऐसा लगता है कि महीना बंद हो गया तो मेनोपॉज हो गया, खास करके जैसे यूट्रस निकला तो आपको महावारी बंद हो जाएगी, पर अगर आपकी ओवरीज इंटैक्ट है अंदर तो ओवरी काम कर रही है, ओवरी आपके हार्मोन्स आपकी बॉडी को दे रही है, तो वो मेनोपॉज नहीं माना जाएगा, उसको हम कहेंगे कि आपका यूट्रस निकल गया, आपका पीरियड स्टॉप हो गए, बट इट इज नॉट मेनोपॉज, ये आपका सिर्फ सर्जरी हुई है हिस्टेरेक्टमी। अगर आपकी ओवरीज भी दोनों निकाल दी जाती है, देन वी कॉल इट सर्जिकल मेनोपॉज।
1: डॉक्टर सी रेणुका, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
0: मैं ये बोलूँ कि मेनोपॉज जो होता है ना, कई तरीके के होते हैं, जैसे एक सर्जिकल हो गया, एक आपका नेचुरल मेनोपॉज हो गया, कभी कभी कैंसर की दवाइयां देते हैं तो भी मेनोपॉज हो जाता है, कीमोथेरेपी मेडिएटेड मेनोपॉज, कभी कभी प्री वक्त से पहले मेनोपॉज भी हो सकता है, जिनको 40 साल से पहले हो गया उनको खासतौर पर दवाई की जरूरत है कि वो जल्दी बूढ़ा ना हो, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं मसल वीकनेस के, फ्रैक्चर होने के।
1: इस पर बातें हम और भी करेंगे कि जैसे आपने कहा जिनको जल्दी हो जाता है, तो वो क्या करें क्या ना करें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज समस्याएं और समाधान पर। तो डॉक्टर आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीओआई का नाम आजकल काफी सुना है, तो ये है क्या?
2: काफी अच्छा क्वेश्चन है शिल्पा। एक्चुअली पीओआई आजकल काफी कॉमनली देखा जा रहा है। पीओआई इज बेसिकली फुल फॉर्म में अगर बोले तो प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी, मतलब कि ओवरी ने प्री मेच्योरली काम करना बंद कर दिया। अब वो प्री मेच्योर किसको कहते हैं? वो हम यूजुअली जो हमारा बाय डेफिनेशन है वो हम कहते हैं कि अगर 40 साल से पहले महिला को महीना आना बंद हो जाए, वो किसी भी उम्र में हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज, जैसे कि हम मानते हैं कि जैसे ही मेनार्की शुरू होती है, मतलब कि पीरियड आना शुरू होते हैं, उसके बाद अगर महिलाओं को किसी भी पर्टिकुलर एज में महीना आना बंद हो जाता है 6 महीने से ज्यादा, तो उसे हम प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के क्राइटेरिया में रख सकते हैं। पर उसका जो हम फाइनल जो डायग्नोसिस बनाते हैं उसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हार्मोन का टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो एक्चुअल प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है या नहीं है। आजकल काफी केसेस देखने को मिल रहे हैं पीओआई के, और इसका जो इम्पैक्ट है उसके कई सारे इम्पैक्ट हैं, जो कि अभी हमने बात की कि मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं महिलाओं के, उसी तरह के उनमें भी होते हैं और ज्यादा सीवियर फॉर्म में हो सकते हैं, अर्ली एज पे होते हैं। दूसरा इससे रिलेटेड जो, क्योंकि यंग एज में हो रहा है तो इनफर्टिलिटी से भी ये इसका काफी अच्छा जो कोरिलेशन देखा गया वो देखा गया है, क्योंकि मैं आजकल एक तो लेट मैरिज और दूसरा डिलेड चाइल्ड बियरिंग की वजह से कई बार महिलाएं

0: ऐसे उस पर आ जाती हैं कि उनको पीरियड ही आना बंद हो गया, और जो कि उनके पास अभी प्रेगनेंसी भी नहीं हुई है। तो उस चीज़ को हम इस तरीके से टैकल करते हैं कि पहली चीज़ तो हम उनको ये देखते हैं कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो किस पॉइंट के लिए हमारे पास आई हैं। बेसिकली या तो उनको सिम्टम्स हो रहे हैं मीनोपॉज से रिलेटेड, पीरियड बंद हुआ है तो डेफिनेटली कोई भी महिला अगर उसको 40 साल से पहले पीरियड बंद हो जाता है तो एक एंग्जाइटी होती है कि ये क्यों हो गया। ये तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़
1: जी
0: है कि वो परेशान होंगी कि हमें पीरियड इतनी जल्दी क्यों बंद हो गया, और ख़ास करके उन महिलाओं को जिनकी कि अभी फैमिली भी कंप्लीट नहीं है और उनको पीरियड बंद हो गया तो और ज़्यादा एंग्जाइटी का इशू बन जाता है वो। तो उसमें बेसिकली जो है हम दो तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हमें ये देखना है कि उसका कारण क्या है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी का, कि वो जेनेटिक भी होता है। कई बार क्या होता है जैसे अगर आपके परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री से मेरा मतलब जो खून का पहला रिश्ता मतलब कि माएँ और बहनों में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, अगर आपके बहन या माँ में जल्दी उम्र में हुआ है तो आप में भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है जल्दी मीनोपॉज होने का। दूसरा, इसके कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनको कि हम जेनेटिक सिंड्रोम्स कहते हैं, उनमें भी ये हो सकता है। तीसरा, कुछ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। चौथा, सर्जिकल, जो कि हमने बात की कि सर्जरी हो गई उसकी वजह से हो सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, कारण हमें ढूंढना होता है। एंड उससे रिलेटेड जो भी अभी मैंने बात की कि किस वजह से वो हमारे पास आई हैं, उससे रिलेटेड ही उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट बेसिकली उसी तरीके का है जैसा कि मेनोपॉज में होता है, एक्सेप्ट फॉर उन लोगों में चेंज आता है जिनको कि फर्टिलिटी का भी इशू है।
1: तो डॉक्टर सीमा, आपने हमें बताया कि प्री मीनोपॉज ट्रीटमेंट और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर पोस्ट मीनोपॉज ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर रेणुका, आप हमें बताइए क्या उसका इम्पैक्ट रहता है।
2: हाँ शिल्पा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीनोपॉज होने के बाद कोई भी ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अगर 1 साल हो गया आपका पीरियड बंद हुए, उसके बाद कोई भी ब्लीडिंग एबनॉर्मल है और जिसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके जरूर चेक कराएं। नॉर्मली अराउंड 10% में कैंसर निकल सकता है या कैंसर की शुरुआत हो सकती है। जैसे आप सबको पता है कैंसर शुरुआत में अर्ली स्टेजेस में तो बहुत अच्छा उसका इलाज है, लेकिन अगर इसको निग्लेक्ट कर दो आप तो धीरे धीरे कैंसर फैल जाता है, फिर आगे का प्रोग्नोसिस उतना ही खराब हो जाएगा। तो अगर किसी औरत को पीरियड बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, चाहे स्पॉटिंग ही क्यों ना हो, तो उसी टाइम जाके डॉक्टर की राय जरूर ले।
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखती हैं, हाय मैम, देहरादून से। मीनोपॉज के बाद मुझे अल्सर की बीमारी हो गई है, तो बोन्स हेल्दी रहे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उसके लिए क्या खाएं?
0: गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रही हैं ये?
1: वो तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने
0: गैस्ट्रिक अल्सर, तभी शायद इन्हें खाने में प्रॉब्लम हो रही होगी
1: जी।
0: तो बेसिकली तो गैस्ट्रिक अल्सर का तो इन्हें इलाज कराना होगा। डायग्नोसिस कैसे बना है? शायद एंडोस्कोपी हुई होगी, उसी से हुआ होगा। तो पहले तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के गैस्ट्रिक अल्सर का इलाज कराएंगे। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो तो हमारा सेम रहता है, एक्सेप्ट फॉर के हम कोई भी ऐसी चीज नहीं, जो मीनोपॉजल थेरेपी है जिसके कि हम बात कर रहे थे कि हार्मोन थेरेपी जो दी जाती है, जिनमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें हम ओरल ड्रग्स मतलब मुंह से देने वाली दवाइयां ना देके जेल भी लगा सकते हैं, क्रीम्स लगा सकते हैं, कुछ स्प्रे आते हैं वो दे सकते हैं, तो ताकि उनके स्टमक पे वो इफेक्ट ना आए। तो अगर इनको उस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो कि ये इस्तेमाल कर सकती हैं हार्मोन थेरेपी के लिए।
1: और साथ में वो ये भी पूछ रही हैं कि बोन्स हेल्दी रहे और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, उसके लिए क्या खाएं?
2: उसके लिए आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए विटामिन लें, एक्सरसाइज करें, और हड्डियां स्ट्रांग करने के लिए आप अपना, अगर एज कितनी बताई इन्होंने आपने?
1: इन्होंने एज मेंशन नहीं की।
2: तो अगर एज अगर आपकी ज्यादा है तो एक डेक्सा स्कैन होता है जिससे बता सकते हैं कि आपका हड्डियां कितनी स्ट्रांग है, और बेटर है कि प्रिवेंशन में जाएं। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, ठीक से अच्छा से कैल्शियम खाएंगे, विटामिन डी लेते रहेंगे, तो आपकी बोन स्ट्रांग रहेंगे। एक नियम होता है, इस्तेमाल करते रहो चीज की, अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो वीकन होगी। जिस तरह हेड दिमाग अपना यूज करते रहो तो दिमाग चलता रहेगा, शरीर टांगे आप चलाते रहें तो स्ट्रांग रहेंगी। ये अगर आप सीढ़ियां लिफ्ट मत इस्तेमाल कीजिए, अगर सीढ़ियां चल सकते तो सीढ़ियां चलें, अनलेस कि आपकी डॉक्टर नी की प्रॉब्लम की वजह से मना करे। सीढ़ियां चढ़ना इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, सीढ़ियां हैं तो प्रेफर सीढ़ियां, दैट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज।
1: डॉक्टर, आपने अभी दिमाग की बात करी, तो इस एज में अक्सर मेनोपॉज के बाद मेमोरी लॉस का इशू बहुत मेजर होता है, काफी लोग कहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और उसकी वजह क्या है?
2: मेनोपॉज में नॉर्मली MCI जिसको बोलते हैं, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है, लेकिन कभी कभी ये अल्जाइमर्स की शुरुआत भी होती है। अल्जाइमर्स इज सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो ये आपको डॉक्टर को दिखा के एक बार चेक कराना है कि

0: चीजें तो नॉर्मल है, कुछ चीजों को भूलना वो तो एज के साथ साथ होता है, उसको भी रेक्टिफाई करने के तरीके, आप कोई नई चीजें सीखिए, गाना सीखिए, म्यूजिक ले, इन चीजों से दिमाग की कनेक्शंस बने रहते हैं और स्लो डिक्लाइन होता है, और ज्यादा डिप्रेशन की वजह से भी कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। अगर रात को आप ढंग से सोए नहीं, उससे भी आपका मेमोरी लॉस ज्यादा होगा। तो आपको दिखाना है कि क्या चीज कितना आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन है और ये नॉर्मल में है, नॉर्मल में आ रहा है, और उसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए।
1: अक्सर होता है कि महिलाएं सामान रख दिया, भूल गई।
2: बेसिकली वही है कि आप जितना ज्यादा एक्टिवेटेड रखेंगे, ब्रेन के साथ भी यही है, इट इज जस्ट लाइक ए गेम। आप जितना ज़्यादा ब्रेन को एक्टिवेट रखेंगे, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, नए नए सम्स कीजिए या मैथ्स कीजिए या कोई भी पजल्स आते हैं वो कीजिए। मेमोरी गेम्स भी होते हैं जो कि आप कंटिन्यूअसली रख सकते हैं अपने आप को कंटिन्यूटी में। जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा आपका ब्रेन, उतना ही कम चांसेस होते हैं उसमें मेमोरी लॉस होने के। और इसमें मीनोपॉज में एक खास चीज़ होती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, जैसे आपने बोला कि रखती चीज़ और भूल गए, लॉन्ग टर्म याद रहती हैं चीज़ें, पुरानी बातें सब याद रहेंगी, पर जो अभी अभी हुआ है वो भूलती हैं। तो ये बड़ी खासियत है मीनोपॉज में कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस काफ़ी कॉमन होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि एक तो कैल्शियम की जो हम बात करते हैं, हाँ मैं वहाँ एक पॉइंट ज्वाइन करना चाह रही थी कि डाइट जो रिच इन कैल्शियम होती है उसमें जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा लें, सोयाबीन लें, और जैसे ये जो आते हैं जिनको मखाने कहते हैं, मखानों में अक्सर है फॉक्स सीड्स, और जो आजकल बहुत सारे सीड्स आ रहे हैं उनको आप तरीके तरीके से खा सकते हो हर चीज़ में डाल के, तो वो बहुत अच्छे हैं मीनोपॉज एज में। एंड एक और चीज़ जो कि हमने खुद स्टडी की थी हमारे हार्मोन क्लिनिक में, कि हमने उन्हें 6 कलर्स ऑफ डाइट दिए थे इन लंच एंड डिनर, एंड इट रियली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देयर जनरल वेलबींग। जैसे कि हमने बोला कि आपकी डाइट में 6 कलर का
1: कलर्स टू देयर लाइफ,
2: हाँ, एंड इट रियली हेल्प देम। आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड, बट रियली इट हेल्प्ड।
0: इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, एक स्पेशल विटामिन है जिसको बोलते हैं सोशल विटामिन। जितना आप सोशली एक्टिव रहोगे, रिश्तेदारी में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में, उतना आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन कम होगा। ये देखा गया है कि जो लोग सोशली एक्टिव रहते हैं उनकी कॉग्निशन, उनकी स्लीप, उनका हर किस्म का डिक्लाइन स्लोअर होता है। तो दिस इज स्पेशल विटामिन टू बी सोशली एक्टिव।
1: यानी इस एज में आके हम कई बार सोचते हैं कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए, अब हम रिलैक्स करेंगे, तो रिलैक्स होते हैं तो बॉडी भी और ज्यादा रिलैक्स हो जाती है।
0: बिल्कुल, यूज इट और लूज इट, जो भी चीज है उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो धीरे धीरे जाएगी।
1: लेकिन ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइंस हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमें अब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: जैसे बताया, एक बदबूदार पानी का जाना, ब्लीडिंग होना, या आपकी इतनी ज्यादा हड्डियों में कमजोरी होना और वक्त से फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर होना, जरा सी बात, जरा सा चोट लगी आपकी और आपकी हड्डी टूट जाए, ये सब एबनॉर्मल चीजें हैं। एकदम अचानक वेट लॉस होना, बिल्कुल ही ना सो पाना, टोटली भूल जाना कि रिश्तेदारी क्या है, मतलब बेटे का नहीं पता, ये अल्जाइमर्स की साइंस है। इन चीजें ये रेड फ्लैग्स हैं जब जाके बिल्कुल आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आगे भी जाने ना तू, मूड चाहे जैसा भी हो, गाने सुन के मूड हमेशा रिफ्रेश हो जाता है। तो डॉक्टर रेणुका, आप हमें ये बताइए कि कोई ऐसी थेरेपी या इलाज है जिससे ये प्रॉब्लम्स ना हो?
1: देखो, एजिंग तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। देर इज नथिंग लाइक फेमिनिन फॉर एवर। कुछ लास्ट सीजन्स है, ये भी एक सीजन है जिसको एक्सेप्ट करो। हम कब ट्रीटमेंट देते हैं? ट्रीटमेंट हम तब देते हैं कि अगर कोई सिम्टम इतना ज्यादा सिवियर हो रहा है कि पेशेंट की लाइफ खराब हो रही है, तो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट देते हैं। पूरे लाइफ ये नहीं कि खाते रहने हार्मोन्स। तो वी MST, जिसको मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी होती है, जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सिवियर हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं या नीचे की खारिश और रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रही है, तो उनको हम हार्मोन्स देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कभी कभी हमें प्रोलॉग भी करना होता है। इसके साथ साथ जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो है हड्डियां मजबूत करने के लिए। जिनके हड्डियां कमजोर हैं, जिनको रिस्क है फ्रैक्चर होने का, तो उनकी हड्डी मजबूत करने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। मसल्स जिनकी वीक है, उनको एक्सरसाइज बताई जाती है, और स्लीप और कॉग्निशन उनके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए स्पेशल मीनोपोजल क्लिनिक्स रन होती हैं इंडिया में। जो इंडियन मीनोपोज सोसाइटी है, वो काफी सारी जगह पे इन्होंने मीनोपोज क्लिनिक्स बना रखी हैं। दिल्ली में भी ईच गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नाउ इधर स्टार्टेड और दे आर स्टार्टिंग मीनोपोजल क्लिनिक्स, जहाँ पे मीनोपॉज के लिए जो खास डाइट का ध्यान, कैंसर स्क्रीनिंग और रिस्क असेसमेंट, वो सब किया जाता है। और हर पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि किन इनमें से कुछ लोग होते हैं जिनको हार्मोन्स देने पड़ते हैं, कुछ नॉन हार्मोनल्स के लिए होते हैं, और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए। लाइफ स्टाइल चेंजेस तो

0: हर किसी को बेसिकली सिखाया जाता है कि क्या क्या करें ताकि बीमारी ना हो, और अगर है तो वक्त से पहले उसका पता रहे।
1: डॉक्टर सीमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें?
2: हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि जो मीनोपॉज हार्मोन थेरेपी के क्लिनिक्स जो बने हुए हैं, उसमें जो महिलाएं हैं जिन्हें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं मीनोपॉज के, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि हम अप टू 10 ईयर्स ऑफ मीनोपॉज जो होता है तब तक ही हार्मोन थेरेपी का ट्रीटमेंट उनको देते हैं, उसके बाद हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और ये ट्रीटमेंट जो है 3 to 5 ईयर्स के लिए यूजुअली हम चलाते हैं। पर इसमें जो एक खास चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कैंसर ब्रेस्ट एंड कैंसर एंडोमेट्रियम, इन केसेस को हमें खास ध्यान रख के हार्मोन थेरेपी देनी होती है, क्योंकि जो हार्मोन्स दिए जाते हैं वो भी उसी के ऑलमोस्ट नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जिस तरह के भी कैंसर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। तो कोई भी महिला अगर हार्मोन्स ले रही है और वो ये सोचती है कि बहुत अच्छा उसको इफेक्ट आ रहा है, तो वो अपने आप से उसको कंटिन्यू ना करती रहें, उनको रेगुलरली फॉलोअप में रहना होता है। इसी की वजह से हार्मोन थेरेपी जो क्लिनिक्स हैं चलाए गए हैं, क्योंकि ज्यादा एज होने की वजह से वो भीड़ भाड़ वाली ओपीडी नहीं अटेंड कर पाती है, तो उनके लिए स्पेशल क्लिनिक्स हैं जिनमें 25-30-40 पेशेंट्स होते हैं और उनको बहुत आराम से तसल्ली बख्श तरीके से देखा जा सकता है।
1: तो ये जो आपने HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताया है, तो इसकी भी कोई स्पेसिफिक एज होती है?
2: हाँ, जो मैंने बताया कि आपको जब भी मीनोपॉज हुआ है, जैसे कि अभी मैडम ने बात की कि सर्जिकल मीनोपॉज हो सकता है या नेचुरल मीनोपॉज हो सकता है। नेचुरल मीनोपॉज की हमने बात की थी कि वो 45 से 55 के बीच कभी भी हो सकता है। सर्जिकल मीनोपॉज तो जब आपकी ओवरीज निकाल दी तो सर्जिकल मीनोपॉज हो जाएगा। तो उसके बाद में एट एनी टाइम मरीज जो होते हैं उनको सिम्टम्स आ सकते हैं और उनको ज़रूरत पड़ सकती है हार्मोन थेरेपी की। कई लोगों में नहीं भी ज़रूरत पड़ती, कई लोग नेचुरली इन चीज़ों को, जैसे कि उनकी हमेशा से डाइट बहुत अच्छी रही हो, कैल्शियम रिच डाइट लेते हों, हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हों, इस तरीके की जिनका लाइफस्टाइल होता है, कई बार उनमें ये सिम्टम्स बहुत मिनिमल भी होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो उनको कई बार हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, सिर्फ उनका जो है हम स्क्रीनिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि उनमें जो मीनोपॉज से रिलेटेड या अनरिलेटेड एज रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनकी स्क्रीनिंग हो सकती है।
1: कई बार होता है फीमेल्स में देखा जाता है जो उनकी मंथली साइकिल होती है, तो जैसे 20-21 डेज में आती है, कई बार किसी मंथ 15 डेज में आ गई, कई बार 10 डेज में भी आ जाती है, कई बार लेट भी हो जाती है, तो कई बार वो उस पर सोचने लगती हैं, तो उनको उस पर क्या करना चाहिए, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए या खुद कुछ करना चाहिए?
2: इसमें एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, 8 साइकिल्स पर ईयर आप एक तो मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बना के रखिए, आपके पास डायरी हो, दीवार पे लाइन लगा सकते हो, या फोन में ऐप आती है जिसमें कि आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का कैलेंडर बना के रख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 साइकिल्स अगर आपको साल में आ रही है, मतलब 8 बार अगर आप ब्लीड कर रहे हैं, तो वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। पर उसका जो इंटरवल है उसे हम ऐसे देखते हैं, 21 से 35 दिन। मान लीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड आया और आपको दूसरा पीरियड फिर 21 तारीख को शुरू हुआ, तो हम उसके लिए ज़्यादा नहीं बॉदर करते, या 35 दिन बाद आया, मतलब 5 तारीख के बाद आया, तो हम कुछ नहीं करेंगे। पर अगर उसके भी बाद आया, बार बार ऐसा हो रहा है, या उससे भी पहले आया, 21 दिन से पहले,
1: अगर जैसे 1 को किसी का आया तो उसके बाद 10 को आ गया, तो
2: हाँ डेफिनेटली
1: तो वो सही है, गलत है?
2: वही गलत है, वही मैं बता रही हूँ। अगर 21 दिन से पहले आ रहा है और बार बार आपके साथ ये रिपीट हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से कि आपका जो ब्लीडिंग है वो बार बार हो रही है, तो उसका तो चेकअप होना बनता ही है, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखती है, हाय अनीता, आई एम 46, हेल्दी, अनमैरिड एंड अ वर्जिन। ट्वाइस इन द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग अबाउट अ मंथ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस विच स्टॉप्ड आफ्टर 21 डे हार्मोनल कोर्स। आई हैड अ टोटल थायराइडेक्टमी एट 24। आई हैव नो हॉट फ्लैशेस और स्लीप इश्यूज। आई कंज्यूम अबाउट 1 लीटर ऑफ मिल्क कर डेली, इज इट एनफ?
0: अनीता, अभी तो आप बहुत यंग हो, 46 के हो, और अभी तो मेनोपॉज हुआ नहीं है, अभी तो आप ट्रांजिशन फेज में हो, यानी आपको पीरियड की खराबी हो रही है, तो अभी तो लॉन्ग लाइफ अहेड, यू शुड रिमेन हेल्दी। तो अब बस ये टाइम आपसे अब से ध्यान रखना है। अब आप देखो आपको मेनोपॉज कब होता है, इसका नेक्स्ट पीरियड आपका कैसे आ रहा है, उसके बाद जैसे ही आपको सिम्टम्स आने लगे, पीरियड या ज्यादा आता है या पीरियड नहीं भी आता, तब आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, तब एक्सरसाइज करें। अब यहां से आप अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए।
1: मीनोपॉज के बाद अक्सर एक हमारा मेंटली हम सोचते हैं कि हम ओल्ड हो गए या हमारी एज फैक्टर हो गया, तो लेकिन ऐसे में सभी महिलाओं के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कहें बताएं कि वो अपने आप को एक्टिव, हेल्दी और एनर्जेटिक कैसे रखें, कैसा लाइफस्टाइल वो फॉलो करें।
2: वो आपने

0: के साथ इंटरेक्ट करके चलना है सो दैट आपका ब्रेन भी उतना ही फंक्शन करे। एक चीज यहां मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मीनोपॉज में हम लोग ये भूल जाते हैं कि ब्रेस्ट की हेल्थ, तो ब्रेस्ट कैंसर भी काफी कॉमन है इंडिया में, तो उसकी स्क्रीनिंग भी जरूर करा लें सभी महिलाएं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे जरूरी है कि वो ना उनको सिम्टम भी हो तब भी वो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जरूर करा लें।
1: और कुछ ऐसी डाइट जो उनको डेली में खानी चाहिए और कुछ ऐसी चीज जो उनको अवॉइड करनी चाहिए?
2: देखिए ऐसा होता है जब मीनोपॉज होता है ना, बॉडी में चेंजेस आते हैं। जो एक वुमन है वो अपनी ब्यूटी को, बालों को, स्किन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, तो जिनको लगता है धीरे धीरे हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी स्किन में वो टेक्सचर, वो ग्लो नहीं रहा, तो कुछ कुछ तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बाल का झड़ना, चल नहीं पाना, वो सब एबनॉर्मल है। कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन एजिंग तो होगी, थोड़ा सा डिक्लाइन बॉडी में एनर्जी में होता है, वो नॉर्मल चीज है।
1: और कई बार होता है महिला होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को घर पे शेयर करने में हेजिटेट करती हैं, या डॉक्टर के पास जाने में भी हेजिटेट करती हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या मैसेज देंगे?
2: देखिए मेनोपॉज ये टाइम है जिसमें अब अपना ध्यान रखना है, सब कुछ आपको नहीं मालूम होता, तो इसमें जरा सी अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो आप जाके डॉक्टरी सलाह लीजिए, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो उनकी कंसल्टेशन लीजिए। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली में मेनोपॉजल ओपीडी रन करता है, आप वहां जाके उनका फायदा उठा सकते हैं।
0: देखो दिल्ली में तो एक और खास चीज़ है कि कैलकाटा और बॉम्बे की तरह मेल गायनकोलॉजिस्ट बहुत कम है दिल्ली में, तो जो महिलाओं को जो हेजिटेशन होती है कि मेल डॉक्टर के पास नहीं जाना, दिल्ली में तो ये बहुत एडवांटेज है इनको। ऑल दो मैं ये कहूंगी कि डॉक्टर का आपको जेंडर नहीं देखना, आप डॉक्टर इज डॉक्टर, आप जाएं खुल के अपनी बात बताएं और अपना एग्जामिनेशन या जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कराएं, पर एटलीस्ट दिल्ली वाली महिलाओं के लिए तो ये फायदा है कि यहाँ पे गायनकोलॉजिस्ट मेनली जो है फीमेल्स हैं।
1: तो आप हमारी सभी श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: ये मैसेज देना चाहेंगे कि जिंदगी का हर सीजन एंजॉय कीजिए, ये मेनोपॉज भी जिंदगी का एक सीजन है, उसको भी एंजॉय कीजिए, और ये बेस्ट पार्ट होना चाहिए, ये एक शाम की तरह है, जिंदगी की शाम है जो सबसे सुंदर होनी चाहिए, सेहतमंद और सुंदर।
1: और डॉक्टर सीमा आप?
0: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हेल्दी रहें और हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएं। कलरफुल से मेरा मतलब है कि हर तरीके से कलरफुल, अपना जो सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, क्योंकि अब आपकी एज ऐसी हो गई है कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर से ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती हैं। अब आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी सेहत पे ध्यान दें, और ये देखें कि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो जैसे ही आपको लगता है कि कोई भी चीज की आपको जानकारी मिल रही है, उससे जितना आप फायदा उठा के अपने हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं, आप उतना मैक्सिमम यूटिलाइज करें।
1: तो श्रोताओं, मीनोपॉज जिंदगी का अंत नहीं बल्कि जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। जरूरत है अपने शरीर में हो रहे बदलावों को समझने की, अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की और सही समय पर विशेषज्ञ की सलाह लेने की। तो अपनी सेहत की आवाज सुनिए, क्योंकि एक स्वस्थ महिला सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रही दो महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणुका मलिक, प्रिंसिपल कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर सीमा प्रकाश, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट जीडीबी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: शिल्पा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस पूछे और ऑलमोस्ट पूरा मीनोपॉज हमने कवर कर लिया आज।
2: शिल्पा शुक्रिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा, लगता है हमारे श्रोताओं को भी उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें पसंद आया।
1: दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप भी हमें जरूर मेल कीजिएगा, हमारा मेल आईडी है healthair@gmail.com। जाते जाते सभी महिलाओं के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सबका ख्याल रखा है आपने, अब थोड़ा ख्याल अपना भी रखिए, क्योंकि आप भी उतनी ही जरूरी हैं। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सब धारा की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पिछले 12 वर्षों में डिजिटल विनिर्माण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ तीव्र विकास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। विश्व के नेताओं और विदेशी दूतावासों ने आज भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इसकी लोकतांत्रिक यात्रा, सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना फास्ट GS नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर भुगतान करके अघोषित विदेशी संपत्तियों या अघोषित विदेशी की घोषणा कर सकते हैं। लेबनान के दक्षिण में आज सुबह इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 घायल। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है. ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है. यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है. उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है. ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो. दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं. हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से. सोचने की शक्ति. यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं. आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर

0: में बदल सकते हैं। व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है। इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता। एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना। धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें, तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा, धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना। अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है

Hello and namaste, India. Scroll, swipe, click. Alpha generation, tech savvy, dynamic और आज की दुनिया के youngest consumers, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं इन तीन words, scroll, swipe, click के आसपास ही घूमती नजर आती है ना. Information उनके finger tips पे है, दुनिया उनकी screen पर है. लेकिन इस digital speed के बीच कभी कभी जरूरत पड़ जाती है एक छोटे से pause की, एक detox की. आकाशवाणी रेनबो पर अल्फा जेन के आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लेम गेम डिटॉक्स की. आज हम यानी आप और मैं समझेंगे कि ब्लेम से अकाउंटेबिलिटी, कंप्लेन से सॉल्यूशन और मैं से हम तक की तरफ पर्सपेक्टिव कैसे शिफ्ट किया जा सकता है ताकि एक बेहतर सोसाइटी और बेहतर भारत के हर कोने में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नजर आए. मैं हूँ आज आपके साथ प्रियंका वर्मा, जो आप सभी को देती है साहस और शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. गुड इवनिंग.

0: ही चलो दोस्तों, ये गाना आई एम श्योर सिर्फ सुना नहीं गया होगा, बिल्कुल महसूस भी किया होगा। गाने की शुरुआत में जो मार्चिंग बीट सुनाई देती है वो सोल्जर्स के कदमों की गूंज जैसे लगती है, डिसिप्लिन, फोकस्ड और फियरलेस। और जब भारत माता का नाम आता है तब ये गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, सिर श्रद्धा से झुक जाता है, आंखें भर आती हैं और दिल और ज्यादा मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा हो जाता है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा, अल्फा जैन सुन रहे हैं लेट्स डिटॉक्स में। आज हम बात करेंगे ब्लेम गेम डिटॉक्स की। जी हाँ, ऐ चाहते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो, मुझे खुद से मिलना है, इस भागती हुई जिंदगी में अपनी धड़कनों को भी सुनना है, बस एक दिन चुरा कर वक्त से खुद के नाम करना है। तो आइए कुछ देर के लिए इस फास्ट पेस दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर ठहर कर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ बैठना भी दोस्तों सबसे बड़ी इमोशनल हीलिंग होती है। सो लेट्स डिटॉक्स के आज के एडिशन में आज हम बात करेंगे ब्लेम गेम डिटॉक्स की। कभी कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो, कभी वर्कप्लेस में कोई मिस्टेक हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारा पहला रिएक्शन अक्सर यही होता है ना, गलती किसकी है, तुम्हारी वजह से है, उसने ऐसा किया, मैंने तो पहले ही कहा था। धीरे धीरे ब्लेम हमारी कॉन्वर्जेशन का इतना नॉर्मल हिस्सा बन जाता है कि हम नोटिस भी नहीं करते हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज इस ब्लेम गेम डिटॉक्स पर दोस्तों सिर्फ दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद के बारे में सोचते हैं, अपनी थिंकिंग को रिफ्रेम करने के बारे में सोचते हैं। आज मैं और मेरा डेली रूटीन यानी आपका और आपका डेली रूटीन एक छोटा सा इमोशनल चेकिंग करेंगे। आज आप अपने आप से पूछेंगे, इनफैक्ट मैं भी अपने आप से पूछूंगी, जब हम कुछ गलत करते हैं या जब कुछ गलत होता है, क्या मैं तुरंत किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देती हूँ या ठहरा देता हूँ, या पहले देखता हूँ या देखती हूँ कि इस सिचुएशन में मेरा रोल क्या है, क्या मेरी गलती नहीं है पर कॉन्वर्सेशन खत्म कर देता हूँ या कर देती हूँ, या पूछता हूँ या पूछती हूँ कि इससे बेटर करने में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, क्या मैं ब्लेम और अकाउंटेबिलिटी की डिफरेंस को समझता हूं या समझती हूं, क्योंकि ब्लेम पूछता है गलती किसकी है, गलती किसकी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी पूछती है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो आइए थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, अपने ब्लेम ट्रिगर्स को पहचानते हैं, हर प्रॉब्लम में तुरंत किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के बजाय एक पल रुक कर अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, किसने किया से आगे बढ़कर अब क्या किया जा सकता है पर फोकस करते हैं, ब्लेम से अकाउंटेबिलिटी, कंप्लेन से सॉल्यूशन और रिएक्शन से रिफ्लेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, और मैं से हम की तरफ बढ़ते हुए अपने रिलेशनशिप्स, अपने सराउंडिंग्स और अपने सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने की शुरुआत भी करते हैं। फिलहाल ये ट्रैक सुनते हैं।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए,
2: भारत ये रहना चाहिए।

तुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

मैं रहूं या ना रहूं, मेरी पहचान, मेरी मिट्टी, मेरा भारत रहना चाहिए, क्योंकि देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, वो एक विरासत है जिसे हर जनरेशन को संभालना और आगे बढ़ना है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है लेट्स टॉक, जहां बात करें ब्लेम गेम डॉक्स की। अगर आप भी हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं कि आपको लगा कि इस सिचुएशन में गलती मेरी थी और मैंने ब्लेम किसी और पर डाल दिया, या मैंने किसी और पर नहीं डाला, इनफैक्ट सोल्यूशन दिया और मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का जो फर्ज होता है वो निभाया, तो हमसे शेयर कर सकते हैं 9868107070। एक बेहतर भारत की तस्वीर बनाने में आप अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो 9868107070 पर भेज सकते हैं, जहां आप ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर ब्लेम किया भी है तो अपनी गलती मान रहे हैं और उसे सुधार की तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसे हैं हम सब, ब्लेम गेम के ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसे हैं हम सब। कभी हालात को ब्लेम किया, कभी दूसरों को, कभी दूसरों को बनाया रिस्पॉन्सिबल। इस ब्लेम गेम के डिटॉक्स करके क्यों ना एक बार खुद से पूछे, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कुछ गलत होता है, हमारा पहला रिएक्शन होता है मेरी गलती नहीं है, मेरी मिस्टेक नहीं है। कभी हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, कभी किसी दूसरे पर्सन को, कभी सिस्टम को, पर कभी कभी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख ही नहीं पाते। ब्लेम करना अक्सर इजी लगता है ना, क्योंकि इससे हम अपने मिस्टेक एक्सेप्ट करने के डिस्कम्फर्ट से बचने का मौका मिलता है। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्लेमिंग एक सेल्फ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स हो सकता है। जब अपनी गलती एक्सेप्ट करने से गिल्ट, शेम या एम्बैरेसमेंट फील होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पर शिफ्ट करना टेम्परेरली इमोशनल डिस्कम्फर्ट को कम कर सकता है। हम अपने आप को समझाते हैं, प्रॉब्लम मेरी वजह से नहीं हुई है, सरकमस्टांसेस ही ऐसे थे। लेकिन अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट हो तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय सिर्फ कल्प्रिट ढूंढने लगते हैं, और यानी फिर हम सिचुएशन को समझने और सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय बस ये प्रूफ करने में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, गलती मेरी नहीं थी। यहीं पर ब्लेम और अकाउंटेबिलिटी के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। ब्लेम पूछता है गलती किसकी है, अकाउंटेबिलिटी पूछती है इसमें मेरा रोल क्या है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर प्रॉब्लम का ब्लेम खुद पर ले लिया जाए, इसका मतलब है कि अपने एक्शन, चॉइसेस और रिएक्शंस के लिए ऑनेस्ट होना, जब हम कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करना। जी, यानी सोचिए घर में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, अगर हम कहेंगे तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तो सामने वाला नेचुरली डिफेंसिव हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें हम दोनों ही इस बात पर बिगड़े हैं, नेक्स्ट टाइम इसे बेटर हैंडल कर सकते हैं ना ये, तो कॉन्वर्जेशन ब्लेम से सॉल्यूशन की तरफ मूव करती है। वर्क प्लेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। डेडलाइन मिस होने पर किसी एक कलीग को ब्लेम करने की बजाय पूछा जा सकता है प्रोसेस में गैप कहाँ रह गया और नेक्स्ट टाइम हम इसे कैसे अवॉइड करें। और रिलेशनशिप में तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टेंट ब्लेम धीरे धीरे डिफेंसिवनेस, रिजेंटमेंट और इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग ट्रस्ट को स्ट्रेंथन कर सकती है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि हम सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव नहीं करना चाहते, हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहते हैं। क्यों ऐसा लगता है ना, इसलिए ब्लेम गेम से बाहर निकलने का पहला स्टेप है पॉज। जब नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली कहने का मन करे ना तुम्हारी वजह से, तो एक सेकेंड रुककर पूछिए इस सिचुएशन में मेरा रोल क्या था, मैं क्या डिफरेंटली इसे कर सकता था या कर सकती थी, अब सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। ये छोटा सा मेंटल शिफ्ट हमारे थिंकिंग को विक्टिम माइंडसेट से सॉल्यूशन माइंडसेट की तरफ ले जाता है दोस्तों। जी हाँ, हम अक्सर कहते हैं देश को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कलेक्टिव चेंज की बिगनिंग इंडिविजुअल बिहेवियर से होती है। साइकोलॉजी में इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। जब एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अडॉप्ट करता है तो वो बिहेवियर दूसरों के लिए भी सोशल नॉर्म बन जाता है। रोड पर कचरा देखकर सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना ईजी है, अपना कचरा डस्टबिन में डालना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रैफिक रूल्स तोड़कर दूसरों को इररिस्पॉन्सिबल कहना ईजी है, खुद रूल्स फॉलो करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेक न्यूज के लिए सोशल मीडिया को ब्लेम करना इजी है, फॉरवर्ड करने से पहले इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देश सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या सिस्टम से नहीं बनता, देश हमारे एवरीडे चॉइसेस से भी बनता है। हम रोड पर कैसे बिहेव करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट करते हैं, रिसोर्सेस को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करते हैं और डिजिटल दुनिया में कितनी समझदारी दिखाते हैं, ये सब मिलकर सिविक सेंस, सिविक कल्चर क्रिएट करता है। सो ब्लेम गेम डिटॉक्स का सिंपल मंत्र हो सकता है, इस
किसकी गलती है, किसकी गलती है से पहले मेरा रोल क्या है पूछिए। ब्लेम से सॉल्यूशन तक, ब्लेम से रिस्पांसिबिलिटी तक, क्योंकि रियल चेंज तब शुरू होता है जब उंगली दूसरों की तरफ उठने से पहले एक बार खुद की तरफ मुड़ती है। और रिस्पांसिबिलिटी का मतलब खुद को ब्लेम करना नहीं, बल्कि अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करके सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है।

0: जगत पिजारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
4: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद।
5: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
6: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
5: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
6: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा चैन और आज लेट्स डिटॉक्स के एडिशन में हम बात कर रहे हैं ब्लेम गेम डिटॉक्स की। जी हाँ, ब्लेम से सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी तक, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब अपनी आदत में जिम्मेदारी आती है तभी देश की तस्वीर बदलती है, क्योंकि देश बदलने की कहानी दोस्तों हमेशा किसी और से नहीं मुझसे शुरू होती है। और जब मैं की जिम्मेदारी हम की सोच में बन जाती है ना, तभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की ताकत बन जाती है। एक कदम मेरा, एक कदम आपका, यही मिलकर तो बनता है बेहतर भारत हम सबका। दोस्तों 15 अगस्त यानी आज हम सब गर्व के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन

आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपनी फ्रीडम को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करते हैं। हम अक्सर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखकर ब्लेम करते हैं, सिस्टम खराब है, लोगों में सिविक सेंस नहीं है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्लेम करना कई बार साइकोलॉजिकली ईजियर होता है, क्योंकि इससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टेम्परेली डिस्टेंस बना लेते हैं। जब प्रॉब्लम का कॉज किसी और का मान लिया जाता है तो अपने बिहेवियर को एग्जामिन करने की जरूरत कम महसूस होती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी ओरिएंटेड थिंकिंग हमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देती है। इसमें हम सिर्फ ये नहीं पूछते कि गलती किसकी है, बल्कि ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि इस सिचुएशन में मेरा कंट्रोल क्या है और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट ब्लेम ओरिएंटेड रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड बिहेवियर की तरफ ले जा सकता है। जब हम इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय सिचुएशन को पॉज करके इवैल्यूएट करते हैं ना, तो सेल्फ रेगुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेस क्रिएट होता है। सिविक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए तो इसका मतलब है अपने डेली बिहेवियर में इतनी अवेयरनेस ला रहे हैं कि हम अपने एक्शंस को इम्पैक्ट समझ सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, रेड लाइट पर रुकना, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, सड़क पर कचरा ना फेंकना, पब्लिक स्पेसेस को क्लीन रखना, ये छोटी हैबिट्स लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं हैबिट्स से रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप डेवलप होती है। इसी तरह वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन भी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। जरूरत ना हो तो टैप बंद करना, अगर लाइट्स आपको लगता है कि इसकी चलनी नहीं चाहिए तो उसका स्विच ऑफ कर देना, अप्लायंसेस का स्विच ऑफ कर देना, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना, ये सिर्फ घर के डिसिप्लिन नहीं बल्कि कलेक्टिव रिसोर्सेज के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट है। पब्लिक प्रॉपर्टी किसी और की प्रॉपर्टी नहीं होती। पब्लिक रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्ट्रीट लाइट, बेंचेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सब सिटीजन्स के कलेक्टिव रिसोर्सेज हैं। इन्हें डैमेज करना या मिसयूज करना इनडायरेक्टली अपने ही रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाना है। पब्लिक स्पेस पे हमारा बिहेवियर ही हमारे सिविक सेंस का रिफ्लेक्शन होता है, और यही फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का इंपॉर्टेंस सामने आती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स हमें देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल सिंबल्स और नेशनल वैल्यूज की रिस्पेक्ट करना, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और साइंटिफिक टेम्पर और हार्मनी को प्रमोट करना। साइकोलॉजी और बिहेवियर साइंस हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि स्मॉल एक्शंस जब बार बार किया जाए तो ग्रेजुअली हैबिट्स में कन्वर्ट होते हैं, और जब वही रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स बहुत सारे लोग अडॉप्ट करते हैं तो इनका इम्पैक्ट इंडिविजुअल लेवल से निकलकर कम्युनिटी और सोसाइटी तक पहुंचता है। एक पर्सन का रोड पर कचरा ना फेंकना शायद एक छोटा सा एक्शन लग सकता है दोस्तों, लेकिन जब थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सिटीजन सेम बिहेवियर फॉलो करते हैं तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है। यही सोशल नॉर्म्स का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन बिहेवियर का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमारे आसपास का एनवायरमेंट है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उससे अक्सर डिसाइड होता है कि नॉर्मल या एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है। अगर पब्लिक प्लेस पर लिटरिंग कॉमन नजर आए तो लोग अनकॉन्शियसली यूज करेंगे नॉर्मल बिहेवियर, समझेंगे कि हाँ कूड़ा फेंकना तो आम बात है। अगर मेजॉरिटी लोग डस्टबिन का यूज करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करेंगे, क्लीनिनेस मेंटेन करें, तो वही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ग्रेजुअली पॉजिटिव सोशल नॉर्म बन सकता है। इसलिए सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल चॉइस नहीं, ये एक सोशल बिहेवियर भी बन सकता है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दूसरे सिटीजन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और इसी तरह इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्गर सिविक कल्चर में ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से नेशन बिल्डिंग का सफर शुरू होता है। ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफर शायद छोटा लगे, लेकिन इस छोटे सफर में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक स्ट्रॉन्गर नेशन की बुनियाद रखी जाती है। एक जिम्मेदार आदत से शुरुआत होगी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बात आगे बढ़ेगी, और जब मैं से हम का सफर तय होगा तभी तो नेशन बिल्डिंग का सपना हकीकत में बदलेगा। ब्लेम से सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी तक इस सफर में आज क्यों ना हम ये कहें, देश को बेहतर बनाने की शुरुआत किसी और से नहीं, मुझसे होगी, है ना।

0: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस CBI या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल ना घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें।
2: शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
3: गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो मैजिक है ना वो है वोकल्स में। जी हाँ, जैस्मिन और सतेंद्र के जो अलग अलग टेक्सचर्स के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवास क्रिएट करते हैं। इन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल हैं, जहाँ एक गाना एक एहसास से दूसरे एहसास में स्मूथली ग्लाइड करता है। ब्लेम गेम डिटॉक्स की हम बात करें और आपके मैसेजेस हम ले लेते हैं। अभी जो मैसेज आया है, राम राम जी, दुनिया की सबसे अजीब विचित्र औषधि क्षमा है, जो दूसरों को देने से पहले खुद पर ज्यादा असर है करती है, मन हल्का करती है। ठीक उसी तरह से अध्यापक का पढ़ाया हुआ पाठ, जब विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं तो वो अच्छे नंबरों से पास होते हैं, और जब चिकित्सक का किया इलाज, जब रोगी स्वस्थ होता है। इसलिए अपने भीतर सदा इस क्षमा औषधि के उचित उपयोग को जन्म देते रहें। इसका पौधा अच्छे से सींचे और खुद को और दूसरों को भी सदा फल देते रहे। जी हाँ, बहुत ही प्यारा मैसेज है। और आगे जो आपने लिखा हुआ, मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आपने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ की है रोहित जी। आपने दिल्ली नौ से हमें मैसेज किया है, और इतने खूबसूरत मैसेज आप करते हैं कि कहते हैं कि दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है हमारी जब ड्यूटी लगती है ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब स्पेशल डे पे ड्यूटी लगती है कि आपसे जुड़ने का मौका तो मिलता ही है, लेकिन अच्छा लगता है। तो ये हमारे लिए कहते हैं कि एक हम जो है ना इसके लिए रेडी हैं, इसके लिए हम यही कहेंगे। बस आपके इतने प्यारा सम्मान से भरे शब्दों के लिए दिल से धन्यवाद मैं कहती हूँ, और बस अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती हूँ। मैं ये प्रभु से भी प्रार्थना करती हूँ आप सबके स्वास्थ्य की। जी हाँ, आप सभी जो है अच्छे से आपका स्वस्थ रहे और सेवा भाव हमेशा मन में रहे। चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिखते हैं कि ट्रैफिक रूल का पालन करना, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना, हेलमेट पहन के ड्राइव करना, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना, पब्लिक प्लेस पर कचरा ना डालना, देश बेहतर बनाने की कोशिश किसी और से नहीं खुद से होनी चाहिए। बिल्कुल सौरभ अनेजा का भी मैसेज आया है, ये भी हमारे साथ प्रोग्राम में कनेक्ट रहते हैं, यही हमेशा कहते हैं वेलकम बैक, थैंक यू सौरभ जी। और इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वर्क प्लेस, नेबरहुड हो या सोशल मीडिया की जगह, ब्लेम गेम के ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसे हैं हम सब यहाँ। लेकिन कंप्लेन कल्चर से निकलकर जब पर्सपेक्टिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड की ओर जाता है ना, तब एक बेहतर सोसाइटी और एक बेहतर भारत की तरफ हमारा हर कदम बढ़ता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी घर में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कभी वर्क प्लेस पर मिस्टेक होती है, नेबरहुड में कोई सिविक सेंस सामने आता है, और सोशल मीडिया पे कोई डिस्टर्बिंग पोस्ट या मिस इन्फॉर्मेशन नजर आती है। ऐसे मोमेंट्स में हमारा पहला रिएक्शन अक्सर होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? यहीं से ब्लेम कल्चर शुरू होता है। ब्लेम करना कई बार इजी होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल हो सकता है। जब हम किसी और को ब्लेम कर देते हैं तो कुछ देर के लिए लगता है कि प्रॉब्लम हमारी नहीं है, लेकिन ब्लेम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शिफ्ट हो जाती है। फैमिली को ही देख लीजिए, घर में डिसएग्रीमेंट हुआ तो तुम्हारी वजह से सब खराब हुआ कहना बहुत आसान है ना? बिल्कुल। और इसी लेकिन अगर अपनी लैंग्वेज को चेंज करके पूछे हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन को कैसे बेटर बना सकते हैं, तो कॉन्वर्सेशन ब्लेम से निकलकर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है। हर डिसएग्रीमेंट में विनर और लूजर ढूंढने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढना रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकता है। ऐसी वर्क प्लेस पे हम कर सकते हैं कि ब्लेम कल्चर को जो है वो बिल्कुल उसको ना हटा दे। जी हाँ, जब प्रोजेक्ट

हो जाए तो मेरी वजह से नहीं हुआ, उस टाइम पर खत्म नहीं किया, कहना इजी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हुई और हमने क्या मिस किया, इसे कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसे ही नेबरहुड में भी ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो मेरा काम नहीं है भाई, इंक्रोचमेंट हो रहा है, रोड पर कचरा है, कॉमन एरिया डर्टी है, पानी वेस्ट हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है गलत तरीके से, जैसे कि मैंने कहा इंक्रोचमेंट हो रहा है। हम कंप्लेन तो कर देते हैं लेकिन कभी कभी अपने रोल को इग्नोर कर देते हैं। हर प्रॉब्लम पर्सनली सॉल्व करना जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, इश्यू रिपोर्ट करना, अपने बिहेवियर से एग्जाम्पल सेट करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। और सोशल मीडिया की दुनिया में तो हमें बाबा जजमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। एक हेडलाइन पढ़ी, एक वीडियो देखा, रील देखी और बस एक बिना वो तो ना एक पर्सपेक्टिव बनने बना लिया। कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी इसी स्पीड से स्प्रेड होती है। डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है पॉज करना, सोर्स चेक करना, कॉन्टेक्स्ट समझना और फिर रिएक्ट करना। हर पोस्ट पर जजमेंट देना जरूरी नहीं है, कभी रिस्पॉन्सिबल साइलेंस भी रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर होता है। क्यों होता है ना? जी हाँ, हमें कंप्लेन कल्चर और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग के बीच का डिफरेंस समझना होगा। कंप्लेन करना गलत नहीं है दोस्तों, जेन्युइन प्रॉब्लम्स को रेज करना जरूरी है, लेकिन कंप्लेन को अगर एक्शन और सॉल्यूशन की डायरेक्शन मिल जाए तो वही कंप्लेन कंस्ट्रक्शन चेंज का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है ना। किसने किया से कब किया जा सकता है, मेरी गलती नहीं से मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, ये मेरा काम नहीं से हम मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पर हम इस सफर पर चल सकते हैं, है ना। साइकोलॉजी है कि ब्लेम, ये शिफ्ट जो है ब्लेम ओरिएंटेड थिंकिंग से अकाउंटेबिलिटी ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ ले जाता है। इसी के साथ एक गाना सुने। जी हाँ, बस ये कहूंगी अपने ब्लेम ट्रिगर्स को पहचानिए, अपने देश की तस्वीर को बेहतर बनाइए, क्योंकि अगर हम अपने ब्लेम ट्रिगर्स को पहचानेंगे ना, उस पर ठहरेंगे ना, तो सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, किसने किया, क्यों किया, अब क्या किया जा सकता है पूछिए। जी हाँ, क्योंकि जब ब्लेम करने के बजाय अकाउंटेबिलिटी लेना सीख लेते हैं ना, तो कंप्लेंट की जगह सॉल्यूशन नजर आता है, मैं से हम की तरफ सोच पड़ती है, है ना। चलिए इसी के साथ टेक केयर गाइस, जय हिंद। प्रियंका वर्मा को दीजिए इजाजत। इसी के साथ मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन इस समय ट्रैक सुनते हैं और जल्दी से आपसे मिलने आएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

स्थित आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। लेबनान के दक्षिण में आज सुबह इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब आपके साथ है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव।

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है।

जी हाँ, इसी शान से तिरंगा लहराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह ने कहा था, इनकलाब जिंदाबाद। और महात्मा गांधी की सोच थी, अहिंसा सबसे बड़ी ताकत होती है। तो वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि, और बल्कि हम ये कहें कि उनकी बातों में वो जज्बा था कि सपने वो नहीं जो हम सोते

हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। आज हम आजाद हैं, सांसें ले रहे हैं आजादी की हवाओं में और सपने देख रहे हैं, क्योंकि कई देश भक्तों की कुर्बानी की दास्तान आज भी फिजाओं में गूंज रही है। दोस्तों, आज के सिटी लाइट्स प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ खास लोगों से और जानेंगे कि उन्होंने आज इस स्वतंत्रता दिवस के जश्न को कैसे मनाया या मना रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आज दिल्ली शहर में कहां कहां बड़े बड़े कलाकार आज अपनी परफॉर्मेंस से मचाने वाले हैं धमाल। तो आप बने रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो पर विथ SR, SR बोले तो संतोष राव।

0: वैसे तो दोस्तों हमारे देश का हर कोना अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए और इसीलिए आज देश के कोने कोने में जश्न मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं फना फिल्म के इस गीत को कंपोज करने वाले यानी म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित के ललित जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
1: हेलो हेलो संतोष जी नमस्ते।
0: सर नमस्कार और सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आपको।
1: आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और आपके सुनने वाले लोगों को भी बहुत बधाई हो आज के दिन।
0: जी सर, सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे सर, आज 80वां जो स्वतंत्रता दिवस से सेलिब्रेट कर रहा है पूरा हिंदुस्तान, आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया और कौन सा गीत लबों पर आपके सबसे ज्यादा आया?
1: देखिए फ्लैग होस्टिंग होती है आज के दिन हर सोसाइटीज में, हर रेसिडेंशियल एरियाज में और प्रोमिनेंट प्लेसेस में, तो वो एक बड़ा अच्छा लगता है कि एक पूरा जो हिंदुस्तान है वो, उसके जो लोग हैं वो इस दिवस को इस स्पिरिट से मनाते हैं। और बस मैंने भी यही किया, सबका साथ दिया
0: जी।
1: और सबके साथ था।
0: अच्छा, वैसे तो हर हिंदुस्तानी के जुबान पर या हम यूं कहें लबों पर ये गीत, ये देश रंगीला फना फिल्म का गीत जिसे प्रसून जोशी जी ने लिखा था, बेहतरीन बोल लिखे थे और महालक्ष्मी अय्यर जी की आवाज में, और इस गीत को कंपोज आप लोगों ने किया था, आपकी जोड़ी ने, तो ये गीत तो हमारे लबों पर बहुत बार बार आता है जब भी बात होती है। आज तो देखिए मैं बिल्कुल तिरंगे में रंगा हुआ हूँ। तो आपके लबों पर कौन सा गीत आया था?
1: देखिए बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो राइटर्स हैं शकील बदायूनी और मजरू साहब और
0: साहिल लुधियानवी,
1: बहुत साहिल साहब बिल्कुल, और प्रदीप जी, प्रदीप जी ने तो खैर बहुत ही स्पेशलाइज्ड लिखे हुए गाने, अगर आपको याद हो तो।
0: जी जी,
1: तो ये सब गाने हम सुनते हैं और इनको याद करते हैं और ये बहुत एक मिसाल देने वाले गाने वो बने हुए
0: जी।
1: और देश रंगीला का जब हम लोग, मुझे याद है जब डिस्कस कर रहे थे कि ये गाने को किस हिसाब से लिखा जाए और कैसे इसको इस पे बात कही जाए, तो मैंने एक बात कही थी कि जो हमारा हिंदुस्तान है इट्स वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशन इन द वर्ल्ड, इसमें लैंग्वेजेस में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने प्रांत हैं इस देश में, और वेदर भी इसमें अलग अलग है, बहुत ही रंगीला देश है हमारा
0: जी।
1: तो मैंने बोला इस थीम को क्यों नहीं हम लोग एम्फसाइज करें कि कलरफुल है हमारा यहाँ जो है, और भारत जो है हमारा, आप हर 100 किलोमीटर आगे चले जाइए तो लोगों की वस्त्र बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, म्यूजिक भी बदल जाता है लोगों का
0: जी।
1: तो इसको क्यों ना एक गाने में समेटा जाए, तो ये सबको बहुत पसंद आया था ये बात, और इसी पर फिर प्रसून जी ने बहुत अच्छा लिखा है इसको
0: जी।
1: तो इसके आप अगर वर्ड सुनेंगे तो इसमें यही है कि कैसे हिंदुस्तान जो है वो इतने डाइवर्स होके भी एक देश है।
0: बिल्कुल। अच्छा, इस गीत को कंपोज करने में कितना टाइम लगा सर? कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहेंगे रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में हुई हो?
1: इसमें एक ये चीज नजर रखनी थी, जो गाने में इतना पता नहीं पड़ता कि जो परफॉर्मर है काजोल
0: जी,
1: वो ब्लाइंड है और वो इसके रंग को महसूस करके गा रही है कि देश हमारा कैसा है, और तो ये एक बड़ी मुश्किल चीज थी इसको कंपोज करना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे ये इसको बयां किया जाए, मगर फिर प्रसून जी ने बड़ा आसान कर दिया इसको कि ये कह के कि देश का गाना है तो आप इसको ब्राइटली बनाइए, एक मस्ती का रंग आना चाहिए इसमें, और थोड़े इसके जो नोट्स हैं वो फोक के नोट होने चाहिए, वेस्टर्न नोट नहीं हो, तो आप देखिए इसमें बड़े हिंदुस्तानी सुर हैं इसमें और ऐसा रिदम भी इसका है सब, जो ढोल और हिंदुस्तानी जो परकशन होते हैं, जो रिदम होते हैं, उन्होंने उसको बजवाया है
0: जी।
1: तो उससे धुन में एनर्जी भी आई और उनके लिखने और जो महालक्ष्मी ने सुंदर गाया है उसको, उससे एक एनर्जी बनी और ये गाना बहुत बहुत लोगों को फिर पसंद आया। और हमेशा गणतंत्र दिवस में हमेशा ही अक्सर मैंने देखा लोगों को बजाते हुए।
0: जी एफएम पे तो जरूर बजता है गीत सर, और सुबह से कई बार बज रहा है ये गीत। अच्छा एक गीत और आपने कंपोज किया है, वैसे तो बहुत ढेर सारे किए, लेकिन एक गीत जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गीत है, घर परदेसी।
1: हाँ घर आजा परदेसी,
0: घर आजा परदेसी, क्या गजब का गीत सर आपने कंपोज किया।
1: बहुत ही सुंदर है, जी जी जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग है।
0: अच्छा उसके गीत के बारे में बताइए।
1: उसमें देखिए आपको फ्रेंकली बताता हूँ मैं कि एक गाना था जो आनंद बख्शी साहब का ही लिखा हुआ था, चिट्ठी आई है
0: वतन की फिल्म का।
1: जी जी जी बिल्कुल। तो उसका जो असर बाहर के लोगों में हुआ ना, वो दिल को छू जाता था। मैंने लोगों को रोते हुए देखा उस गाने को सुनते हुए, क्योंकि लोगों को बाहर जो रहते हैं हमारे हिंदुस्तानी, वो देश से बहुत प्यार करते हैं और उनको हमेशा याद आती है देश की। तो फिर यही था कि दिवाली में इसको ऐसा लेके आए कि जो परदेसी है उसको बोल रहे कि घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए। तो बड़ी इमोशनल बात हो जाती है, लोगों के दिल को छूती है बात। और यही डायरेक्शन फिर, और फिर आनंद बख्शी साहब का ये भी लिखा हुआ है गाना, तो वो तो इस गाने की नब्ज से वाकिफ थे कि कैसे इसको लिखता है। तो फिर उनकी लिखावट जो थी वो बहुत अहम है इसमें। इसको कंपोज तो हमने किया ही था, बहुत हमारी तरफ से बेस्ट। तो ये गाना इस डायरेक्शन में सोच के बनाया गया है कि घर आजा परदेसी तेरा, उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, और करोड़ों लोग रहते हैं आप
0: जी।
1: दुनिया में देखिए हिंदुस्तान हमारा चमक रहे बाहर, तो उन लोगों के लिए कि देश तुमको भूला नहीं है, याद रखता है और तुम आ जाओ देश में।
0: और बिल्कुल मैंने ये एहसास किया है सर, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो बाहर हैं, जब ये इस गीत को सुनते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं उनकी।
1: हाँ हाँ हाँ, बस ये म्यूजिक अगर आपके दिल को छू जाए और इमोशन जाग उठे
0: जी,
1: तो फिर वो यादगार गीत बन जाता है।
0: बिल्कुल। और अब तो आपके बेटे भी म्यूजिक लाइन में आ चुके हैं, म्यूजिक कंपोज कर
1: जी,
0: रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी, बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: बहुत कुछ हमारे लिसनर्स के पास बहुत कुछ आने वाला है। तो हमारे एफएम एफएम रेनबो के लिसनर्स से क्या कहना चाहेंगे इस पावन दिन पर आप?
1: बस देखिए मेरे लिए इस बात की बहुत खुशी है कि दोनों मेरे बेटे रोहांश एंड अबीर दोनों यंगेस्ट कंपोजर हैं। एक बहुत बड़ी फिल्म अल्फा जो आदित्य चोपड़ा साहब ने प्रोड्यूस की है, वायरस की फिल्म है, और इन्होंने कभी नए म्यूजिक डायरेक्टर को फर्स्ट फिल्म में कभी चांस नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मेरे बेटों को। आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट। और ये इंडस्ट्री ऐसी कि इसमें आपको चांस तभी मिल सकता है जब आप में एक खरा टैलेंट हो।
0: बिल्कुल।
1: तो ये परीक्षा के दौर से ये भी गुजरे हैं और इनका म्यूजिक बहुत बहुत लोगों को पसंद आया है।
0: बहुत अच्छा अल्फा में बहुत अच्छा म्यूजिक दिया आपके बेटे ने।
1: बहुत अच्छा है और बहुत ही फ्रेश म्यूजिक है
0: जी।
1: और ये हमारे संतोष जी पांचवी पीढ़ी है हमारे घराने
0: जी, जी
1: जो मेरे बेटे हैं, तो बहुत शुरू से ही म्यूजिक सीख रहे हैं। मुझे भी बहुत असिस्ट किया है काफी फिल्मों में इन्होंने, और सीखते सीखते अब ये स्टेज पे आ गए कि ये खुद बहुत अच्छा कंपोज करते हैं।
0: जी चलिए ललित जी, बहुत जी बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ जुड़े आकाशवाणी एफएम रेनबो पर बिल्कुल लाइव आज इस खास दिन पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की आपको।
1: आपको भी और आपके सुनने वालों को भी शुक्रिया।
0: तो दोस्तों ये थे फिल्म म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित के ललित जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने फना फिल्म और दिल वाले दुल्हनिया के ले जाएंगे कि इस मधुर गीत को कंपोज किया जो आज सबसे ज्यादा सुनाई देता है कानों में। कोई भी फंक्शन हो या कोई भी एफएम हो वहां पर ये गीत जरूर बजते हैं।

हमने सोचा क्यों नहीं आज सिटी लाइट्स प्रोग्राम में इनसे बात की जाए, और आज उन्होंने बताया कि किस तरह से इस गीत की रचना हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो विथ SR, SR बोले तो संतोष राव।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
2: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: शिक्षा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जी हाँ दोस्तों, रूप कुमार राठौर और सोनू निगम द्वारा गाए ये खूबसूरत गीत एक संदेश देता है हर देशवासी को कि हमेशा अपने कान अपनी आंखें खुली रखनी है और दिल और दिमाग की सुनकर हमेशा देश के लिए जीना है। और जब बात हो रही है सोनू निगम की, तो हम आपको बता दें कि आज द्वारका नई दिल्ली में लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं सोनू निगम। इसके अलावा फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा का प्ले भी आप देख सकते हैं कमानी ऑडिटोरियम में। तो वहीं आज शाम 5 बजे से आप आनंद ले सकते हैं हुमायूं टॉम हेरिटेज वॉक का हुमायूं टॉम में। और इसके साथ मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में शाम 5 बजे से आयोजन किया गया है लिटर्ड विथ हिस्ट्री का। और शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आनंद ले सकते हैं रात के अफसाने एक्सप्लोरिंग कुतुब मीनार का। तो आज आजादी के जश्न का हिस्सा बनिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो विथ SR बोले तो संतोष राव। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राइटर डायरेक्टर हरीश व्यास जी। अंग्रेजी में कहते हैं फिल्म अकेले, हम भी अकेले, तुम भी अकेले, यात्री जैसी कई अच्छी फिल्मों को निर्देशित कर चुके हैं हरीश व्यास जी और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार
0: सर। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। बड़ा अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके।
0: जी हाँ, मैं तो बात करता हूँ ना तो मैं अटक जाता हूँ आपके बारे में। मुझे लगता है मैं तो अभी अभी तो यही तो बातें बोल रहा था आपके बारे में। कई बार ऐसा हो जाता है जो दिल के करीब होते हैं ना तो हो जाता है ना सर। अच्छा, अभी आपने ये गीत सुना जिंदगी मौत ना बन जाए। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। अरे सर, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत, मैं भी कहना था आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: जी।
1: और एकदम से हम 80 साल के जवान हो गए हैं
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बिल्कुल जो भी युवा है उन खिड़की बनती जा रही है जिम्मेदारियां और निभा बड़े अच्छे से रहे हैं सारे
0: जी। आप लोग फिल्में बनाते हैं, संदेश देने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में सुधार आ सके, देश तरक्की की डगर पर आगे बढ़ सके। हम लोग प्रोग्राम करते हैं ताकि मनोरंजन के साथ साथ लोगों को जानकारी भी दे सके, अवेयर भी कर सके। जैसे घर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, है ना, ये 17 अगस्त तक चलेगा और इसका अभियान में हर लोग, आप देखते हैं ना जब तिरंगा होता है तो कितना सुंदर लगता है ना सर।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वाकई।
0: इसलिए तो कहते हैं लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, कोई जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर।
1: वाह साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
0: अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे हरीश व्यास जी।
1: जी जी,
0: बचपन में अगर हम जाएं तो बचपन में जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाया करते तो एक अलग ही जोश हुआ करता था।
1: जी जी, बिल्कुल सही बात है।
0: कुछ यादें हैं अभी भी जहन में?
1: बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, और वो भूली नहीं जा सकती क्योंकि हम एकदम से जब बच्चे होते थे तो एक एक्चुअल में वो एक फेस्टिवल की तरह ही होता है, जैसे आज भी फेस्टिवल की तरह मनाते हैं सब लोग। उस वक्त एक फेस्टिवल होता था कि भाई स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, गणतंत्र दिवस कुछ भी आ रहा है, ऐसा कुछ भी देश से जुड़े हुए जितने भी त्यौहार होते थे तो उसको एकदम से त्यौहारों की तरह ही मनाया जाता था उसी शिद्दत के साथ में। और मुझे याद है कि मैं इनिशियली जो अगर मैं एक्चुअल में बचपन बोला जाए तो मैं तब आजाद मार्केट में रहता था उस वक्त दिल्ली के।
0: अच्छा।
1: और तो वहां पर छतें का चलन था, काफी छतें जुड़ी हुई थी, एक घर से दूसरा घर तीसरा घर, तो उसमें क्या होता छतें सबकी कॉमन होती थी। तो हम अक्सर कई बार वहां पे पतंगे बड़ी उड़ती हैं, आपको पता है दिल्ली में 15 अगस्त को पतंगों का बड़ा एक चलन होता है, लोग 15 अगस्त को पतंगे बड़ी उड़ाते हैं। ये मैंने ज्यादातर दिल्ली में ही देखा, बाकी जगह नहीं देखा। तो मुझे याद है कि इसके बाद में फिर हम अलग जगह शिफ्ट हो गए थे वेस्ट दिल्ली में और पीतमपुरा रानीबाग की तरफ। तो भी जब हमारी खुद की भी छतें थी तो वहां पे छतों पे एक बड़ा माहौल रहता था, हर छत पे अलग लोग बड़े बड़े स्पीकर लेके गाने चलाते थे और अच्छा खाना बनता था। और कभी कुछ अब आजकल की तरह से स्विगी और वो जोमेटो तो नहीं थे लेकिन घर में माएं बनाती थी कुछ अच्छे पकवान, कचौड़ी बना दी, पूरी बना दी, छोले पूरी ऐसे कुछ करके, या मिठाई में कुछ बना दिया, खीर बना दी, और वो तो स्पेशल बनता ही था। साथ में म्यूजिक बहुत अच्छा चलता था, हर गाने लोग अपने स्पीकर पे तेज तेज चला के देशभक्ति गाने चल रहे होते थे और इधर पतंगे उड़ रही होती थी। और एक बड़ा ही मतलब मैं पूरा जो आसमान है वो तंगों से भरा होता था, उसमें बड़ी तरह तरह के रंग बिरंगी पतंगे, तो वो एक तो था ही, उसके अंदर एक अलग तरह का जोश था, तो हमें बड़ा इंतजार रहता था। और फिर पहले उससे पहले स्कूल्स में बड़े प्रोग्राम होते थे जाके हम पार्टिसिपेट करते थे उसके अंदर, एक दिन पहले वो देशभक्ति गाने गाना या फिर वो थोड़ा सा मंचन करना किसी प्ले का, तो ये सब बड़ी जुड़ी हुई यादें हैं और इसको मेरे पास अभी तक हैं। और मैं को, और ये आज भी होता ही होगा 100% अभी भी ऐसे ही होता होगा।
0: नहीं, आज भी स्कूलों में इस तरह का होता है, लेकिन हमारे जमाने में जो था ना सर, लड्डू जब मिला करते थे ना वो नहीं,
1: और बटते थे लड्डू बकायदा, कई जगह से भाग जाओ लोग बांट रहे होते थे
0: जी। लेकिन आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, आजकल बिस्किट्स वगैरह दे देते हैं या फ्रूट्स दे देते हैं,
1: चॉकलेट देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल वो जो एक बना के मैंने कहा ना, इसलिए मैंने कहा ना तब जोमैटो वगैरह था नहीं
0: जी,
1: तो उस वक्त तो मम्मियां खुद ही बनाती थी, सुबह से लग जाती थी कि आज चलो आज कुछ नया कुछ खाने को मिलेगा, स्पेशल खाने को मिलेगा, तो उसका आनंद अलग होता था, एक मजा अलग होता था।
0: अच्छा हरी जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आप फिल्म निर्देशक हैं और राइटर भी हैं, आपने ज्यादातर अपनी फिल्मों की राइटिंग खुद की है, तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कभी ये दिल और दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें कोई देशभक्ति गीत भी शामिल हो जाए?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और एक्चुअली पता क्या होता है, देखो ना मुझे लगता है कोई भी फिल्म मेकर, जैसे आप भी है ना, आप भी देशभक्ति कर रहे हैं प्रोग्राम करके, और हम भी अपने अपने एंड पे कर रहे हैं, जितने भी हमारे को काम मिला हुआ एंटरटेन करने का
0: जी,
1: ठीक है, हम उनको एंटरटेन करते हैं जो हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक सिपाही जो जाके जब म्यूजिक सुनता है और आप प्रोग्राम करते हैं, वो उसको सुनता है या किसी सिंगर ने गाया वो उसको गुनगुनाता है, तो वो जो इतनी थकान में खड़ा हुआ है, इतनी मेहनत से हमारे जो भाई लोग खड़े होते हैं वहां पे बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए, उनको कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोल लीजिए, आप अपना योगदान दे रहे होते हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, कि वो उनको भी वो सब चाहिए, जैसे डॉक्टर्स हैं और हैं, उनको एक एंटरटेनमेंट की हमारी इंडस्ट्री उनको एंटरटेन करने का काम करती है, हम भी एक, ये भी सेवा ही है एक तरह से
0: जी।
1: दूसरा रही बात मेरी फिल्मों में, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसा हुआ कि मेरी अभी एक आधी फिल्म है जो मेरे पास अभी कहानी है, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने जो कहानी लिखी उसके अंदर फैमिली फिल्म थी, ठीक है ना, और लेकिन हाँ फैमिली फिल्म के अंदर मैंने कोशिश ये करी कि जो एक आपके जो एक देश हित में जो चीजें होती हैं, जो एक जैसे एक सामाजिक आदमी को जैसे होना चाहिए, हमने उस चीजों का बड़ा ध्यान रखा है फिल्मों के अंदर, कि हम उस चीज से बाहर ना हो, और एक सिविक जो एक सेंस होती है वो होनी बहुत जरूरी होनी चाहिए फिल्म के अंदर, भाषा कैसी है फिल्म के अंदर जिससे बच्चे सीख सकें। हाँ गाना अभी तक मेरे को याद नहीं आ रहा कि हमने कोई ऐसा कोई देशभक्ति से पूरा ओतप्रोत गाना हमने तक और अभी तक तो नहीं किया, लेकिन आपने जब कहा है मुझे तो मुझे लग रहा है कि करने चाहिए। हालांकि मैंने अपने हमेशा गानों में मैंने जैसे मैंने बुल्ले शाह को यूज किया, अभी जो मेरी फिल्म आ रही है उसमें मैंने कबीर के दोहे यूज किए हैं और कबीर के दो भजनों पे मैंने गाने बनाए हैं जो मेरे अभी फिल्म आ रही है। इससे पहले मैंने फिर हजरत अमीर खुसरो की भी मैंने रंग यूज किया था, तो मैं वैसे टाइम टू टाइम ये सब तो यूज करता रहा हूं, लेकिन एकदम से शत प्रतिशत एकदम से जिसे देशभक्ति गाना कहा जाता है जैसे वो मैं भी को मेरे को सौभाग्य नहीं मिला एक्चुअली करने का।
0: चलिए आप कोशिश करिएगा कि आने वाली, अब वैसे आने वाली कौन सी फिल्म है सर अभी?
1: मेरे भी दो फिल्में हैं, एक है मेरी अभी ओम का हरी और वो जल्दी रिलीज होगी, और उसके बाद एक है सत्य बोलो सत्य है, और उसके बाद में एक है रिक्त, ये तीन फिल्में जो हैं बनी पड़ी हैं, और सबसे पहले ओम का हरी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है ये 18 सितंबर को हो रही है,
0: इसमें
1: रघुवीर यादव जी हैं, सोनी राजदान जी हैं, अंशुमन झा हैं और आयशा कपूर करके आर्टिस्ट हैं।
0: अच्छा क्योंकि हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा देशभक्ति गीत है जो आपके जहन में आता है, आप बार बार गुनगुनाने की कोशिश करते हैं जब भी देशभक्ति रगों में उमड़ने लगती है?
1: हाँ मुझे मुझे ना एक्चुअली शहीद फिल्म की पुरानी, मैं थोड़ा पुराने ओल्ड स्कूल ऑफ म्यूजिक ज्यादा सुना है मैंने, और तो मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगता है गाना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
0: ओह
1: देखना है बाजू, तो वो रफी साहब मन्ना डे जी ने गाया है, वो मुझे बहुत पसंद है, और अगर थोड़ा सा चलत में ले लें तो फिर ये देश है वीर जवानों का जो थोड़ा सा मस्ती में है, फिर अपनी आजादी को हम हरगिज भुला नहीं सकते, वो भुला सकते नहीं, वो रीडर फिल्म का गाना, और बाकी तो बहुत सारे गाने, दुल्हन चली बहुत खूबसूरत गाना लिखा हुआ है, ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, और इस तरह के काफी सारे गाने हैं, और तेरी मिट्टी में मिल जाऊं जो आजकल नया लिखा है जो बड़ा खूबसूरत गाना लिखा है
0: जी, बहुत अच्छा लेकिन प्यारा गीत लिखा है जी।
1: हाँ तो ये सारे गाने मुझे बहुत पसंद है, और एक भाव होता है उसमें देशभक्ति गीतों में, एक जोश भरने का डेफिनेटली
0: जी। चलिए पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ और कहना चाहेंगे जल्दी से?

0: नहीं नहीं बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो देश है हमारा और निरंतर उन्नति कर रहे हैं, जैसे अभी जिस स्पीड से कर रहा है उससे चार जुगनी करे, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा है और एक हार्मनी हमारी देश में बनी रहे और हम इसी तरह से तरक्की करते रहे और हम देश में मतलब वन ऑफ द मतलब जितना जल्दी हम प्रगति करने वाले देशों में से आए तो उतना अच्छा रहेगा, हम सबसे आगे निकले।
1: और आज माननीय प्रधानमंत्री और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है सभी से कि सब देश के लिए आगे आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरे को लगता है ये तो ऐसी चीजें जो शायद ना कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, वो सबको ही देश के लिए आगे आना चाहिए बिना किसी सोच समझ के कि वो उसकी पार्टी है, देश के लिए तो हमेशा आगे आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा हरीश व्यास जी हमसे बातचीत करने के लिए आकाशवाणी।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका भी पूरे रेडियो चैनल का भी, आपका भी पूरे प्रसारण का भी।
1: तो दोस्तों ये थे फिल्म डायरेक्टर हरीश व्यास जी जिनसे हम बातचीत कर रहे थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर बिल्कुल लाइव। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।
2: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन।

0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जब तक सांस चलेगी तिरंगा लहराएगा, जब तक दिल धड़केगा भारत गाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। बने रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो का, क्योंकि दीपिका आ चुकी हैं लेकर मैसेज मसाला मिक्स। नमस्कार।

एफएम रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर शक्ति की सप्तधारा की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पिछले 12 वर्षों में डिजिटल विनिर्माण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ तीव्र विकास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में

कर का भुगतान करके अघोषित विदेशी संपत्तियों या अघोषित विदेशी की घोषणा कर सकते हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के पास आज 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। लेबनान के दक्षिण में आज सुबह इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 घायल। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपके साथ इस वक्त जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैसेज मसाला मिक्स। और आज यहाँ हमारा जो देश है, हम जो भारतवासी है, हम मना रहे हैं अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। और आज के खास दिन ज़रूरी है उन वीरों की शहादत को याद करना जिनकी वजह से हमें आज़ाद सुबह देखने को मिली थी, उन शहीदों को दिल से नमन करना जो सरहद पर हमारे देश की हिफाजत करते हैं, और खुद ये संकल्प लेना कि हम अपने देश के लिए जो भी हो सकेगा करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। देश प्रेम की भावना को सिर्फ मन में रखने से काम नहीं चलता, देश के लिए जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारे फर्ज हैं, उन्हें निभाना हर एक देशवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। और गर्व से कहना है जय हिंद। और कुछ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी आज उन शहीदों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी शहादत के बदौलत हमें आज़ाद सुबह देखने को मिली थी, कि लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। चलिए इस गाने के बाद आपको ये भी बताऊंगी कि आज किस विषय पर यहाँ हम मैसेज मसाला मिक्स में बात करने वाले हैं। दीपिका के साथ यूं ही जुड़े रहिए, एफएम रेनबो 102.6।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। कुछ दोस्तों के मैसेजेस यहां मुझ तक पहुंचने भी लगे हैं। और चलिए मैसेजेस शामिल करने से पहले मैं एक बार बता देती हूं यहां पर आपको कि आज किस बारे में यहां हम बात करने वाले हैं। वेल दोस्तों, आज़ादी बहुत खूबसूरत होती है, चाहे आज़ादी हमें किसी ऐसी पुरानी प्रथा से मिले जो हमें पीछे खींच रही थी, विकसित नहीं होने दे रही थी या हमारे विकास में बाधा बन रही थी, चाहे ऐसी सोच से मिले जो हमें मुश्किल में डाल रही थी, चाहे फिर हमें अपने आलस से आज़ादी मिले, चाहे हमें अपनी उन आदतों से आज़ादी मिले जिनकी वजह से हम परेशान हैं। कुल मिलाकर आज़ादी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आज़ाद होना चाहिए लेकिन हम हो नहीं पाते। उनमें से एक चीज़ है लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम करने का जब हम सोचते हैं तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में पहला ख्याल ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अपने लिए सोचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये फैसला लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये बात कह दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कुल मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी का ताना बाना ही लोगों की सोच के इर्द गिर्द बुनने लगते हैं और हर सवाल से पहले खुद से ये सवाल कर लेते हैं कि भैया ये लोग क्या कहेंगे। तो आज आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लोग क्या कहेंगे से आज़ादी मिल गई है। मतलब क्या आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं या फिर सोसाइटी के हिसाब से लेते हैं। क्या आप लोग क्या कहेंगे वाली इस सोच में फंसे हैं या फिर आप हो चुके हैं इससे पूरी तरह से आज़ाद। बताइए मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए और फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। गाने के उस पार जो दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं उनके मैसेजेस शामिल करूंगी और आप सभी से ये भी कहती हूँ कि फटाफट से मुझे बता दीजिए हो गए हैं आप आजाद इस सोच से या फिर नहीं। दीपिका आपके साथ है, प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ हैं आप, और यहाँ पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में मैंने आपसे पूछा है कि मुझे बताइए क्या आपको मिल चुकी है इस बात से आज़ादी कि लोग क्या कहेंगे। मतलब आप कुछ करने से पहले इस बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, या फिर आप अपने मन की सुनते हैं या बस उन लोगों की सुनते हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस के मैसेजेस यहाँ पर मुझ तक पहुँच चुके हैं। मैसेज आया है मेरे पास वीरेंद्र का, इन्होंने महाराष्ट्र से मैसेज किया है, लिख रहे हैं मैं चार लोगों की कभी नहीं सुनता, मैं खुद अपना काम करता हूं, लोगों की राय मैं कभी नहीं लेता। बिल्कुल ठीक बात है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि लोगों की राय नहीं लेनी चाहिए, यहां पर राय बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन कहते ना सुनो सबकी करो मन की, या फिर उन लोगों की बात आप सुने जो आपके अपने हैं, जो आपको पता है आपको सही सलाह या सही राय देंगे। जब हम कोई काम शुरू करने से पहले ये सोचकर बस डर जाते हैं ना कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तब वहां काम जो है वो गड़बड़ होने लगता है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज किन्होंने मुझे किया है, ये मैसेज मुझे किया है राजेश भल्ला ने कंकड़ खेरा मेरठ से। ये लिख रहे हैं हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, लोगों का काम है कहना, हमें अपना काम करना है। तो पहले तो आप सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज दोनों की हार्दिक शुभकामनाएं, बाकी बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़कर हमने जब अपने देश को बचाना शुरू किया वो असली आज़ादी थी। आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं बल्कि डर, भेदभाव और गुलामी की सोच से भी मुक्ति है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। सरफराज आलम का ये मैसेज है जो कि हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से। अगला मैसेज जो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ, ये किन्होंने मुझे क्या मैसेज किया है, ये मैसेज दीपा ने बिजनौर से किया है। लिख रही हैं सब कुछ अपने मुताबिक सही नहीं होता, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो खुद को ही फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फैसले हमें लेने ही पड़ते हैं ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में अपने लिए फैसले लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों के लिए ना कहना और कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़कर हाँ कहना, यह हमें ही तय करना होता है। दीपिका जी नमस्कार, लोगों का काम है कहना और मेरा काम है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, दिल से दिल तक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। रवि जोशी का मैसेज है ये मेरे पास जो आया है मेरठ से। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज किन्होंने मुझे किया है, ये मैसेज मुझे किया है जोया ने ऑस्ट्रेलिया से। लिख रही हैं लोगों को कभी मैंने देखा नहीं इसलिए उनके बारे में कभी सोचा नहीं, उनके बारे में क्या सोचना जो दिखाई नहीं देते, मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ और अपने को बहुत खुश रखना है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, मैं जिम्मेदारियों से आज़ाद हूँ। चलिए अच्छी बात है, अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तभी हम किसी और की खुशी के लिए भी खुश कर सकते हैं, हम अपनों को खुश भी तभी रख सकते हैं जब हम दिल से खुश हैं, टूटे हुए दिल के साथ हम किसी को खुशी नहीं दे सकते।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम यहाँ पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। पूछा है मैंने आपसे कि क्या आपको मिल गई है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे इस वाली दिक्कत से, इस वाली सोच से आज़ादी या फिर नहीं। मैसेज आया है मेरे पास कस्मा बिलराम से, इरशाद अहमद शाह और शाहजहां बेगम का। ये लिख रहे हैं, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी सुनो सोचो फिर अपनी करो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, इस बात का जिक्र मैंने भी कुछ देर पहले किया था। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज मुझे किया है भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ ने, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। लिख रहे हैं, रेनबो परिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, लोग क्या कहेंगे इस बात की कभी परवाह हमें नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है इस बात को याद रखना है। बिल्कुल ठीक आपने बात यहां पर कही है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से मैसेज आया है, आदरणीय गीतिका जी, जी मैं गीतिका नहीं दीपिका हूँ। आगे ये लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल, सबसे बड़ा ये रोग कि क्या कहेंगे लोग। सुनो सबकी, करो मन की, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, ये बात सच है कि हमें वही करना चाहिए जो हमें लगता है हमारे लिए बेहतर है, हमारे परिवार के लिए बेहतर है। और कोई भी फैसला अपने लिए लेते वक्त इस गिल्ट में नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे। इसकी वजह से अपनी खुशी को कभी भी हमें पीछे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम किसी और को भी खुश रख सकते हैं। ये बात बहुत जरूरी है याद रखना।

0: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
6: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स, और जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं, जो अक्सर कहा जाता है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, लेकिन फिर भी हम इस जंजाल में अक्सर फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इस वजह से अपने बहुत सारे काम टाल देते हैं, बहुत सारे फैसले बदल देते हैं। कई बार सही रास्ते पे चलते चलते हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद ये गलत है, शायद वो कुछ कह रहा है तो सही होगा, या फिर वो ऐसी बातें मेरे बारे में क्यों सोच रहा है। इस वजह से हम खुद को इतना अफेक्ट कर लेते हैं ना कि हमारी ही सेहत पर और हमारी ही ज़िंदगी पर असर होने लगता है, जो बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ आज कि क्या आपको मिल गई है लोग क्या कहेंगे वाली सोच से आज़ादी या फिर नहीं। मैसेज आया है मेरे पास कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहाना, फारिया और ताहिरा का। ये लिख रहे हैं कि सभी दोस्तों को 15 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, हमें जो भी करना है सोचिएगा ज़रूर। जी हाँ, बिल्कुल सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगला मैसेज आया है, किन्होंने ये मैसेज मुझे किया है वसंत कुमार ठाकुर ने। लिख रहे हैं रेनबो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं खुद अपने हर काम को करता हूँ और दूसरे लोग भी मेरी तारीफ करने लगते हैं। वेल, मैं यहाँ ये मानती हूँ कि दूसरों से तारीफ मिलना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी काम हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे करने से कोई हमारी तारीफ करेगा, और किसी भी काम को करने से इसलिए नहीं खुद को पीछे हटा देना चाहिए कि शायद कोई हमारी बुराई कर सकता है। हम क्या करना चाहते हैं इसका फैसला हमें या हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे साथ जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनसे राय लेनी चाहिए। लेकिन अपने फैसले लेते वक्त लोग क्या कहेंगे इस वजह से खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। अरुण कुमार का मैसेज आया भटिंडा से, लिख रहे हैं मैं सबकी सुनता हूँ लेकिन करता वही हूँ जो मुझे मेरे लिए सही लगता है, जो मेरा दिल और दिमाग मिलकर फैसला लेते हैं। हाँ, मेरे लिए मेरे अपने और करीबी लोगों की राय बहुत मैटर करती है, उन सब की राय पर मैं गौर जरूर करता हूँ, बिल्कुल करना भी चाहिए। एक और मैसेज जो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ, ये मैसेज आया है मेरे पास दिल्ली से, मैसेज किया है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने। लिखना है प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल, मुझे लगता है सब लोग आजकल इसी फंडे पर बिलीव करने लगे हैं कि सुने सबकी और करें अपने मन की, और जो काफ़ी हद तक सही भी है। मन की करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका मन नहीं कर रहा है तो इसलिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आपका मन नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं मुझे जॉब भी नहीं करनी है, ऐसा वाला मन इसकी बात पर नहीं कर रही हूँ मैं, उस मन की बात कर रही हूँ जब आप खुद को अपनी खुशियों से पीछे हटा लेते हैं, उन फैसलों से पीछे खींच लेते हैं जिनसे आपको खुशी मिल सकती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे।

0: विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप जुड़े हुए हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। बात मैं आपसे कर रही हूं कि क्या आपको मिल गई है लोग क्या कहेंगे वाली सोच से आजादी। मैसेज आया है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से, और ये लिख रहे हैं, गुड इवनिंग दीपिका मैम, 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग क्या कहेंगे, मैं इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं, अपने निर्णय खुद लेना पसंद करता हूं, चाहे उसमें गलती भी हो जाए, पर लोग क्या कहेंगे इस डर से अपने फैसले नहीं बदलता, क्योंकि लोग हर बात पर गलतियां निकालते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लोग वाकई कई बार हर बात पर गलतियां निकालते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमारी गलती है क्या। ऐसे में लोगों की बात सुननी चाहिए बेशक, लेकिन सुनकर अपने फैसले बदल लेना, अपने रास्ते बदल लेना, वो जरा सा गड़बड़ वाला मामला है। एक और मैसेज जो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ, संदीप कश्यप ने ये मैसेज किया है पालम से, लिख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर हम इससे ज़्यादा सोचने लगेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं अपनी सुनता हूँ और अपने मन के काम करता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने बात कही है। देहरादून से आलोक पवार और मिनी का मैसेज आया है, लिख रहे हैं, शुभ संध्या दीपिका जी, आज का टॉपिक बहुत प्रासंगिक है और कुछ तो लोग कहेंगे, इसकी परवाह किए बिना अपना काम करें और सफल रहें। स्वतंत्रता दिवस की रेनबो टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रिंकू कुमार का बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मैसेज आया है, लिख रहे हैं, जो भी काम करना अपनी सोच समझ कर करना चाहिए, किसी के बहकावे या सिखाई बात में नहीं आना चाहिए, अपना दिमाग लगा कर अगर हम काम करेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे। बिल्कुल सही बात है ये, कोई भी काम हमें सोच समझ कर जरूर करना चाहिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपिका के साथ हैं आप। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं मैसेज मसाला मैक्सवेल। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी लाइन है, ऐसा सेंटेंस है जो ना जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।

कभी अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुनते वक्त डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। नौकरी छोड़कर बिजनेस की शुरुआत करते वक्त लगता है लोग क्या कहेंगे। कभी अपने कपड़े, अपने लाइफ पार्टनर, अपना करियर, अपने रिश्ते, हर चीज, हर फैसले के पीछे ये सवाल दिमाग में जरूर कौनता है कि आखिर लोग क्या कहेंगे। लेकिन भाई, हम हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में कैसे दे सकते हैं जो हमारी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। क्योंकि एक बार समझना बहुत जरूरी है, जिंदगी का सफर सबके लिए अलग अलग होता है। सब उस सफर को अपनी तरह से जीते हैं, अपने अनुभव उन्हें मिलते हैं और उन अनुभवों की वजह से ही वो आगे बढ़ते हैं। कभी गलतियां करते हैं तो कभी उन गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा में ले जाते हैं। ऐसे में लोग क्या कहेंगे वाली सोच से आजादी है बहुत जरूरी। इसी बारे में यहां पर आज हम बात कर रहे हैं। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज किया है अनिल शर्मा ने सरिता विहार से। ये लिख रहे हैं कि नमन करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने जान की बाजी लगाई थी, घुटने नहीं टेके थे अंग्रेजी हुकूमत के आगे, भारत को आज़ाद करवाना था। और आगे इन्होंने लिखा है कि लोग क्या कहते हैं, हाँ कि अच्छा कि लोग क्या कहते हैं, हाँ मुझे आज़ादी मिली, आज ही घूमते हुए किसी दोस्त घूमते दोस्त ने टोका, किसी पर भरोसा नहीं करते। मैंने कहा हाँ, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, ये मेरी अच्छी आदत है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आदत है, खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद की सुननी चाहिए। एक और मैसेज जो मुझ तक पहुँचा है, ये मैसेज मुझे किया है, किन्होंने किया है ये मैसेज, ये मैसेज मुझ तक पहुँचा है आकांक्षा का। आकांक्षा शर्मा ने मैसेज किया है दिल्ली से। ये लिख रही हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत मुश्किल फेज आया था जब मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहती थी। सबको इस बात की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उस वक्त सिर्फ मेरे मम्मी पापा ने मेरा साथ दिया और किसी की नहीं सुनी। आज अगर मैं अपने करियर में सक्सेसफुल हूं तो उनकी वजह से हूं, और उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि लोग क्या कहेंगे की वजह से अपनी जिंदगी के रास्ते नहीं बदलने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे इस वजह से अपनी जिंदगी के रास्ते हमें नहीं बदलने चाहिए। बेशक सबकी राय लेनी चाहिए, सुननी भी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इस तरीके से खुद को बांध ले कि नहीं मुझे किसी की बात ही नहीं सुननी है। सुनिए, गौर भी कीजिए, पर लोग क्या कहेंगे कि डर से अपनी जिंदगी जो है वो चेंज मत कीजिए। जैसे मैंने जिक्र किया कि हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उन लोगों के हाथ में नहीं दे सकते हैं जो हमारी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं, और हम किस फेज से गुजर रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं है।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। प्रोग्राम यहाँ पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स। बातें हो रही हैं कि क्या मिल गई है हमें लोग क्या कहेंगे वाली सोच से आज़ादी, क्योंकि कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, ये तो सबसे बड़ा रोग है। और कई बार तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर लगने लगता है कि लोग हंसेंगे, इतनी उम्र में ये सब कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, या फिर लोग पहले से जब कह देते हैं कि तुमसे ये काम हो ही नहीं पाएगा तो बस फिर हमें लगता है अब तो सच में हम ये काम नहीं कर सकते। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग क्या कहेंगे से हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए। और अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, प्रवीण चौहान ने खरगोन मध्य प्रदेश से मैसेज किया है, लिख रहे हैं कि हम इस दुनिया में आए थे तो किसी से पूछकर नहीं आए थे, हमारे जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका सही उत्तर खुद से बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता, इसीलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचेंगे तो हम डेफिनेटली दबाव महसूस करेंगे, और जब खुद के निर्णय खुद लेंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और आज़ादी के साथ खुश रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात आपने ये कही है। अगला मैसेज जो मुझ तक पहुंचा है, ये मैसेज मुझे किया है, किन्होंने किया है ये मैसेज, मनीष ने मुझे मैसेज किया है राजगढ़ मध्य प्रदेश से। ये लिख रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये मेरे साथ हुआ था, मैंने एक आम का पौधा लगाया अपने घर के सामने, लोगों ने कहा

ये फल नहीं दे सकेगा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी, अपने काम में लगा रहा। और 5 साल बाद उस आम के पेड़ में जब फल आने लगे तो उन्हीं लोगों ने कहा कि तूने ये कैसे कर लिया, हमारी तो पूरी उम्र निकल गई, हमसे नहीं हो पाया। तब मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। वेल, ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ये बात सच है, कई बार बहुत सारे काम हम इस वजह से नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, पर असल में अगर हम कोशिश करें तो हम उन कामों को करके उन लोगों को भी जवाब दे सकते हैं। हालांकि बिल्कुल जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने काम जो है वो खुद जब करेंगे, लोगों की राय के हिसाब से अपने फैसले नहीं बदलेंगे, तो हमें खुद ये महसूस होगा कि ज़िंदगी जो है वो कितना बेहतर हो गई है या कितने अच्छे से हम अब चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। आप लोगों के मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुँच रहे हैं। फिलहाल इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर आप हैं दीपिका के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स और अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, आज मुझे लगता है बहुत ही एक दिलचस्प टॉपिक पर हमने बात की कि लोग क्या कहेंगे, क्या अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना सही है या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें लोग क्या कहेंगे के बारे में सोचने की जगह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए और किसी को भी ये कहने का हक नहीं देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो डर है कि लोग क्या कहेंगे ये कई बार हमें बहुत परेशान कर देता है। कई बार इसकी वजह से हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। आपको याद रखना है, पता है, अच्छा करेंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, बुरा करेंगे तब भी कहेंगे, चुप रहेंगे तब भी कहेंगे, बोलेंगे तब भी कहेंगे, आगे बढ़ेंगे तब भी कहेंगे, पीछे हटेंगे तब भी कहेंगे। तो इसीलिए इस डर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस डर से आज़ाद हो जाइए। फिलहाल के लिए यहाँ दीपिका को इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात

होगी और यहाँ अभी फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेनी होगी। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही अपना ठिकाना है। हमें और कहाँ जाना है।

0: right. That happens to be, of course, It's My Life, the Dr. Alban's version. And time of the studio clock, it says 28 minutes past 7 p.m. Time for me to take a short and sweet break. But I'll be back after these messages. You do not need to go anywhere because after these messages, we've got some more brilliant songs coming up out there for you. And of course, here we go. Break time. Do not touch the dial. I'll be right back after these messages.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती?
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
8: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
9: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
11: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
12: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर। खेतों से

आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: नहीं है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जीत।

आकाशवाणी रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर शक्ति की सप्तधारा की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने पिछले 12 सालों में डिजिटल विनिर्माण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ तीव्र विकास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लहराता तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक ही नहीं, बल्कि उज्ज्वल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी है। विश्व के नेताओं और विदेशी दूतावासों ने आज भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इसकी लोकतांत्रिक यात्रा, सभ्यतागत विकास, सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रूपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। अमृत उद्यान आम जनता के लिए कल से खुलेगा। इंडोनेशिया में फ्लोरेंस द्वीप के पास आज 7.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। लेबनान के दक्षिण में आज सुबह इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 घायल। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गॉल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज में। मैं हूं आपकी दोस्त राजलक्ष्मी और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेनबो सेलेब्स। आज का दिन बहुत ही खास है। एक तरफ हम स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने में डूबे हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ रेनबो सेलेब्स में जुड़ रहे हैं ओडिशा के एक ऐसे महानुभव जिन्होंने अपनी कलम से हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज किया है। बच्चों के साहित्य से लेकर बड़ों की कहानियों तक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध लेखक और चिंतक प्रोफेसर जितेंद्र नारायण दास जी से। सर, FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के सभी श्रोताओं की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: सर। शो की शुरुआत हम स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके से ही करते हैं। एक लेखक और चिंतक के नजरिए से आजादी या स्वतंत्रता के क्या मायने हैं आपके लिए?
1: स्वतंत्रता हर कोई राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है एक संप्रदाय, एक जाति, एक राष्ट्र का परिचय, जो बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्वाधीन नहीं है तो पराधीन है, तो स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हर कोई देश स्वाधीन रहना चाहिए ताकि वो जो देशवासियों हैं उनके भी कुछ करने के लिए स्वाधीनता रहेगा। और हर कोई देश में ये तो जरूरी है कि आइडेंटिटी रहना चाहिए। चाइना से जापान अलग है, भारत भी जापान से अलग है, हम सब एक है, फिर भी हमारी आइडेंटिटी भिन्न भिन्न है। और हर कोई देश का भी जो परिचय है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये देश गुजरा है बहुत सारे समस्याओं के साथ, लेकिन स्वाधीन हुआ है 1947 से। और 1950 से हमारे ये शासन व्यवस्था अपने स्वाधीनता के आधार पर चल रहा है। हमारे संविधान है, हमारे जो ध्वज है त्रिरंगा, उसका भी एक पवित्र मायने है। इसलिए ये जरूरी है कि हर कोई समझे कि स्वाधीनता क्या है, स्वतंत्र क्या है। अंग्रेजी में कहावत है, प्रोफेसर लास्की ने बोला है कि लिबर्टी इज द ईगर मेंटेनेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर इन व्हिच एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू बी हिज बेस्ट सेल्फ। इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो अंतर्निहित शक्ति है, आदमी का अंतर्निहित शक्ति वो परिप्रकाशित हो सकता है यदि वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है। इसलिए आज का ये पावन दिवस हमारे लिए अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सपनों को, हमारे विचारों को कार्यकारी करने के लिए जो आवश्यकता है ये हम सबको वो देगा। और हम भी देख सकते हैं प्राचीन भारत, मिडिवल भारत और आधुनिक भारत, ये आधुनिक भारत का निर्माण में कितना अच्छा काम हो रहा है, इसका भी एक लिस्ट प्रस्तुत होना चाहिए। गवेषणा के आधार पर, प्रतिरक्षा के आधार पर, विचारों के आधार पर, दर्शनों के आधार पर, मेरे हिसाब से ये जो स्वाधीन भारत है इसका अचीवमेंट लेवल बहुत हाई है, ये हम नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ भी हम लोगों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि प्राचीन भारत का जो अवदान है विज्ञान के क्षेत्र में भी, शिल्प भाषा के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी, उसको हमारे साथ रखकर हमको आगे चलना है। इसका विचार हम कर सकते हैं, सारा विश्व में भारत का परिचय आज क्या है, ये जुड़ा हुआ है हमारी ये स्वतंत्रता अनुभव के साथ। ये स्वतंत्रता हमको प्रेरित करना चाहिए कि सारा विश्व में हम कुछ बने, कुछ दिखाए और सारा जगत के लिए कुछ उदाहरण रखें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज़ादी के नए मायने हमें बताए। लेकिन जब हम इतनी ज्यादा आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सर, आपने उड़ीसा की महक पर और यहाँ की मिट्टी को अपनी कहानियों में पिरोया है। आज जब हम देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे उड़िया साहित्य ने देश की आज़ादी और उसके बाद के भारत को किस तरह से दर्शाया है?
1: देखिए, साहित्य तो जुड़ा हुआ है भाषा के साथ। उड़ीसा का मूर्धन्य भाषा है उड़िया। कुछ कुछ डायलेक्ट हैं, आदिवासी संप्रदायों को भी उनका भाषा है। हमारे यहाँ 62 ट्राइब्स हैं, उनके भी भाषाएं हैं। लेकिन उड़िया भाषा ये राज्य का भाषा है, प्रदेश का भाषा है। भाषा नहीं तो साहित्य नहीं। भाषा पेड़ होता है, साहित्य होता है, उसका फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। लेकिन साहित्य में बहुत सारे चीजें हमें देखने को मिलते हैं। साहित्य भी इतिहास को इसके अंदर लेता है, साहित्य भी अनुभव को लेता है इसके अंदर, साहित्य नए भावनाओं के भी साथ लेता है। उड़िया भाषा ऐसा एक भाषा है जिसके लिए 1870 से एक संग्राम चालू हुआ यहाँ पर।

0: एवं ये संग्राम था भाषा के आधार पर एक नए परिचय का। और इसके तहत 1936 में ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश बना सारा भारत में, क्योंकि सिंध भी हुआ था। 1835 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसके तहत दो प्रदेश बना, एक सिंध जो अभी पाकिस्तान में है और दूसरा है उड़ीसा। सारा भारत में भाषा के आधार पर ये प्रदेश बना, इसीलिए 1855-56 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी हुआ, ये नमूना को सामने रखते हुए बहुत सारे प्रदेश बने भारत में भाषा के आधार पर। इसीलिए तो हमारे जो जातीय गान है, जातीय संगीत है, जनगण मन अधि, इसमें द्राविड़ उत्कल बंग, उत्कल का जो आइडेंटिटी है, ये सारा द्राविड़ का भी आइडेंटिटी उसके साथ समान था। ये दर्शाता है कि उड़िया भाषा का एक स्वतंत्रता है और उसके आधार पर इसको एक नमूना रखते हुए सारा देश में भाषा के आधार पर प्रदेश बने। आज जातिसंघ 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस का मान्यता देता है और इसीलिए सेलिब्रेशन होता है, लेकिन मेरा मानना है उड़ीसा का जो आइडेंटिटी है 1870 से 1936 तक ये संग्राम चालू रहा और उड़ीसा भाषा के आधार पर एक प्रदेश बना, ये एक तरह की उड़ीसा का गौरव है। मैं बोल सकता हूँ ये अष्टम शताब्दी से चर्चा गीत के आधार पर उड़िया भाषा का विकास हुआ और 14th-15th century तक भारत का जो प्रमुख तीन ग्रंथ है, रामायण, महाभारत और भागवत, उड़िया ऐसा एक भाषा है जिसमें महाभारत संपूर्ण रूप से आ गया उड़िया भाषा को संस्कृत से। भारत में ऐसा कोई भी आंचलिक भाषा नहीं जो ले सका महाभारत को संस्कृत से, उड़िया पहले लिया, और वो थे सारला दास। वो भाषा के आधार पर, भावना के आधार पर महाभारत को एक परिचय दिया। ऐसा ही ये 15th century में ही बलराम दास ने संस्कृत से रामायण को लाया और दांडी रामायण बना। ऐसा ही भागवत 15th century में जगन्नाथ दास उड़िया में संपूर्ण भागवत को प्रकाशित किया। ये तीन ग्रंथों उड़िया भाषा में एक नया परिचय लाया। और उसके साथ मैं बोलना चाहूंगा सारा भारत के लिए, ये जो बलराम दास 15th century का, उसका एक रचना है लक्ष्मी पुराण, जिसमें क्लीनलीनेस को दिया है प्राधान्य दिया है, नारी का स्वाधीनता के और स्वाधीनता को प्राधान्य दिया है। लक्ष्मी पुराण उड़ीसा का एक ऐसा ग्रंथ है जो उड़ीसा का साहित्य आकाश में जो विचार का अनन्यता है उसको सुचाता है। आज यदि आप देखेंगे तो सारा नॉर्दर्न इंडिया में उड़िया भाषा ही पहले शास्त्रीय भाषा बना। तो ये तय है कि उड़िया भाषा एक शास्त्रीय भाषा है, एक प्राचीन भाषा है, एक प्रमुख भाषा है। भाषा के आधार पर ये प्रदेश भी बना और जातीय संगीत में भी इसका जिगर हुआ है। इसका जो साहित्य है, इसमें कविता, उपन्यास, प्रबंध, नाटक, जीवनी, आत्मजीवनी सब कुछ है। 1955 में जो साहित्य अकादमी का दिल्ली में विचार हुआ जो उड़िया भाषा में क्या साहित्य है, नेहरू जी पूछे, लेकिन अमृतर संतान हमारे गोपीनाथ महांती एक प्रमुख लेखक हैं, उसका अमृतर संतान को पहला मिला ये पुरस्कार। और भी मैं कहना चाहूंगा, मैं इसको एक प्रकार का दुर्बलता बोलूंगा, दुर्बलता वर्ड ठीक है या नहीं मुझे मालूम नहीं हिंदी में, लेकिन ये कमी है, हमारे बहुत सारे ग्रंथों अनुदित नहीं हुआ है, वो जो भारतीय भाषा है उसको वो ट्रांसलेटेड नहीं हुआ है। लेकिन अंग्रेजी में हमारे एक प्रोफेसर विक्रम दास थे जो परजा नामक एक उपन्यास को अनुवाद किया है, जिसको फेवर एंड फेवर ने प्रिंट किया है, वो ग्रंथ और वो जो ट्रांसलेटर है विक्रम दास जी, वो भारत का पहला ट्रांसलेटर हुआ जो इंग्लिश में साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो मैं बोलना चाहूंगा साहित्य का परिमंडल है, इसमें उड़ीसा का स्थान बहुत गुरुत्वपूर्ण है। ये बाल साहित्य हो या विदग्ध साहित्य हो, ये सारे इलाके में उड़ीसा का एक स्वतंत्रता है। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, भारत का 30% मिनरल रिसोर्सेस उड़ीसा में है, 11% वाटर रिसोर्सेस उड़ीसा में है। उड़ीसा में पहला जो मर्जर बोलते हैं, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, वो जो मर्जर ऑफ गर्जात प्रिंसली स्टेट्स, वो तो शुरू हुआ था उड़ीसा से। नीलगिरी एक प्रिंसली स्टेट था जो पहले शामिल हुआ था भारत के प्रशासन के साथ 14th November 1947 में। विशाल भारत आज बना हुआ है, प्रिंसली स्टेट का तो नंबर था 562 और 15 थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। आज जो निखिल भारत बना, आज जो अखंड भारत बना हुआ है, इसमें जो प्रिंसली स्टेट का मर्जर हुआ है, उसका तो शुरुआत हुआ था उड़ीसा से, सो भाषा के आधार पर स्वतंत्र प्रदेश। और ये मर्जर के जो सिलसिला ये शुरू हुआ है उड़ीसा से। और भी मुझे गर्व है बोलने में, जो प्याडी राइस उसका भी जन्मस्थान उड़ीसा में, जो कोरापुट है हमारे, उसका जो मालभूमि है वहाँ पाया गया है ये प्याडी बा जो धान का डीएनए। सो साहित्य परिव्याप्त करता है वो चिंतन को, वो सब कहानी लेख ये उड़िया भाषा में रिफ्लेक्टेड है।
1: क्या बात है सर, आपने इन लेखकों के माध्यम से, चाहे वो बलराम दास हो, जगन्नाथ दास हो, सरला दास हो या पंच सखाओं का आपने जिक्र किया है, और उड़िया साहित्य के माध्यम से आपने हमें एक तरह से हिंदुस्तान की आजादी की जो पड़ाव पड़े थे उनकी झांकी दिखाई है। सर, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक खूबसूरत देशभक्ति गीत का। सुनिए ये खास नगमा और जुड़े रहिए FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेनबो सेलेब्स एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज और हमारे साथ हैं आज उड़ीसा के जाने माने लेखक प्रोफेसर जितेंद्र नारायण दास या मैं कहूँ दास बेनहूर सर का। सर, इस नाम के पीछे की क्या कहानी है, नाम आपने बेनहूर क्यों लिया और पर्सनल लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है यह आपके लिए?
1: एक दिलचस्प कहानी है। मेरा तो शुरू से ही स्कूल दिनों से ये लिटरेचर के लिए मन में कुछ था, मैं लिखूंगा, मैं लेखक बनूंगा। जरूरी है कि मेरा ये जो प्रदेश है, मेरा जो भाषा है, मेरा जो कल्चर है, उसका वितरण करूंगा सारा भारत के लिए। इसलिए मैंने शुरू किया था मेरा लेख कॉलेज दिनों से। मैं लिख रहा था अंग्रेजी कविता। उन

0: टाइम्स ऑफ इंडिया एक मैगजीन छाप रहे थे, उसका नाम था यूथ टाइम्स। मेरा पहला अंग्रेजी पोएम उसमें छपा था। छपने के बाद मैं अध्यापक बना। अध्यापक जीवन में मेरा ख्याल आया कि अंग्रेजी में लिखने से आउटसाइड रीच होगा, लेकिन मेरे लोगों के लिए मुझे लिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने शुरू किया राइटिंग। मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ एक अच्छा पत्रिका में, मैंने उसको दिखाया मेरे फ्रेंड को जो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट था और उसका भी फर्स्ट क्लास कैरियर था। उसने उस लेख को पढ़कर बहुत खुशी हुआ और उससे एक दो लाइन भी अपने डायरी में लिखा, तो मेरा गर्व हुआ, देखो ये इतना अच्छा स्टूडेंट है, मेरा लेख देख के वो नकल कर रहा है इसका या कोट कर रहा है, इसलिए मुझे गर्व हुआ। लेकिन उसने पूछा ये किसका लिखा है, मैंने बोला ये मेरा लिखा है, मेरा राइटिंग है। सो देखा ये जे एन दास लिखा हुआ है, तो वो बोला और कोई होगा, जगन्नाथ दास या जीवननाथ दास, तुम्हारा नाम जितेंद्र नारायण दास है इसलिए तुम बोल रहे हो। वो बोला इसे और मैंने दिखा कि वो दुखित हो गया, क्योंकि उसका एक इन्फीरियर फ्रेंड रिजल्ट वाइज स्टूडेंट वाइज आई वाज नॉट दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो इसीलिए उसका मन में आया कि क्या है ये ऐसा लिख सकता है। तो मेरा मन में आया यदि और कोई दूसरे नाम में ये छपा हुआ होगा होता तो उसका निरपेक्ष मूल्यांकन हो सकता था। मैं दुखी था, मैंने गया सिनेमा हॉल, मुझे मालूम नहीं था कि कौन सा मूवी चल रहा है, वो था बेनहूर, आपको तो मालूम होगा 1959 में वो बना था। ये ऐसा एक मूवी है जो 11 ऑस्कर अवार्ड भी जीता था उन दिनों, और उसके अंदर में जो सबसे गुरुत्वपूर्ण स्टोरी लाइन है ये है कि स्वाभिमान स्ट्रगल में भी है स्वाभिमान, और अपना पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल जारी रखना चाहिए। सो मैं तो दुखी था, मैं सोचा मैं लिखूंगा जरूर लेकिन एक पेन नेम लूंगा। मेरा तो सरनेम दास है, दास मीन सरवैन, और हमारे यहाँ उड़ीसा में सरला दास, उसका नाम सिद्धेश्वर परिड़ा, सरला दास भी एक पेन नेम है। ऐसा ही भक्त चरण दास, उसका नाम भी बरियागी चरण पटनायक है। हमारे फतुरानंद है, उसका नाम भी रामचंद्र है। ऐसे ही आप तो जानते होंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर लिख रहे थे भानु सिंह नाम से
1: जी।
0: और हमारे जो सुनील गंगोपाध्याय प्रेसिडेंट थे साहित्य अकेडमी के, उसका भी नील रोहित बहुत नाम है। इसलिए मैंने सोचा एक पेन नेम रख लूंगा, और उसके जो बेनहूर मुझे इतना अच्छा लगा मैंने उसको तो रखा, लेकिन मेरा जो सरनेम है दास उसको प्राइमेसी देने के लिए मैंने दास बेनहूर किया। और मुझे आज आनंद है कहने के लिए दास बेनहूर प्यार बनाकर जहाँ मैं ये प्रेरित किया बा मेरा लिखा को मैंने सेंड किया, वो वहाँ प्रिंटेड हुआ, बहुत सारे सम्मान मिले, नेम क्लिक किया, जैसा ये फिल्म स्टारों के नाम क्लिक करता है, दिलीप कुमार तो नाम दिलीप कुमार नहीं उसका, यूसुफ खान है, ऐसा ही जरीवाला, हरी जरीवाला, संजीव कुमार है, रवि कपूर, जितेंद्र है, ऐसा ही तो बहुत सारे नाम है, धर्म सिंह, धर्मेंद्र है। मैंने सोचा ये नाम मुझे सूट करता है, ये क्लिक किया, इसलिए दास बेनहूर मैंने आज भी मैं परिचित हूँ एकेडमिक सर्कल में, क्योंकि मैं अध्यापक था, प्रिंसिपल होके रिटायर हुआ, लेकिन मेरा नाम मेरे प्रदेश में, मेरे भाषा में, मेरे लेख के आधार पर मैं दास बेनहूर में परिचित हुआ। और मेरे मानना ये है वन समथिंग इज पब्लिश्ड इट शुड नॉट बी क्लेम्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑथर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक। सो ये भी मेरा एक अनुभव है, नाम हो सकता है नाम आपको ख्याति देगा, सम्मान देगा, लेकिन पहले ही आपका क्रिएशन, इफ क्रिएशन अच्छा है आपका सुनाम होगा, और जेन्युइन राइटिंग इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, वेदर इट इज इन ए पेन नेम और इन एनी अदर नेम, द राइटिंग शुड बी गुड एंड वन शुड बी वेरी ट्रूथफुल इन एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स एंड दैट आई हैव डन ऑल थ्रू।
1: बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई सर, और एक लेखक ही ऐसा कर सकता है। फिल्म को आपने अपने नाम में पिरोया और उस नाम को इतना पॉपुलर बनाया, और बिल्कुल ठीक कहा सर कि जो साहित्य है, किताबें हमें वो आजादी देती है जिससे ना ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम अपने लिए एक नया नाम ढूंढते हैं, एक नई पहचान बनाते हैं, हमारा स्वाभिमान लौट के आता है और हम दुनिया में देश का, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। सर, नाम से याद है आपका बचपन नयागढ़ के खंडपड़ा में बीता है, सो उन दिनों की कोई ऐसी याद जो आज भी आपके दिल के करीब हो, या बचपन में आप स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते थे, आप स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं तो बच्चों के साथ कैसा रहता था इंडिपेंडेंस डे का माहौल?
0: ये देखिए, मेरा जो जन्म स्थान है वो एक गड़जात था, प्रिंसल स्टेट, वहाँ पर एक राजा भी थे। 1948 में जनवरी में उसका तो मर्जर हुआ और उड़ीसा में उसका मर्जर हुआ, लेकिन उसका जो एक ज्ञान का परंपरा था वहीं पर थे हमारे सामंत चंद्रशेखर, महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर। थ्रू हिज नेकेड आईज ही रियली कैलकुलेटेड द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स, इट इज अनथिंकेबल, एंड ही यूज्ड सम इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट्स। सादा आंख में वो आकाश को दिखा, उसका जो स्टार्स, ग्रह, उपग्रह, उस सबको, तारों का गतिविधि निरीक्षण करके वो जो बनाया सिद्धांत दर्पण, वो एक फैंटास्टिक थिंग था। मेरे सोच में, मैंने पढ़ा है वो ग्रंथ को, इसमें भी उसका एक स्वतंत्र भावना था। ब्रिटिश आइडियाज इसमें एक है, संस्कृत ब्रह्मंडा खंड भंड स्थिरतर धरणी मंडल भांति सौंड प्रौदंडे दंता बलबल दलना कुंठ कंठी रवश्री ही। लाइक वाइज इन दैट ही हैज चैलेंज्ड द स्कॉलरशिप ऑफ द वेस्ट एंड ही हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द काइंड ऑफ ट्रीटाइज आई हैव प्रिपेयर्ड वो इट्स लाइक ए लायन एंड इट विल टीयर आउट द हेड ऑफ द एलिफेंट दैट इज द वेस्ट। सो लुक एट द एटीट्यूड ऑफ ए मैन, ये स्वाधीनता, ये स्वतंत्र, ये भावना उन दिनों तो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, इतना जोर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बचपनों के दिन, आई बिलोंग टू हिज प्रिस्ट्स फैमिली, सामंत चंद्रशेखर, ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, बट हिज फाइंडिंग, ही वाज ए कॉमनर, ही डिड नॉट नो इंग्लिश, बट ही हैड ट्रेमेंडस नॉलेज इन संस्कृत। हियर आई शुड ऐड, हमारे जो स्वतंत्रता आज के दिन, भारत का स्वतंत्रता जुड़ा हुआ है इसका संस्कृत भाषा से। हमारे सब ज्ञान ये थियोलॉजी से, फिलोसॉफी से, दर्शन शास्त्र या एनीथिंग, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन आवर संस्कृत टेक्स्ट। इट इज रियली वेरी हॉरिबल दैट वी आर अवे फ्रॉम संस्कृत। आवर एंटायर नॉलेज सिस्टम, आवर एंटायर हिस्ट्री, दैट इज देयर इन संस्कृत, बट वी हैव लिटिल नॉलेज। मेनी पीपल, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट, वी नो मोर अबाउट इंग्लिश, वी नो वेरी लिटिल अबाउट संस्कृत, एंड दैट इज व्हाई वी नो वेरी लिटिल अबाउट उड़ीसा, इंडिया एंड इट्स पास्ट। ये जो सिद्धांत दर्पण है, इसके संस्कृत में लिखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी टू डिसाइफर एज टू व्हाट इज रिटन इन दैट। बट ये सिद्धांत दर्पण, ये एस्ट्रोनॉमी का एक ग्रंथ नहीं है, ये अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग का एक ग्रंथ है। आज जो स्वतंत्रता दिवस है, मैं गर्व से कह सकता हूँ, ये जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड नॉलेज सिस्टम, उसको ये सिद्धांत दर्पण का अवदान बहुत है। मेरा शैशव, मेरा जो यादें जुड़ा हुआ है मेरे गांव के साथ, मेरे इलाके के साथ, इसमें सबसे गुरुत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। और सेकेंड थिंग इज, सिंस आई बिलोंग टू ए प्रिंसल स्टेट, उन दिनों बहुत सारे फेस्टिविटीज, सारे फेस्टिविटीज व्हिच आर इंडिजिनस, नाउ पीपल आर फॉरगेटिंग द इंडिजिनस फेस्टिवल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, बट द रीजनल फेस्टिवल्स, दे कीप पीपल टूगेदर, एंड यू नो द कल्चर ऑफ योर पीपल, द थिंकिंग ऑफ योर पीपल, एवरीथिंग इज लिंक टू दोज फेस्टिवल्स। ऐसा ये जो हमारे जो खाद्य, हमारे जो पोशाक, हमारे जो विचार बोध, ये सब जुड़ा हुआ है इसके साथ। इसीलिए मेरा जो नेटिव प्लेस था, वो एक इट्स ए वेरी कंजर्वेटिव वे ऑफ थिंकिंग, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द पास्ट, यू नीड टू नो द प्लेस, to know the place you not to need to know the culture, and all these cultural activities are kept within the activities of the people, whether it is a jatra or a festival or a kind of worship of particular thing. So mera manna hai, mera jo saisav hai wo bahut rich hai, wo jo anchalik local jo bolte hain local ब्यूटी जो है, वो ब्यूटी भाषा में है, उसका परंपराएं में है, उसका जो विचार बोध भी है। मैंने उन दिनों मेरे जो शैशव के दिन रामलीला, कृष्ण लीला, एक था दंड नाच और पाला, दस कठिया, घुड़की, ऑल द काइंड्स ऑफ द वेराइटीज, मेनी पीपुल इन द होल ऑफ इंडिया माइट नॉट बी नोइंग, बट दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड एनी वन बिलोंगिंग टू एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। If he knows the beauty of another language, another people, another culture, he will definitely like it. As we say, we have Odissi. That is, there is Odissi Sangeet, there is Odissi dance. We appreciate, respect Odissi dance because it is ours. At the same time, we also respect Bharatanatyam, Kuchipudi, Bihu, and all those things, Kathakali. So, इफ यू नो द लोकल थिंग्स आवर रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एटमॉस्फेयर विल बी बेटर. दैट इज माय फीलिंग.
1: सर, साहित्य का जुड़ाव आपके बचपन से ही रहा, क्योंकि नयागढ़ के इतिहास ने आपको प्रेरित किया कि आप और लेखन शैली की तरफ आगे बढ़े, और आपकी राइटिंग में शायद चिल्ड्रंस लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरीज, इसकी डाइवर्सिटी
0: इंक्लूड की गई. इम्पोर्टेंट प्रश्न है. मैंने शुरू किया बच्चों के लिए बहुत बाद में. मैंने, एज आई सेड,

0: शुरू किया विथ एंग्लो इंडियन पोएट्री, देन आई केम बैक टू शॉर्ट स्टोरीज एंड फीचर्स इन द न्यूज़पेपर्स। बट अराउंड से आफ्टर आई स्टार्टेड राइटिंग से आई वॉज इन टू लिटरेचर आफ्टर से अबाउट मोर देन ए डिकेड आफ्टर दैट। वंस आई केम अक्रॉस ए काइंड ऑफ सिचुएशन, क्या हुआ, मैं एक प्रोफेसर के साथ, वो थे इंग्लैंड में थे, उनका एक लड़का था, उसका नाम है सिप्पू। वो बोले सिप्पू तुम जाओ तो उस दुकान से कुछ धान लेकर आओ, पैडी लेकर आओ। उनके घर में था एक दो चार पिजन थे। वो देर बाद वो रिटर्न होके आया और बोला धान क्या है डाड, वो बोलता था डाड धान क्या है। मैंने सोचा इसको तो पता नहीं धान क्या है, अच्छा स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, यदि उड़िया बच्चा आ जाता है
1: जी जी उड़िया
0: जुबान को,
1: लैंग्वेज जी
0: उड़िया ये बच्चा ये धान नहीं जानता है, हाट घाट तोटा जा, जा ये हमारे जो भाषा के जो शब्द है ये एक्वेंटेड नहीं है वो शब्द के साथ। मैं लिख रहा हूँ बड़ों के लिए, कविता लिख रहा हूँ, स्टोरी लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, लेकिन ये बच्चों तो वो तो कुछ नहीं जानते हैं, वो तो भी बड़े होंगे, उनके पास वो सब शब्द नहीं होगा, तो वो लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे उड़िया लिटरेचर को जो है अंग्रेजी में, जो कैच देम यंग। सो आई थॉट आई शुड कैच देम यंग एंड दैट इज वाई आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर चिल्ड्रेन। एंड मुझे गर्व है आज अबाउट से 130 बुक्स आई हैव रिटन से टचिंग ऑल द काइंड ऑफ लेवल्स ऑफ लिटरेचर। इसमें स्टोरीज है, नॉवेल्स है, फीचर्स है, नाटक भी है, सब कुछ है उसमें। आई वॉन्ट टू टच ऑल दी काइंड्स ऑफ, बिकॉज चिल्ड्रेन दे आर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स। ए चाइल्ड ऑफ से 5 ईयर्स इज नॉट द सेम चाइल्ड ऑफ 8 ईयर्स, और वन हु इज ऑलरेडी 12 और 14 इज नॉट लाइक द 3 ईयर चाइल्ड और द 5 ईयर चाइल्ड। देयर लेवल्स आर डिफरेंट, दे आर ग्रेडेड, दे आर नॉट लाइक एडल्ट्स। सो इसीलिए ये जरूरी है कि बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर बनना चाहिए और एज ग्रुप के आधार से लिटरेचर बनना चाहिए। मैंने वही किया है और बहुत सारे मुझे रेस्पेक्ट भी मिला है, बहुत सारे सम्मान मिला है, मुझे गर्व है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं हम तो बड़ों के लिए लिखते हैं, हम तो राइटर हैं, हम तो पोएट हैं, हम क्यों लिखेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि ये सारे भारत में केवल नहीं, सारा अब जहां भी जाइए आप देखेंगे चिल्ड्रंस लिटरेचर एवरीवेयर इज नेग्लेक्टेड। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर चिल्ड्रंस, द हिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इज नॉट रियली गिवन दैट इम्पोर्टेंस विच इट शुड हैव बीन गिवन। एंड देर इज वन कार्डिफ यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, बिकॉज आई इन 1987 आई वेंट देयर, आई फाउंड ए डिपार्टमेंट कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड टूडे आई फाइंड इन मेनी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर बुक्स दे आर ट्राइंग टू गिव इम्पोर्टेंस, एंड इन सम ऑल्सो कोई कोई अमेरिका में गया हूँ, ये इवन रशिया में, चाइना में, नाउ दे आर डेवलपिंग टेक्स्ट फॉर चिल्ड्रेन एंड एज पर दी ग्रेडेशन। दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग एंड आई एम हैप्पी दैट चिल्ड्रंस लिटरेचर इज गिवन इम्पोर्टेंस एवरीवेयर।
1: सर आपका मशहूर कोट भी है, चिल्ड्रंस लिटरेचर इज नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो अबाउट इंस्टिलिंग वैल्यूज एंड शेपिंग यंग माइंड्स। तो बहुत ही सुनहरे शब्दों में आपने उसको पिरोया है और बचपन की उन सुनहरी यादों में खो जाने का दिल तो सभी का करता रहता है। चलिए इसी मिठास को बनाए रखने के लिए सुनते हैं एक सुरीला नगमा, मिलते हैं इस गाने के पार।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सर, आप प्रिंसिपल रहे हैं, शिक्षाविद रहे हैं और साथ ही एक सक्रिय लेखक भी हैं। प्रोफेशनल लाइफ में प्रिंसिपल की जिम्मेदारी और एक लेखक की कल्पना, इन दोनों में आप संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? और जहां आप चिल्ड्रंस लिटरेचर की सर इतनी बात कर रहे हैं, इतनी किताबें आपने लिखी है, लेकिन आजकल बोल रहे हैं जनरेशन जी, उनको दोबारा इन पेपर बुक की तरफ कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे आज के सोशल मीडिया, इंटरनेट, किंडल के जमाने में?
1: मेरा मानना है इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन कोई भी नहीं है। शिक्षक बनना या अध्यापक बनना और बच्चों के लिए लिखना या बड़ों के लिए लिखना, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये हर कोई लिखता है अनुभव के आधार पर। ये अनुभव व्यापकता लाया है, अल्सो लाता है, दूसरों के लिए भी लाता है, क्योंकि यदि आप शिक्षक हैं, डिफरेंट लेवल का जो बच्चों हैं, छात्र छात्राएं हैं, आपका भी उन लोगों के साथ मुलाकात होता है, बातचीत होता है, आप भी जानते हैं उसके बारे में। कॉलेज लेवल में भी वही होता है। और मैं आपको बोलूंगा, टीचर्स लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर नहीं रहे, समाज, इवन इफ इज अ गुड मिनिस्टर, समाज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लेकिन एक गुड टीचर जो है, उसका स्टूडेंट्स, दे विल रिमेम्बर हिम, एंड व्हेन एवर दे सी हिम, दे विल पे रेस्पेक्ट। दैट हैपेंस, दैट इज व्हाई इट इज सेड, ए टीचर इज ऑलवेज अ टीचर, इवन इफ ही हैज रिटायर्ड, दे विल गेट द रेस्पेक्ट। सो एक टीचर, मैं टीचर बना, मैं बैंकर था, मैं भी एक ऑडिटर था एजी ऑफिस में, मैं बना अध्यापक बना। लेकिन मेरा ये आपके बारे में, आपके जरिए में मैं बताना चाहूँगा कि हर कोई जन्म में मैं शिक्षक ही रहूँगा, और स्कूल का टीचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टीचर इन ए कॉलेज, बिकॉज द टीचर इन ए स्कूल हैज द अपॉर्चुनिटी टू सेव द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट बेटर। सो इसीलिए मुझे ये कहने में आनंद होता है कि मैं एक टीचर था और कंटिन्यू करता हूँ। मेरा सोच ये है, इफ

0: अगले जन्म है इसमें भी मैं टीचर हूँ, मैं टीचर रहूँगा। मैं जानता हूँ मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ क्यों, लेकिन ये साहित्यिक बनना और अध्यापक बनना ये एक ही चीज़ है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टीच अबाउट से मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म इज इटसेल्फ इज लिटरेचर, एंड इफ यू मेक इट ऑलमोस्ट ए काइंड ऑफ एंटरटेनिंग टेक्स्ट, बिकॉज इफ इट बिकम्स प्रोजाइक नो थिंग नथिंग, इवन पोएट्री विल नॉट बी लाइक इफ इट इज प्रोजाइक, पोएट्री इज टू बी पोएटिक, लाइक वाइज प्रोज इज ऑल्सो टू बी पोएटिक, एंड ऑल्सो एनी टेक्स्ट, एनी डिलीवरी, एनी लेक्चर, इट मस्ट हैव द टिंज ऑफ लिटरेचर। एंड व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर एनीथिंग से जेंटल, प्लायबल, विथ स्वीट वर्ड्स एंड थॉटफुली इफ इट इज एक्सप्रेस्ड, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स लिटरेचर। सो माई फीलिंग इज लिटरेचर, इफ समवन इज इन टू लिटरेचर, ही विल बी ए बेटर टीचर, बिकॉज ही कैन एक्सप्रेस हिज आइडियाज इन ए वराइट ऑफ वेज, ही विल नॉट बी दैट प्रोजाइक लाइक समवन हु डज नॉट लाइक लिटरेचर। सो आई मस्ट एडमिट दैट आई एम ए टीचर ऑफ पोलिटिकल साइंस, बट माई लव फॉर लिटरेचर हैज गिवन मी more opportunity to be more expressive and in my expression to be a little poet.
1: आपके साहित्य में जो रुचि है उससे जुड़ा हुआ मेरा जो प्रश्न था सर, कि कैसे बच्चों को इस डिजिटल युग में वापस पेपर बुक में वापस लेके आएंगे?
0: ये तो अच्छा प्रश्न है। वो जो बोलते हैं बच्चे लोगों ने नहीं पढ़ते हैं, वो बोलते हैं वो पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन किंडल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द कंटेंट। आ एडल्ट्स, हम लोग तो वयस्क लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए? सरकार का क्या है, शिशु नीति या किशोर नीति या जुवेनाइल प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्लान फॉर द जुवेनाइल पीपल? ये कंटेंट बनना चाहिए। ये सारे जो बच्चों है वो एक प्रकार से भूख में रहते हैं। यू दिस पीपल आर ऑल हंग्री, वी मस्ट फीड देम विथ प्रॉपर फूड। इफ समवन इज हंग्री, इफ यू गिव देम गिव हिम बैड फूड और कंटामिनेटेड फूड और पॉइजन फूड, ऑटोमेटिकली दैट विल अफेक्ट हिज बॉडी एंड माइंड। लाइक वाइज ये जो पढ़ने का जो थिंग है, जो कोरोना आया, कोरोना तो जुड़ा, ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुआ, जुड़ गए हमारे बच्चों, सारे बच्चे जुड़ गए, गाँव से शहर तक सारे बच्चे जुड़ गए इंटरनेट के साथ और मोबाइल के साथ। सो मोबाइल रीच द चिल्ड्रन एंड लाइक वाइज चिल्ड्रन ऑल्सो रीच मोबाइल। सो नाउ द रीडिंग लेवल हैज गॉन अप, दे आर रीडिंग अ लॉट, बट व्हाट दे आर रीडिंग दैट इज टू बी मॉनिटर्ड। सो क्वालिटी मटेरियल शुड बी प्रिपेयर फॉर चिल्ड्रन, वो बनना चाहिए। उसका ये जिम्मेदारी सरकार लेना चाहिए, साहित्यिकों ने लेना चाहिए। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा आपको, 2007 जो हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, ही इन्वाइटेड अबाउट 52 चिल्ड्रंस राइटर्स टू राष्ट्रपति भवन, लेकिन important thing is he said that the future of the country lies with the children. They account for say 1 to 2025 they account for 50% of the population, and unka jo world hai wo log shape dete hain, wo log hain parents, teachers and those who write for children. So if we prepare contents which are important for children, which will shape their mind and thought, automatically they will grow in that process. So the answer is bachcho ke liye hum jo text प्रस्तुत करते हैं और जो एक्सेस मिलता है उन लोगों को इंटरनेट के माध्यम से, ये मोबाइल और दूसरे जो लेवल का थिंग है, फॉर एग्जांपल एनीबॉडी इन उड़ीसा, हाउ ए चाइल्ड विल नो दिस हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, हाउ द चाइल्ड विल नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ उड़ीसा टू द नेशनल मेन स्ट्रीम। वो सारे चीज बनना चाहिए, उन लोगों के पास जाना चाहिए। उड़ीसा के नदी है, उड़ीसा के पहाड़ है, उड़ीसा के जंगल है, इतने सारे चीज है, मिनरल्स है, इसका हिस्ट्री है, वो सब इंटरनेट के जरिए यदि से कार्टून के माध्यम से, ऐसा ही कुछ लिंक के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, इफ वी प्लेस दोज थिंग्स इन द इंटरनेट एंड पीपल सी, चिल्ड्रन सी दोज थिंग्स एज पर देयर लेवल, दे विल गेन फ्रॉम दैट।
1: बिल्कुल सर, डिजिटल युग में पठन पाठन को हम अलग अलग माध्यमों से प्रेजेंट करते हैं और उसमें चिल्ड्रंस लिटरेचर का बहुत ही जरूरी योगदान है बच्चों के माइंड को और उनके थॉट को शेप करने का, जो आगे उनका फ्यूचर निर्धारित करता है। सर अब वक्त हो गया है हमारे मजेदार सेगमेंट का, जिसको हम रेनबो रैपिड फायर के नाम से जानते हैं। मैं आपसे कुछ त्वरित सवाल पूछूंगी और आप आपको बिना ज्यादा सोचे इस पे जवाब देना होगा। तो तैयार हैं आप सर?
0: सो
1: आपकी पसंदीदा फूड या डिश कौन सी है?
0: वो है एक टाइप का बेसर बोलते हैं उसको, ये मछली का बेसर।
1: हम फूड या डिश का नाम मछली का बेसर ही रखेंगे। जी हा, हा, तो आपकी अपनी लिखी किताबों में से आपकी सबसे फेवरेट किताब कौन सी है?
0: अभी तक तो है हर कोई किताब तो अच्छा है, लेकिन पगड़ी पुरुष डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ मधुसूदन दास, मुक्कड़ गौरव मधुसूदन दास।

0: कल गौरव मधुसूदन दास। ओके, एक शब्द में उड़ीसा आपके लिए क्या है?
1: माँ है।
0: लिखते वक्त सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, चाय, शांति या शाम का टाइम?
1: शांति।
0: स्वतंत्रता दिवस पर आपका पसंदीदा देशभक्ति गाना कौन सा है?
1: वो है ना जो मेरे देश के जो गाए थे लता मंगेशकर, जो नेहरू रो पड़े थे उसको सुनकर, वही गीत।
0: ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: या, या, मेरे वतन के
0: लोगों। जी जी, तो सर ने ऐ मेरे वतन के लोगों का जिक्र किया है, तो आइए सुनते हैं वही गाना।

0: बहुत ही शानदार जवाबों के साथ दास बेनहुर सर ने हमें आज रेनबो सेलेब्स पर अपनी उपस्थिति से नवाजा। सर, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी को करीब से जानने का मौका मिला, वो भी इस स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर। देश और साहित्य को, खासकर उड़िया साहित्य के प्रति भी एक नया नजरिया मिला। अंत में आप FM रेनबो 102.6 MHz के हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस पर और स्पेशली बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देश को जानो, देश को समझो और माँ की तरह देश को आदर करो।
0: और देश को सर के चिल्ड्रंस लिटरेचर को पढ़ते हुए भी बिल्कुल जानिए और उसमें अपने आप का फ्यूचर देखिए, आप भी एक लेखक बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दास बेनहुर सर, प्रोफेसर जितेंद्र नारायण दास जी, और आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के खास मेहमान दास बेनहुर सर या प्रोफेसर जितेंद्र नारायण दास सर, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। देश की आजादी का जश्न मनाइए, साहित्य से जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा स्टेशन रेनबो 102.6 MHz। मैं हूं आपकी दोस्त राजलक्ष्मी और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी।
1: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेनबो सेलिप्स। आज के अतिथि रहे दास बेनूर या प्रोफेसर जितेंद्र नारायण दास, सर ऑथर और कॉलमिस्ट हैं। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी।

0: यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
3: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम वन की लॉन्चिंग, $5 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

9 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागरिकों से एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने घरेलू तेल और गैस विकास में आए अभूतपूर्व बदलाव पर प्रकाश डाला, जिसके अंतर्गत 99% तटीय क्षेत्र को नो गो एरिया से गो अहेड एरिया में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से युवा शक्ति का उपयोग करने हेतु सप्तधारा रूपरेखा का अनावरण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इसकी लोकतांत्रिक यात्रा सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लहराता तिरंगा केवल देश की गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और आमजन से खाते की जानकारी मांगने की जो बात कही गई है उसका दावा फर्जी है। अमृत उद्यान आम जनता के लिए कल से खुलेगा। फ्लोरेंस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से इंडोनेशिया में 38 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी लेबनान में आज सुबह इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए। अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गाले में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट खोकर 288 रन बनाए। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर हिना मौज हाजिर है प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये प्रोग्राम हम आपको रोज 9 बजे से लेकर आते हैं आपके लिए। और आज है स्वतंत्रता दिवस और इसकी शुभकामनाएं सबसे पहले हमारी जानिब से आप तक पहुंचे। हिना का एक बार फिर से आदाब कबूल कीजिए। आज का दिन दोस्तों हर हिंदुस्तानी के लिए गौरवशाली है और इस गौरव को सेलिब्रेट करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आइए आज़ादी का जश्न यादों के साथ मनाते हैं, अपने प्रोग्राम में एहसास करते हैं उन मोहब्बतों का जो हमें वतन से है, इसकी मिट्टी से है और इसके हर कोने कोने से है। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरी यानी हिना मौज की जानिब से आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: ये सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
6: वंदे मातरम प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं

9:19 10 सेकेंड हिना मौज है आपके साथ, प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। आज याद में बसे उस खूबसूरत एहसास को और जीते जागते इंसान जिनके साथ आज ही मोहब्बत कायम व दायम है, हमेशा रहेगी, और वो मोहब्बत है हमारे वतन की, हमारे मुल्क की, हमारे देश की, जिसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मोहब्बत की जिसका कोई एक चेहरा तो नहीं होता, कोई एक नाम भी नहीं होता, लेकिन जिसकी धड़कन सिर्फ और सिर्फ सबके दिलों में सुनाई देती है, और ये मोहब्बत है वतन की। जैसे कि हमने कहा आपको, अपने देश की मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, उसकी मिट्टी से जुड़ाव है जिसमें हमारा बचपन बीता, उन गलियों से लगाव है जहां हमारी यादें बसी हैं, और उन लोगों के लिए सम्मान है जिनके साथ मिलकर हम इस देश को बनाते हैं, एक करते हैं। हम एक दूसरे के लिए हमेशा यूं ही एक साथ खड़े रहें, कदम से कदम मिलाकर चलते रहें, और इस देश को हमेशा यूं ही एक धागे में पिरोकर रखें। यही खूबसूरत एहसास आज का दिन हमें याद दिलाता है।

0: तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

9:30 16 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। इस खूबसूरत से प्रोग्राम में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने वतन की खूबसूरती, अपने वतन की मोहब्बत को। दोस्तों, देश की मोहब्बत कभी हमें सैनिक की वर्दी में दिखाई देती है, तो कभी किसान के पसीने में, कभी गुरु के ज्ञान में, तो कभी डॉक्टर की सेवा में, कभी किसी मजदूर को के मेहनत करते हाथों में, तो कभी उस माँ की दुआओं में जिसका बेटा देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। दोस्तों, दुनिया में वैसे तो खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, लेकिन अपने मुल्क जैसी मिट्टी की खुशबू वाली बात कहीं और नहीं है। वैसे भी मुल्क की खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों, नदियों, खेतों और आसमान में नहीं होती, बल्कि उन रिश्तों में, यादों में और भावनाओं में होती है जो हमें अपनी ज़मीन से जोड़ते हैं। और ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं वो है भारत की धरती, और ये हमारे लिए कितनी पावन है ये इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। उसका दिल इसके लिए कैसे धड़कता है ये हर इंसान अपने अंदर महसूस करता है।

0: 9:37 हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। यादों का दरीचा खुला हुआ है मुल्क की उन खूबसूरत अनगिनत यादों के साथ जो इन आज़ादी के वर्षों में हमने एहसास किए, और ये आज़ादी की सांस जो आज हम ले रहे हैं उन सब सेनानियों की देन है जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों की, अपने माल की, अपनी हर उस चीज़ की जो उनको प्रिय थी। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर बने रहिए हिना मौज के साथ। यादों का दरीचा खुला हुआ है एक के बाद एक, वो एहसास, वो खूबसूरत मोहब्बत के पल जो हमने इस देश के साथ बिताए हैं उनको याद करते हुए चलेंगे इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। बने रहिए और सुनते रहिए खूबसूरत से प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी याद आती रही। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: रहा है बब्बल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: आइए सुनते हैं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नवीन जिंदल का विशेष संदेश।
4: वंदे मातरम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अमर शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में जुटे हर भारतीय का अभिनंदन करते हैं। विक्रम 1 की लॉन्चिंग, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, राष्ट्रमंडल खेलों में 39 पदक और डिजिटल क्रांति, यही है नए भारत की पहचान। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हर घर तिरंगा हर दिन तिरंगा अभियान से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

9:44 2 सेकेंड हिना मौज के साथ बने हुए हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही। दोस्तों सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये शब्द बहुत वक्त से हमारे कानों में गूंजते आए हैं, हमारे जहनों में घर कर चुके हैं, लेकिन इन एहसास और जज्बात को कभी कभी एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे आज के दिन ऐसे मौके पर ये सब बातें जो हमारे मुल्क से मुताल्लिक हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करके जो हमें एक खुशी का एहसास हो रहा है वो आप एहसास कर सकते हैं और मैं भी यहाँ बैठकर। आकाशवाणी पर ये खूबसूरत दिन किस तरीके से मनाया गया ये सब आप जानते हैं और सुबह से लेकर अब तक हम हर उस चीज़ को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुल्क से मुताल्लिक है। भारत हमारा प्यारा मुल्क भारत, इसकी खूबसूरती तो मानो अनेक रंगों से बनी एक तस्वीर की मानंद है। कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं तो कहीं दूर तक फैले हरे भरे मैदान, कहीं रेगिस्तान की सुनहरी रेत है तो कहीं समुद्र की लहरें। सुबह मंदिर की घंटियों से होती है, मस्जिद की अजान से, गुरुद्वारे के शब्द और चर्च की आवाज़ों से, ये सब विविधता में एकता का प्रतीक हैं। हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत बात है उसकी रंग बिरंगी संस्कृति, तहजीब व सकाफत, अलग अलग भाषाएं, पहनावे, खान पान, परंपराएं और त्यौहार होने के बावजूद भी हम सब का एहसास सिर्फ और सिर्फ एक है, भारतवासी होने का। और ये एहसास हमारे लिए सबसे अहम है, सबसे ज़रूरी है और सबसे सर्वोपरि है।

0: मिट्टी की खुशबू से रिश्ता हमारा पुराना है, इस वतन की खातिर दिल ने हर रंग अपनाना है। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं हमारी पहचान है, तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं हमारी पहचान है, भारत हमारा घर है, भारत ही हमारी शान है। 9:51:35 ये खूबसूरत सा सॉन्ग आपके लिए।
1: बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

9:56 18 सेकेंड हुए हैं हिना मौज है आपके साथ और आप सबको चलते चलते इस प्रोग्राम में बस यही कहना चाहूँगी कि अपने वतन की इस खूबसूरती को सिर्फ निहारते ना रहें बल्कि इसे संवारने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएं जो आप हमेशा निभाते होंगे इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि ये मिट्टी हमारी पहचान है, ये धरती हमारा मान है, इसके हर रंग में बसी है मोहब्बत, यही हमारा हिंदुस्तान है। तो जी चलती हूँ इस प्रोग्राम में, मिलती हूँ 11 बजे रंगे महफिल में, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ।

0: to keep you there. A failed exam, broken relationship, lost job, business that doesn't work, a dream that didn't happen, mistake you can stop thinking about, and then there are moments when you wonder, how am I going to get through this all? Well, sometimes you just need a song. And it simply says, you will. You will get up. You will learn. You will rebuild and survive. And you will not come out of the experience exactly the same person. You will come out even more stronger, more understanding, more compassionate, determined. And that song by Gloria Gaynor gave generations of people a soundtrack for resilience. So life has knocked you down recently. This song is one for you. Anyway, I'm going to take a short and sweet bit because we have done with the first half of the show. We're in the second half of the show right now. Time on the studio clock, 35 and a half minutes past 10 p.m. Don't you go anywhere. I'll be right back after these messages. Break time.
1: Dil ke tarane, gaane naye purane. Non-stop film music, rozana subah 9 se 10 baje tak. Rainbow 102.6 par.
2: कोयल सी तेरी बोली
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

11 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेंस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गगनये क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गाले में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 11:35 हिना मौज आ गई है वादे के मुताबिक आप सबके पास लेकर प्रोग्राम रंगे महफिल। आदाब, एक बार फिर से मेरा कबूल कीजिए। इस खूबसूरत से प्रोग्राम में रहूंगी आज आपकी मेजबान के तौर पर। कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक पूरी कायनात है, और गजल उस एहसास को अल्फाज में ढालने का सबसे हसीन तरीका। जब दिल टूटता है, जब यादें जागती हैं, जब कोई अपना दूर होता है, तो लफ्ज खुद ब खुद गजल में तब्दील हो जाते हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मजा एक गजल बहुत खूबसूरती के साथ बयान कर बैठती है। बने रहिए हमारे साथ इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जो है लफ्ज़ मौसिकी का कारवां रंगे महफिल।

जी हाँ, मोहब्बत के दौर ऐसे ही होते हैं, जब एहसास होता है कि जब सामना होगा तो उसके बाद क्या होगा। वो है ना कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। ऐसी उलझने अक्सर मुलाकातों में हो जाती हैं, लेकिन ऐ ज़ब्त देख इश्क की उनको खबर ना हो, दिल में हजार दर्द उठे, आंख तर ना हो। मुद्दत में शाम वसल हुई है मुझे नसीब, मुद्दत में शाम वसल हुई है मुझे नसीब, दो चार साल तक तो इलाही सहर ना हो। एक फूल है गुलाब का आज उनके हाथ में, एक फूल है गुलाब का आज उनके हाथ में, धड़का मुझे यह है कि किसी का जिगर ना हो। तूले शबे विसाल हो, मिसले शबे फिराक, निकली ना आफ्ताब, इलाही सहर ना हो। दोस्तों, गजल सिर्फ शायरी नहीं है, बल्कि दिल की वो आवाज़ है जो खामोशी में भी सुनाई देती है। कभी सुनकर देखिएगा, इसमें दर्द भी है, सुकून भी है, इंतज़ार भी है और मिलने की उम्मीद भी। और मोहब्बत के आयाम बहुत गहरे होते हैं हुजूर, कभी ये नज़र से शुरू होती है, कभी एक मुस्कान से, और कभी बस एक एहसास ही काफ़ी है। मोहब्बत में न कोई सीमा होती है, न कोई भाषा होती है, ये बस दिल से दिल तक पहुंचने का एक सफ़र है। किसी भी लैंग्वेज में तय कर लीजिए, ये आप पर निर्भर है, लेकिन गज़ल का ये सफ़र ज़रूर ज़रूर इसके साथ चलता है, क्योंकि कोई भी मोहब्बत गज़ल के बग़ैर अधूरी है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: बजकर 23:05 हिना मौज के साथ हैं आप सराबोर प्रोग्राम रंगे महफिल में जो है लफ्ज़ मौसिकी का कारवां। लफ्ज़ों की बात हुई है, गज़ल का सफ़र है तो ये कहना गलत ना होगा कि गज़ल के हर शेर में मोहब्बत की अलग तस्वीर होती है। कहीं जुदाई का दर्द, कहीं मुलाकात की खुशी, तो कहीं अधूरी ख्वाहिशों की कसक। जब कोई शायर कहता है कि दिल धड़कता है तेरे नाम से, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक पूरी कहानी होती है जो हर आशिक अपने दिल में जी रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। इसीलिए ऐसी लिखी हुई गज़ल से आप कनेक्ट फौरन हो जाते हैं और वो आपको अपनी सी मालूम होने लगती है। और ऐसी ही गज़लें जब अवामो खवास के दिलों पर राज करती हैं तो ये हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के बीच से होकर गुजरती हैं और एक उरूज को हासिल करती हैं।
1: याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

11:34 58 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं आप। प्रोग्राम रंगे महफिल चल रहा है और बात हो रही है गज़ल व मौसिकी की। दोस्तों, मोहब्बत और गज़ल का बहुत पुराना नाता है और इस नाते को सेलिब्रेट करते हैं हम इस खूबसूरत से प्रोग्राम में। लेकिन जब बात मोहब्बत और गज़ल से मुतालिक आती है तो ये कहना गलत ना होगा कि मोहब्बत हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि खोकर भी किसी को याद रखने का नाम है। और गज़ल

उस याद को अमर कर देती है, क्योंकि गजल के लफ्ज़ इस तरीके से उस याद को अपने अंदर पेवस्त करके पेश करते हैं कि हम उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ रंजिशें, कुछ ऐसी चीज़ें जो खफगी की तरफ इशारा करती हैं, खफा होने से रिलेटेड होती हैं, वो भी शामिल हो जाती हैं इस सफ़र में। तो उस वक्त दिल के अहवाल कुछ इस तरह के होते हैं।

जी हाँ, यही एहसास व जज्बात हैं जो मोहब्बत में हर आयाम पर गुजरते हैं, फिर वो चाहे रूठना मनाना हो या फिर खफगी का आलम या फिर इंतज़ार के पल। इन सब में

अलग अलग कैफियात से गुजरता दिल। लेकिन गज़ल और मोहब्बत के रिश्ते पर अगर बात की जाए तो ये रिश्ता बहुत पुराना है। मीर, गालिब, फैज़, इन सब ने मोहब्बत को अपने अपने अंदाज में जिया और लिखा है। इन सब की गज़लें आज भी दिलों को छू जाती हैं, क्योंकि उनमें सच्चे एहसासात की खुशबू जो है, यही एहसास, जज्बात और वाकयात जब इंसान के जिंदगी से गुजारा करते हैं और गुजरते हैं, तो फिर गज़ल इतने उरूज पर पहुंचती है कि हमारे जहनों को अपनी पैवस्त में ले लेती है। अपने एहसासात को जब हम दिली सुकून में और जहनी सोच में एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, उस वक्त आपको लगता है कि ये वाकई मेरी ही ज़िंदगी का गोशा है जो लफ्ज़ों की शक्ल में मेरे सामने गज़ल के तौर पर आ खड़ा हुआ है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

चलते चलते बस यही कहना चाहूँगी कि गज़ल के इन खूबसूरत लफ्ज़ों में मोहब्बत को महसूस करें और समझें कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि ज़िंदगी का सबसे हसीन सरमाया है। मोहब्बत वो नहीं जो लफ्ज़ों में बयान की जाए, बल्कि ये तो वो है

जो एहसास है खामोशी में भी जो जिया जाता है। इस एहसास को हमेशा अपने अंदर रखिए, उसे मरने ना दीजिए, क्योंकि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है। और ऐसे मायूस सफ़र में कोई भी चलना नहीं चाहता, लेकिन फूलों के साथ खार होते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चलते चलते इन्हीं खारों पर एक खूबसूरत सी गज़ल छोड़े जा रही हूँ आपकी समातों की नज़र। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। हिना मौज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शुभ खैर।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और लीजिए पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने

के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गाले में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और साथियों, समय आपको बता ही देती हूँ मैं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 12:02 हो रहे हैं। और लीजिए, अब आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जीरो आर शो। इस कार्यक्रम को लेकर मैं आपके साथ हूँ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? तो लीजिए, बातें ना करते हुए आपको सुनवाते हैं ये कुछ खूबसूरत से गीत।

0: जाता है।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आर शो। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 1 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, अर्जित पांडे आपके साथ होंगे। मुझे यानी अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। रात्रि के एक बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की

बधाई दी। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले कल पूरी हो गई। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गाले में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:02 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

उमा सानू जी और अलका याग्निक जी की आवाज़ में दिल कहता है। 1:34 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। लीजिए सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले कल पूरी हो गई। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गाले में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 2:02:46। और लीजिए श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ खूबसूरत से ये गीत, और मैं हूँ आपके साथ आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी के

0: धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए ना बने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, आपको छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ। 3 बजे आपके साथ होंगे अर्चित पांडे। अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले कल पूरी हो गई। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इंडोनेशिया में फ्लोरेंस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने 47 लोगों की मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज अत्यधिक बारिश और का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गाले में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन के खेल का समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 3:02 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

मिडनाइट मेलोडीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम कुमार सानू जी की आवाज में गाए हुए एक बहुत ही प्यारे से गीत, जिसके बोल हैं कुछ ना कहो।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: 3:24 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:47 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक।

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले कल पूरी हो गई। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों के लिए मौजूदा कागज आधारित गुलाबी टिकट सुविधा को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज अत्यधिक बारिश और का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप डी मैच में वेल्स को 3-1 से हराया। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गाले में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 के नुकसान पर 288 रन बनाए। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, एक बार फिर आपके साथ रूबरू, आपके साथ हम लोग आ चुके हैं। मैं यानी अलमास रजा, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है सुबह के 4:03 और 10 सेकेंड्स। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

Call

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
8: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सारेगामा ये कार्यक्रम अभी श्रोता सुन रहे थे और कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अब आपके लिए। सुबह 5 बजे आपके साथ होंगे अर्चित पांडे। मुझे यानी अलमास रजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। स्टूडियो घड़ी के अनुसार 5 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम DTC की बसों में महिला यात्रियों के लिए मौजूदा कागज आधारित गुलाबी टिकट सुविधा को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटीय गंगा क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड में खेले जा रहे FIH विश्व कप के ग्रुप D मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गाले में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,